प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त किए जाने के बाद अब नए बोर्ड का गठन किया गया है। जीगवांग जिल्बे अशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि जैन चिलम और वीरेंद्र मुसाय को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। इस बात का जायजा कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया। और मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार 2 अक्टूबर को माहोवाकुआ जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया। पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम की सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की भी जानकारी दी। इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे और इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा। मॉरिशस में सितंबर से कॉन्सेंट्रिक्स की गतिविधियां बंद होने के मामले में अब समाधान निकल आया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन, साथ ही नोटिस के तौर पर 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये प्रस्ताव कल 2 अक्टूबर को श्रम मंत्री की देखरेख में कॉन्सेंट्रिक्स और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई दूसरी सुलह और मध्यस्थता बैठक के बाद सामने आया। विदेश में फ्लाई दुबई विमान के पायलट पर हमले के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जांच में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की पुष्टि होती है तो अमेरिका बहुत घातक जवाबी कार्रवाई करेगा। और अंत में मौसम का हाल। दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है, साथ ही मस्करीन के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान, आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दिन के दौरान और दोपहर बाद के समय देश के दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर रह रहकर वर्षा होगी और बाद में अन्य जगहों पर भी वर्षा हो सकती है। रात्रि के समय देश के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी और बाद में मौसम में सुधार आएगा। तापमान, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिसमुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी लगूनों में, तो समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 5:50 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 6:06 पर होगा।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Masti।
0: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: On the hour, every hour, Radio Marches.
5: मीडियम वेव 8.1 किलोहर्ट्ज पर ये है AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। देवी और सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुस्वागतम। नई सुबह, नए दिन का आगाज कीजिए MBC रेडियो मॉरिशस के साथ। इस समय मॉरिशस में सुबह के 6:05 हो रहे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है शनिवार, शनिवार 3 अक्टूबर साल 2026। परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आज की सुबह और आज का दिन आप सभी के लिए एकदम ही

0: मंगल मैं हूँ। आज आप जहां भी रहें खुश रहें, मुस्कुराते हुए इस दिन को बिताएं। नया दिन है, नई सुबह है, सो नए नए विचारों के साथ इस नए दिन का स्वागत करें। कल जो दिन बीत चुका शायद बहुतों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा था, सो आशा करते हैं कि आज इस नए दिन में कुछ न कुछ नया स्पेशल जरूर हो। अपने मन में ये ठान लें कि आज आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, और प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हम सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जीवन में हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। कुछ लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। आप जानते हैं कि आप सही हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, बस यही आवश्यक है। कभी कभी लोगों की बातों को सुनकर हम दुखी होते हैं, निराश होते, हताश हो जाते हैं, पर कभी कभी लोगों की बातों को अनसुना भी कर देना चाहिए। लोगों का काम है कहना जी, कहने दीजिए। सो अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा और आपका साथ है MBC रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ जरूर देंगी। चलिए शुरू करते हैं इस प्रातकालीन सभा को वैदिक नाथ कार्यक्रम के साथ, और वैदिक नाथ प्रोग्राम गहलोत राजपूत महासभा की ओर से, और आज आप सुनेंगे पंडित ज्योति रघुबीर जी को।
1: सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाद।

सम्महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। समस्त आर्य बंधुओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत वैदिक नाद कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। विषय प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी। श्रोताओ, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु और आर्य समाज के प्रमुख प्रेरणा स्रोत स्वामी विरजानंद नंदी जी का जन्म सन 1779 ईस्वी विक्रम संवत 1835 में पंजाब के जालंधर जिले के पास करतारपुर नगर के निकट बुई नदी के किनारे स्थिर गंगापुर नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें ब्रिजलाल के नाम से पुकारते थे। प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती जी ऋषि दयानंद जी के विद्या गुरु थे। उन्होंने ही स्वामी दयानंद जी को अष्टाध्यायी महाभाष्य पद्धति से व्याकरण पढ़ाया था और शेष समय में उनसे शास्त्रीय चर्चाएं करते थे, जिससे स्वामी दयानंद जी ने उनसे अनेक बातें सीखी थी। स्वामी विरजानंद की एक प्रमुख बात यह थी कि वे ऋषि मुनियों के प्रशंसक होने सहित उनमें पूर्ण आस्था व विश्वास रखते थे। जिन ग्रंथों में ऋषि मुनियों की निंदा होती थी उन्हें वे अप्रामाणिक एवं त्याज्य मानते थे। ऋषि दयानंद जी विद्या प्राप्ति सहित उनके अनुभवों को भी जाना था। वह अवैदिक मत मतांतरों को मनुष्यकृत व कपोल कल्पित मानते थे। मत मतांतरों में जो सत्य हैं वह सर्व प्राचीन ग्रंथ वेदों से उनमें पहुंचा है और उनमें जो अविद्या से युक्त मिथ्या कथन मान्यताएं एवं सिद्धांत हैं वह उनके अपने हैं। ऋषि दयानंद ने एक ईश्वरवाद एवं द्वैतवाद आदि नाना मतों व सिद्धांत

अंतों की समालोचना कर पाया था कि त्रैतवाद का सिद्धांत ही यथार्थ है। इस पर भी स्वामी दयानंद जी की चर्चा स्वामी विरजानंद जी से अध्ययन काल में हुई होगी। इस सिद्धांत को हम वेदों की प्रमुख देनों में से एक देन कह सकते हैं और इसको युक्ति व तर्क के साथ प्रस्तुत करने के लिए दर्शनकार सहित स्वामी दयानंद जी और स्वामी विरजानंद जी सभी को इसका श्रेय दे सकते हैं। श्रोताओं, स्वामी विरजानंद जी ने ही संभवतः स्वामी दयानंद जी को यह भी बताया हो कि चार वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं और वह सब सत्य विद्याओं की पुस्तकें हैं। वेदों का अध्ययन एवं प्रचार तथा वेदों के शिक्षाओं के अनुसार आचरण करना ही मनुष्य व आर्यों का परम धर्म है। गुरु विरजानंद जी ने भारत के घोर पतन के काल में जो शिक्षा व ज्ञान दिया उसने भारत की काया ही पलट दी। हम चाहकर भी इन आदर्श गुरु एवं आदर्श शिष्य का अपनी वाणी एवं लेखनी से यथार्थ चित्रण वर्णन नहीं कर सकते। हम में ऐसा करने की योग्यता नहीं है। ईश्वर को इन महापुरुषों को भारत भूमि में उत्पन्न करने के लिए धन्यवाद करना सभी विवेकशील लोगों का कर्तव्य प्रतीत होता है। हम आज वैदिक विचारधारा से जिस प्रकार अपने साधारण प्रयासों से परिचित हुए हैं, ऐसा सौभाग्य ऋषि दयानंद के समकालीन व पूर्वकालीन हमारे पूर्वजों व देशवासियों को प्राप्त नहीं हुआ। आज हमें ऋषि दयानंद लिखित पंच महायज्ञों की पुस्तक सुलभ है। ऋषि दयानंद से पूर्व हमारे देशवासियों को यह पुस्तक व पंच महायज्ञ को करने की समुचित विधियों विदित नहीं थी। वह उस समय की प्रचलित विधियों के अनुसार इन यज्ञों को करते थे जो कि अनेक प्रकार की अविद्या जन्य क्रियाओं से युक्त थे। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्य अभिविनय आदि जो ग्रंथ हमें दिए हैं उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। यदि गुरु विरजानंद और स्वामी दयानंद न होते तो आज हम जिस वैदिक धर्म व संस्कृति के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान रखने के साथ उसका पालन करते हैं उसका करना हमारे द्वारा कदापि संभव न होता। श्रोताओं, गुरु विरजानंद जी 5 वर्ष की आयु में चेचक शीतला रोग के कारण उनकी दोनों आँखों की ज्योति चली गई थी, जिसके बाद भी वे अपने समय के प्रकांड विद्वान बने। घर में भाई भावज का उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, अतः इस दुर्व्यवहार ने ही उन्हें गृह त्याग के लिए विवश किया था। इसका परिणाम स्वामी विरजानंद जी के लिए भी अच्छा हुआ तथा देश व विश्व के लिए भी अच्छा ही हुआ। कष्ट व दुखों को सहकर ही मनुष्य का जीवन बनता है। स्वामी विरजानंद जी ऋषिकेश पहुंचकर गंगा नदी के जल में घंटों खड़े रहकर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। इससे उन्हें आध्यात्मिक लाभ हुआ था। इसके बाद वह हरिद्वार के कनखल में आए थे और यहाँ विधिवत संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। यहाँ से वे देश के अनेक स्थानों पर गए और सर्वत्र आपने अपना अध्ययन व अध्यापन जारी रखा। अलवर नरेश को भी आपने विद्या दान किया था। मथुरा को आपने

0: अपना स्थायी शिक्षण स्थान बनाया था। यहाँ रहकर आप एक पाठशाला चलाते व विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते थे। अध्ययन करने व अध्ययन कराने से मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। कहावत भी है कि विद्या बांटने से बढ़ती है, और इसका यदि अभ्यास व अध्यापन आदि न किया जाए तो इसमें वृद्धि नहीं हो पाती, अपितु यह विस्मृति को प्राप्त हो सकती है। श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद जी ने संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में बहुत ऊंच स्थिति संपादित की थी। निश्चय ही वे कुछ योग्य शिष्यों की तलाश में रहे होंगे। ईश्वर ने उनकी वह इच्छा स्वामी दयानंद जी को उनके पास भेजकर पूरी की थी। स्वामी दयानंद को शिक्षित कर गुरु दक्षिणा के अवसर पर उनका संकल्प सुनकर उनको निस्संदेह अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता हुई होगी। इसके बाद भी जब गुरु विरजानंद जी अपने शिष्यों व अन्य कुछ व्यक्तियों से ऋषि दयानंद के कार्यों की प्रशंसा सुनते होंगे तो निस्संदेह उन्हें अत्यंत सुख मिलता होगा। इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी विरजानंद जी का अंतिम समय ऋषि दयानंद के समाज व देश में वेद प्रचार के द्वारा अज्ञान अंधकार दूर करने का जो महत्व कार्य किया जा रहा था उससे वह निश्चय ही प्रसन्न रहे होंगे। स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद को व्याकरण एवं शास्त्रों के सत्य सिद्धांतों व मान्यताओं का अध्ययन कराया था। इसी विद्या अध्ययन प्रणाली से स्वामी दयानंद जी का निर्माण हुआ था। स्वामी दयानंद जी ने गुरु विरजानंद जी से प्राप्त विद्या से देश से अज्ञान के अंधकार को दूर करने का अभूतपूर्व कार्य किया। इसी कार्य के कारण उनको मृत्यु का वरण भी करना पड़ा। श्रोताओं, ईश्वर भक्ति तथा आर्ष ग्रंथ अध्ययन अध्यापन की पवित्र साधना में अपना जीवन व्यतीत करते हुए 89 वर्ष की आयु में उदर शूल से पीड़ित रहते हुए मथुरा के प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद नंदी जी महाराज की निर्वाण पंचांग तिथि के अनुसार आश्विन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी संवत 1868 में हुआ था। उनके देहावसान का समाचार सुनकर उनके प्रिय शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी अत्यंत दुखी होकर कहा था, आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। श्रोताओं, इस वर्ष आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि आगामी गुरुवार दिनांक 8 अक्टूबर को पड़ रही है। स्वामी विरजानंद जी की पुण्यतिथि पर हम उनको स्मरण करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देने सहित उनकी पावन स्मृति को नमन एवं धन्यवाद करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रही हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाद।
2: सुबह के 6:19 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं M2MBC रेडियो मॉरिशस। अब प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक दो जरूरी विज्ञप्तियां। बैंबफ पाजानी माले रोड, टेम्पल रोड, मौसलमों चेती, मौसलमों मेबन, मौसलमों पुनीत, पास कायु, माकुम्बालीन और कुसल रोड को एडमी एक एनिवर्सियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 3 अक्टूबर को सुबह के 11:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में पॉइंट कानूनी एवेन्यू लॉरियर, कासगुन रोड,

0: Royal, quoique plus étudiant à Bigelty, Pointe aux Canonniers, Avenue Laurier, Casse Goon Road, or Route Royale Pointe aux Canonniers, qui n'y va à Sionko, Sotit qui a déjà ta hé, qui arrive à Tchar October, qui se bat qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, qui s'arrive, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: प्रिय श्रोताओं, आजकल तो पितृपक्ष चल रहा है, फिर 11 अक्टूबर से हम दुर्गा नवमी में प्रवेश करेंगे और देवपक में प्रवेश करेंगे। तो दुर्गा माँ जी का ध्यान करेंगे, उनका गुणगान, उनकी पूजा होगी घर घर में, मंदिरों में भी। और माँ दुर्गा जो है कल्याणकारी है, शक्तिशाली है, जगत जननी माता है। तो चलिए आज की सुबह हम उस जगत जननी माता जगदम्बे मैया का ध्यान करते हैं। हे जगदम्बे मैया, सब पर अपना कृपा दृष्टि डाली रखना।

देवियों सज्जनों, इसी दुर्गा माँ के भजन के साथ ही यह म्यूजिकल कार्रवाई यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। याद है ठीक 6:30 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल और स्पोर्ट्स रिव्यू। हमारी आपकी मुलाकात भी इसे होगी 7:00 बजे इसी चैनल पर, इन योर फेवरेट नंबर 1 रेडियो स्टेशन AM2 रेडियो मॉरिशस, MBC रेडियो मॉरिशस। और प्रोग्राम होगा मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। सुनते रहिए प्रेम से AM2 MBC रेडियो मॉरिशस।

सुबह के ठीक 6:30 बजे है। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त किए जाने के बाद अब नए बोर्ड का गठन किया गया है। जीगवांग जिल्बेर शू को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि जयंत चेलम और वीरेंद्र मुसाई को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। कंसेंट्रिक्स के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन और 1 महीने का नोटिस वेतन मिलेगा। ये समझौता कंपनी की गतिविधियां बंद होने के बाद हुआ है। बैंक कमर्शियल्स ने नकली नोटों को लेकर लोगों को सतर्क किया है। बैंक ने नोटों के सुरक्षा चिन्हों की जांच करने और शक होने पर नोट स्वीकार न करने की अपील की है। विदेश में फ्लाई दुबई विमान के पायलट पर हमले के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान का हाथ साबित होने पर अमेरिका बहुत घातक जवाबी कार्रवाई करेगा। अरब समाचार विस्तार से। कैबिनेट ने नोट किया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम को नई गति देने और सरकार द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने के लिए इसके बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन में अन्य लोगों के साथ जी ग्वांग जिल्बेशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। पासुरामन चेलम, जिन्हें जयंत चेलम के नाम से भी जाना जाता है, को उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और वीरेंद्र मुसाई को इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया है। याद रहे कि एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त कर दिया गया था। इस फैसले की घोषणा अगले दिन बुधवार 30 सितंबर को व्यापार मंत्री माइकल सिक्यून ने रेडियो प्लस पर की थी। और मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार 2 अक्टूबर को माहुवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया। पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम के सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की भी जानकारी दी। इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे। इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए ज़रूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा। फिलहाल पानी पर लागू मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी। हालात बिगड़ने पर इन पाबंदियों को और सख्त किया जा सकता है। अधिकारियों ने लोगों से पानी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है, क्योंकि पानी के भंडार लगातार घट रहे हैं और मौसम भी अनुकूल नहीं रहने का अनुमान है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल नंबर 3 रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऐसे ट्रैफिक अपराधों के फिक्स पेनल्टीज अब ऑनलाइन भरे जा सकेंगे जिनमें पेनल्टी पॉइंट्स नहीं लगते। 30 अक्टूबर 2026 से जनता सुप्रीम कोर्ट पोर्टल के जरिए ट्रैफिक का जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान कर सकती है। इस के लिए लोग अपने मोपास अकाउंट से अपनी पहचान की पुष्टि करेंगे और फिक्स पेनल्टी नोटिस एफपीएन नंबर तथा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे। भुगतान मोपास क्यूआर कोड के जरिए जूस या पब जैसे पेमेंट एप्लीकेशन से किया जा सकेगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकेगा। पहले चरण में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा केवल उन्हीं ट्रैफिक अपराधों के लिए होगी जिनमें पेनल्टी पॉइंट्स नहीं लगते। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान तभी किया जा सकेगा जब संबंधित एफपीएन को मॉरिशस पुलिस फोर्स ने अपने सिस्टम में दर्ज कर दिया हो। दूसरे चरण में ये ऑनलाइन भुगतान सुविधा सभी ट्रैफिक अपराधों के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसमें वे अपराध भी शामिल होंगे जिनमें पेनल्टी पॉइंट्स लगती है। इसके साथ ही तेज गति से वाहन चलाने के लिए फोटोग्राफिक एनफोर्समेंट डिवाइस नोटिस भी ऑनलाइन भुगतान के लिए उपलब्ध होंगे। ये नोटिस मॉरिशस में लगे 63 स्पीड कैमरा के जरिए पकड़े गए।

0: स्पीडिंग मामलों से संबंधित होंगे। मॉरिशस में सितंबर से कॉन्सेंट्रिक्स की गतिविधियां बंद होने के मामले में अब समाधान निकल आया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन, साथ ही नोटिस के तौर पर 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये प्रस्ताव कल शुक्रवार 2 अक्टूबर को श्रम मंत्री की देखरेख में कॉन्सेंट्रिक्स और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई दूसरी सुलह और मध्यस्थता बैठक के बाद सामने आया। श्रम मंत्री रिजा उद्यम ने कहा कि सस्ते श्रम के कारण मॉरिशस की तुलना में मादागास्कर ज्यादा आकर्षक बन गया है। उन्होंने बताया कि ICT मंत्री अविनाश राम चौहान और उद्योग मंत्री आदिल आमिया मियाँ एक अंतर मंत्रालय समिति का हिस्सा है। ये समिति ओटाम यानी आउटसोर्सिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के साथ मिलकर आउटसोर्सिंग सेक्टर में मॉरिशस की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर काम कर रही है। मंत्री रिजा उद्यम को सुनते हैं।
1: Il y a 307 travailleurs qui font plainte au bureau de travail. Bon, ce qui nous tombe en accord, c'est par rapport à un employé mauricien. Il y a encore 7 travailleurs expats qui peut négocier avec le management, parce que tous ont une situation un peu différente de les travailleurs mauriciens. Et là aussi, nous espérons qu'ils ont trouvé un accord avec le management. Mais le gros employé, c'est environ 300 employés aujourd'hui à travers les représentants syndicaux et à travers les avocats. Une tombe d'accord avec Concentrix et son avocat pour un montant d'indemnisation pour la fermeture de Concentrix.
0: बैंक ऑफ मॉरिशस ने देश में नकली नोटों के चलन को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें, नोट पर बने सुरक्षा चिन्ह, उभरे हुए निशान, नोट को झुकाने पर दिखने वाले बदलाव और यूवी लाइट में नज़र आने वाले खास निशानों से इसकी पहचान की जा सकती है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने लोगों से नोट लेते या इस्तेमाल करते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। बैंक ऑफ मॉरिशस के करेंसी ऑफिस के चीफ जान क्लोद शामारी ने बताया कि असली नोट की पहचान के 3 तरीके हैं, छूकर, देखकर और सुरक्षा चिन्हों की जांच करके। बैंक ऑफ मॉरिशस ने यह भी कहा कि कागज़ और पॉलीमर नोटों के सुरक्षा चिन्हों की जानकारी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अगर किसी नोट की असलियत पर शक हो तो उसे स्वीकार न करें और तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दें। मॉरिशस के लोग अब दक्षिण अफ्रीका में बिना वीज़ा के 90 दिनों तक रह सकते हैं, जबकि पहले ये अवधि 30 दिन थी। ये नया फैसला तुरंत लागू हो गया है और इससे दोनों देशों के बीच यात्रा करना और आसान होने की उम्मीद है। ये फैसला पिछले कुछ महीनों से मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत के बाद लिया गया है। प्रिटोरिया में मॉरिशस के राजदूत मिहाय मौतन ने कहा कि मॉरिशस के लोगों के लिए ये नया फैसला बहुत जरूरी है। उनके बयान पर गीता सुनारान को सुनते हैं।
2: Les autorités sud-africaines ont décidé d'apporter ce changement maintenant.
3: दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने अब ये बदलाव लाने का फैसला किया है, क्योंकि उच्चायोग और सरकार के नाते सक्रिय रूप से दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये कहकर कि दक्षिण अफ्रीकी लोग जो मॉरिशस आते हैं उनके पास 90 दिनों का एक वीजा होता है, इसे पारस्परिक बनाने का फैसला लिया गया क्योंकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं। अब मॉरिशियनों को भी ये सुविधा दे रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका आएंगे पर्यटन, चिकित्सा या उद्योग कायम करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों में ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इससे संभावनाओं के कई द्वार खुलेंगे उन मॉरिशियनों के लिए जो दक्षिण अफ्रीका में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।
2: Qui ouvre aussi la voie à beaucoup de possibilités pour les Mauriciens souhaitant utiliser les facilités en Afrique du Sud.
0: सुडनाक पुलिस स्टेशन में यौन संबंध के आरोप DPP ने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। सदना पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखी गई लीजा लिली रोमैन से जुड़े मामले में डीपीपी ने एक कांस्टेबल और उसकी निगरानी के लिए तैनात महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की सिफारिश की है। यह सिफारिश पुलिस की ओर से पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट के बाद की गई है। कांस्टेबल पर ड्रग्स

0: तस्करी के कथित मामले में हिरासत में ली गई महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। महिला पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी हिरासत में ली गई महिला की निगरानी करना था, जिसे सुदनाग पुलिस स्टेशन की सेल में रहना था। सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर्स के अनुसार दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के पास कुल 363 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 167 मामले स्कूल से जुड़े थे, 63 परिवार से और 11 ऐसे बच्चों से जुड़े थे जिन्हें विशेष ज़रूरतें यानी स्पेशल नीड्स है या जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं। इस दौरान जांच टीम ने 20 फील्ड विजिट्स भी किए। ये आंकड़े ओम्बुड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन की 2025-2026 वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसे कल पोर्टवी के कुड आउट सेंटर में पेश किया गया। रिपोर्ट में वर्षिस में बच्चों की स्थिति से जुड़ी कई चिंताएं सामने रखी गई हैं। इसमें खासतौर पर रोकथाम को मजबूत करने, संस्थाओं की जिम्मेदारियों को और स्पष्ट करने और उनकी जवाबदेही बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बच्चों के अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि बच्चों के व्यवहार से जुड़े मामलों को बेहतर तरीके से समझा और संभाला जा सके। ओम्बुड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन अनीता गुहा ने इसकी जानकारी दी, उनको सुनते हैं।
1: सभी लोग बच्चों में व्यवहार की गंभीर समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं। हमने उच्च स्तरीय बैठकें लगाई। हम जानना चाहते हैं कि मैदान पर काम करने वाले लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादातर शेल्टर या ब्राउन्स रिकॉर्ड में रखे जाने वाले बच्चों पर काबू पाना मुश्किल होता है। उनके लिए उचित ढांचे कायम करना चाहिए। हमने इस पर ध्यान दिया। दो चीजें पहली बार कर रहे हैं, इंटरसेक्स पर एक कार्यशाला, ये समलैंगिकता से बिल्कुल अलग हैं। हम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के भी अधिकार हैं। ये एक मेडिकल और बायोलॉजिकल समस्या है।
2: C'est un problème médical, biologique, mais Lila.
0: विदेश में फ्लाई दुबई विमान के पायलट पर हमले के मामले में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जांच में इस मामले के पीछे ईरान का हाथ होने की पुष्टि होती है तो अमरीका बहुत घातक जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विमान के को पायलट के ईरान से संबंध होने की संभावना है। देश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है, खासकर आज सुबह के समय। साथ ही मस्करेंस के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान, आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान और दोपहर बाद के समय देश कि दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। बाद में अन्य जगहों पर भी वर्षा हो सकती है। रात्रि के समय देश के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। बाद में मौसम में सुधार आएगा। तापमान, सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 5:50 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 6:08 पर होगा। तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें यूसुफ, कोविला और गीता का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
3: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: स्कूल लेन कालबास में

स्कूल लेन का बस में 94 साल की 94 years old की श्रीमती ज्ञानती इमरित, श्रीमती ज्ञानती इमरित पैदाइशी नामदन को और जो सतवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री कवि इमहित के घर स्कूल लेन कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस सचिवालय की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM पेलखान रोड सेबास्तोपोल में 60 साल के 60 years old के श्री प्रदीप कुमार गोपल जो कौथे मिलिटर के श्रीमती इंदिरा गांधी SSS के एजुकेटर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती धीमावती गोपल के घर पेलखान रोड सेबास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM दो स्ट्रीट बोवालों में 72 साल के 72 years old के श्री विजय महादू जो प्रेमनाथ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर दो स्ट्रीट बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोंबोलेन में बग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM कोयरातिलेन लेस्कालिये में 81 साल के 81 years old के जनाब बशीर कोयराती जो बशीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के दस बजे उनके घर कोयराती लेन लेस्कालिये से निकाल कर दफनाने के लिए लासोजिन लेस्कालिये के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM पाम्पलमूस रोड लाफ्लोरा में 21 month की बेबी चार्वी नंदू जो येशनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के बारह बजे उनके दादा श्री प्रीतम कुमार नंदू के घर पाम्पलमूस रोड लाफ्लोरा से उठाकर दफनाने के लिए खांबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 9 बाल्मीकि रोड सेंट मिशेल बेलिया में 43 साल की 43 years old की कुमारी जयश्री जगेसर जो स्वीटी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके पिता श्री प्रेमनाथ जगेसर के घर बाल्मीकि रोड सेंट मिशेल बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM न्यू रोड रोशनवा में 53 साल के 53 years old के श्री अभिचंद किस्तो जो बाचन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज दिन के दस बजे उनके घर न्यू रोड रोशनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेल मोंगुड लैंड की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM रॉयल रोड तायाक में विष्णु मंदिरम के पास 85 साल के 85 years old के श्री दीनारायण बंसी जो देवनारायण नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे उनके बेटे श्री अश्विन बंसी के घर रॉय रोड तायाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM रूट 20 नंबर 2 वाकुआमे 90 साल की 90 years old की श्रीमती मदोदरी शिबू श्रीमती
मधुदरी शिबू पैदाशी नाम मधु पैदाशी नाम

मधुआ जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज इनके साढ़े दस बजे उनकी बेटी श्रीमती बाबीता शिबू के घर उद्वांता नंबर 2 वाकवा से उठाकर सिर्फ नंबर 5 बैलेंस की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM कुनी रोड रेन्यों मोरल पति राफ्रेमी कुनी रोड रेन्यों मोरल पति राफ्रेमी 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मदेव दाया जो विजय नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज इनके साढ़े बारह बजे उनके घर कुनी रोड रेन्यों मोरल पति राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुलसी के श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 नंबर 62 NHC बैलेंस प्लान मान्योमी नंबर 62 NHC बैलेंस प्लान मान्योमी 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद बालचन जो राजन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के दस बजे उनके घर नंबर 62 NHC बैलेंस प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री धीरेन्द्र वीरा गादू जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो बेगुनिया C01 NHDC कौन लोग व्यू रहते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे बबासा के लियनसन से उठाकर दफ्ताने के लिए सैम होते हैं कि श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM टुकू रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती केसरी राम गुलाम पैदाइशी नाम अकू और जो विद्वंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज इनके दस बजे उनके घर टुकू रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौफू खो की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM रॉय रोड सिनेमा का से ट्रियोले में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती साबेना देवी सुखदावो पैदाइशी नाम राजा राम सिंह जो रीदी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री कृष्ण सुखदावो के घर रोड सिनेमा का से ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM ब्रांच रोड पति वर्जी सैंपियामे 27 साल के 27 ईयर्स ओल्ड के श्री वितिश शर्मा रामासो जो व्यास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पिता श्री विपिन रामासो के घर ब्रांच रोड पति वर्जी सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM रॉय रोड बबासामी 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री योगेंद्र नाथ सिंह हुकुम सिंह जो विनेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे रॉय रोड बबासा के लाशा पैलाउदों के लिए अनसन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेटू का थ्रोबोन की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM रॉय रोड ब्रह्मस्थान में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री भोज भातू जो भोज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे उनके घर रॉय रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिशकर बिजादो जो माहियो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो SSU के सब इंस्पेक्टर थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज

दिन की 12 बजे आज दिन की 12 बजे Ray Road, petite rivière qui est la chapelle ardente de Moura. C'est Uthakar, sabse pehle Pratna Sabha ke liye, Quatre Bonnes ki Notre-Dame du Rosaire Girjaghar le jaye jayegi aur antim sanskar ke liye Gandhi Palma Quatre Bonnes ki Shmashan Bhumi cremation today at noon. Kamapu number 1 Henrietta May, Kamapu number 1 Henrietta May, 80 saal ki 81 years old ki Shrimati Muni Mohan, Shrimati Muni Mohan jo Chanpa naam se zyada paidaish naam Chanpa, paidaish naam Chanpa aur jo Munya naam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi unki arthi aaj din ke 11 baje unke ghar Kamapu number 1 Henrietta se uthakar antim sanskar ke liye 3 mamel ki shmashan bhumi le jayi jayegi cremation today at 11 am Résidence Troquetia Bonne Mère, résidence Troquetia Bonne Mère, 67 salle qui 67 years old qui Shrimati Bhagwanti Salik, Shrimati Bhagwanti Salik, paidaish naam Sukha aur jo Veena naam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi unki arthi aaj din ke 12:30 baje aaj din ke 12:30 baje unke ghar Résidence Troquetia Bonne Mère se uthakar antim sanskar ke liye mrityu ke andamas ke shmashan mein li jayegi cremation today at 12:30 noon Beltair Road Highlands mein, Beltair Road Highlands mein 83 साल की 83 years old की श्रीमती देवज नानी बसावन श्रीमती देवज नानी बसावन पैदाइशी नाम सीरस और जो देवयानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज इनके 10 बजे आज इनके 10 बजे उनके बेटे श्री विकास बसावन के घर बेल्टिया रोड हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:58 और 10 सेकंड हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। मॉरिशस की जय हो। स्थानीय फुटबॉल फिर जाग उठा। क्लब एम ने कल रात श्रीलंका को कुड्डो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3-0 से हराकर हमारे लोकल फुटबॉल स्थानीय फुटबॉल में नई जान फूंक दी। मॉरिशस 3-0। स्टेफान दे रोबिया, विलियम फ्रांसवा और ओरेलियन फ्रांसवा ने बारी बारी गोल दागकर दिल खुश कर दिया और मॉरिशस को 3-0 से जितवा दिया। तीसरे गोल के बाद मॉरिशस के कोच रुई पेड्रो ने इतना जश्न मनाया, इतनी खुशियां मनाई कि श्रीलंका के कोच को गुस्सा आया और मैच कुछ मिनटों के लिए रोक भी दिया गया। अंततः मॉरिशस की जीत हुई 3-0 से। उल्लेखनीय है कि अब इन दोनों के बीच एक दूसरा मैच भी निर्धारित है जो इसी सोमवार रात 7 बजे खेला जाएगा कुड्डो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। फुटबॉल की ही बात करें पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशंस लीग में भी यूईएफए नेशंस लीग में भी कल जबरदस्त टकराव हुई। कल लीग ए में बेल्जियम ने टर्की को 3-0 से परास्त किया। केविन डे ब्रून का एक डबल, रोमेलू लुकाकू ने तीसरा गोल स्कोर किया। टर्की की हार हुई 3-0 से। और इसी में कल जिनेदीन जिदान के फ्रांस ने अपने स्टाद दे फ्रांस में इटली के स्क्वाड्रा अजूरा के साथ मैच ड्रॉ किया 1-1। ये जिदान का पहला मैच है फ्रांस के की सरजमी पे और मैच ड्रॉ गया। फ्रांस के लिए माइकल ओलिजे का एक शानदार गोल खेल के 55वें मिनट पर और उसके बाद 68वें मिनट पर अलेहान्ड्रो बास्टोनी का इक्वलाइजर। फ्रांस 1-1। बाकी मैचों में हंगरी ने जॉर्जिया को 1-0 से हराया। यूक्रेन 0, नॉर्दर्न आयरलैंड 3, ब्राउन का एक डबल, प्राइस ने भी कीमत चुकवाई। सो यूक्रेन 0, नॉर्दर्न आयरलैंड 3। ग्रुप 4 में बोस्निया 1, स्वीडन 1। विक्टर ग्योकरेस की एक की विक्ट्री, उसका ये मात्र

गोल और मैच ड्रॉ गया। बोस्निया 1 स्वीडन 1, जबकि इसी ग्रुप 4 में पोलैंड ने रोमेनिया को 6-0 से पछाड़ा। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, अनुभवी खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की एक शानदार हैट्रिक रही पोलैंड की ओर से। पोलैंड 6-0 और ग्रुप 2 में साइप्रस ने आर्मेनिया को 2-0 से हराया। लेटविया 1 मोंटेनेग्रो 2। ग्रुप 3 में कजाकिस्तान 1 मोल्डोवा 2 फारोवे आइलैंड्स 1 स्लोवेकिया 1। बाकी मैच आज भी कुछ मैच खेले जाएंगे और ख़ास तौर पे आज रात 8 बजे से ही समय सुन लीजिए। आज रात 8 बजे इंग्लैंड के द थ्री लायंस क्रोएशिया में होंगे, जहां वे लुका मोड्रिच और साथियों से लोहा लेंगे। सो आज रात 8 बजे क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड। इसी ग्रुप में स्पेन का मुकाबला 11:45 10:45 PM पर चेक रिपब्लिक से है। फिर बाकी मैचों में आज नॉर्थ मैसेडोनिया खेलेगा स्कॉटलैंड के विरुद्ध, स्विट्जरलैंड का मुकाबला स्लोवेनिया से, फिनलैंड वर्सेस अल्बेनिया, बेलारूस टक्कर लेगा सैन मैरिनो से। तो ग्रुप 4 में एस्टोनिया वर्सेस लुक्जमबर्ग, आइसलैंड का मुकाबला बुल्गेरिया से है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैचों में कल आज सुबह ही पराग्वे ने एवे जाकर कोलंबिया को 1-0 से परास्त किया। और कुछ और मैच अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैच खेले गए। दक्षिण कोरिया 0 वेनेजुएला 0, चाइना 0 पैलेस्टाइन 5, और कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की हार हुई। कोंगो 0 युगांडा 2। मॉरिशस ने श्रीलंका को 3-0 से परास्त किया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैचों में ही बता दें कि आज भारत और ब्राज़ील के बीच एक बड़ा ही इंतज़ार किया जा रहा मैच, फ्रेंडली मैच खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस ब्राज़ील। ये मैच आज शाम 6 बजे के लिए निर्धारित है भारत में। सो इसका इंतज़ार भारत देश जो है कई सालों से कर रहा है, और आज जाकर ये मैच संपन्न होने जा रहा है। भारत का मुकाबला आज शाम 6 बजे ब्राज़ील से होगा। आज ही नामीबिया खेलेगा फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया के खिलाफ, तो कनाडा टक्कर लेगा पेरू से। आइवरी कोस्ट वर्सेस कैमरून, याद रहे कि आज सुबह ही कोलंबिया की हार हुई, कोलंबिया 0 पराग्वे 1। फुटबॉल में ही मैनचेस्टर सिटी ने अपने सज़ा को लेकर अपील करने की घोषणा की है। सो सिटी को ये सब मंजूर नहीं है, जो जो बातें उसके खिलाफ की जा रही हैं सारे आरोप सच साबित हुए हैं। और ऐसी खबर है कि मैनचेस्टर सिटी इन आरोपों के खिलाफ अपील करेगी। इन लो कहा उसके चेयरमैन ने, इन सब के बारे में सुनते रहिए। टेनिस की बात करें तो आजकल चाइना ओपन मैच खेले जा रहे हैं। चाइना ओपन के अंतर्गत आज भी कोकोगाव का मुकाबला ओजारियो से है, रुबलेव वर्सेस साफियोलिन, फिर जाकारोवा वर्सेस बेंचिच, डैनियल मेडवेडेव खेलेगा स्ट्रफ के विरुद्ध, तो सकारी वर्सेस हंटर, ये सभी मैच आज खेले जाएंगे चाइना ओपन के अंतर्गत। जबकि राउंड ऑफ 64 वुमेन्स कैटेगोरी में कल कैशानोव श्नाइडर की जीत हुई। लड़कों में कैशानोव ने मोलकान को हराया 7-5 और 6-3 से। मुकोवा वर्सेस बाउल्डर, मुकोवा की जीत हुई, और नाओमी ओसाका ने चिमोफीवा को 3-2-1 के सेट से हरा दिया। सो चाइना ओपन आज भी जारी रखा जा रहा है। जबकि फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैम्पियनशिप के अंतर्गत जो बहरीन ग्रां प्री हैं, वो रेस कल रविवार को लगने वाली है, और कल शुक्रवार की रात सेगन प्रैक्टिस के दौरान शार्ल लेक्लेयर की जीत हुई। आपको बता दें कि जनरल क्लासिफिकेशन में किमी एंटोनेली अभी तक पहले स्थान पर हैं, 302 अंक लिए, जबकि दूसरे स्थान पर हैं जॉर्ज रसेल 236 अंक लिए। लेविस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर आ रहा है 199 अंकों के साथ। क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच आज चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान पे दूसरा वनडे मुकाबला, एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रथम मुकाबले में टीम इंडिया ने 406 रन दागकर वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से परास्त किया था। तो ये थी खेल कूद संबंधी चंद जानकारियाँ। सुबह के 7:05 और 13 सेकेंड हुए हैं, आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नुथावाई नुलावेनिया। टेक्सटाइल्स के सिक्तेय में शेमिजरी बेलविल एंड कंपनी लिमिटेड जो नियमिताज रोड कॉफुक्रो में पावल जाला एगो मशीन ऑपरेटर खो जाता त एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त जे जस्ती जानकारी खोजब टेलीफोने करिया 6 8 6 34 14 न त 52 53 91 27। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 3 अक्टूबर 2026। हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जिलवा रिजोर्ट लिमिटेड जन कोस्टल रोड कालोजिन ग्रां बे में पावल जाला एगो स्टीवर्ड खोजता जिकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो किचन हेल्पर एक बरिस के एक्सपीरियंस चाहिला होई के एगो कुक जिकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो असिस्टेंट कुक चाहिला एक बरिस के एक्सपीरियंस होई के खोजता साथ में एगो हेड कुक जिकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो कारपेंटर जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो पोर्टर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे वाले जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो क्लीनर जेकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो वेटर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे साथ में एगो स्पा थेरापिस्ट जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और एगो पेंटर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है hr@zilwa-hotel.com। जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोनी करिय 204-98-00 न त 59-45-51-59। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 3 अक्टूबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में स्टोन इनोवेशंस लिमिटेड जोन एवेन्यू डे ला कॉनकॉर्ड लातू केनिक में पावल जाला एगो ग्राड 1 मासों खो जाता। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोने करिया 52 52 26 98। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 4 अक्टूबर 2026। रेस्टोरेंट के सेक्टर में रेस्टोरेंट ला रिवियर लिमिटेड जोन रिशमा आरजी सेंट्रल फ्लैक में पावल जाला एगो किचन हेल्पर खोजता जिकर एचएससी संगे 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न त टेलीफोने करिया 57 74 24 51। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 4 अक्टूबर 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में रावीन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जोन विलेज हॉल स्ट्रीट ला क्लेमेंस रिवियर डू रोपा में पावल जाला एगो ग्रेड 2 मासों खोजता जिकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोने करिया 57 85 50 21। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2026। रेजिडेंशियल नर्सिंग केयर के सेक्टर में नॉर्दर्न एल्डरली केयर एंड रिहैबिलिटेशन लिमिटेड जो लेनिन स्ट्रीट फोजुसाक में पावल जाला एगो क्लेरिकल ऑफिसर खोजता साथ में एगो सोफिया कम हैंडी वर्कर। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है deal@gmail.com न त सकबा टेलीफोने करे 57 63 66 22 और 59 44 82 44। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कंपनी शांतिये डू नॉर लिमिटेड जोन रॉयल रोड कालबास में पावल जाला एगो वेल्डर खोजता जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोने करिया 52 56 60 33। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 8 अक्टूबर 2026। ऑटोमेटिव के सेक्टर में फायूस गुलवादन लिमिटेड जोन रॉयल रोड बेलेयर रिवियर सेश में पावल जाला एगो ग्रेड 2 पैनल बीटर खोजता जेकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन मॉरिशस जॉब पर कर दी है न त जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोनी करिया 57 81 26 90। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 8 अक्टूबर 2026। रियल एस्टेट के सेक्टर में लावाले विलेज लिमिटेड जन रॉयल रोड पॉपुलर मुसेज में पावल जाला एगो मेंटेनेंस टेक्नि

0: शन खोजता जेकर तीन बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अप्लिकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 57 76 14 87 अप्लिकेशन करे के अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर 2026। हॉस्पिटैलिटी के सत्य में हिल्टन मॉरिशस रिजोर्ट एंड स्पा जोन वुलम फ्लिक ऑफ लाक में पावल जाला एगो स्टीवर्ड खोजता एगो लॉन्ड्री अटेंडेंट एगो रूम कम पब्लिक एरिया अटेंडेंट एगो लॉन्ड्री सुपरवाइजर जिकर HSC बाटे एगो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर जिकर HSC बाटे साथ में एगो किचन एंड HACCP कोऑर्डिनेटर और चाहेला टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोनो रिलेवेंट कोर्स जे करले बाटे त अच्छा होय एगो शेफ दे पार्टी कोल्ड किचन थाई शेफ दे पार्टी एगो कुक पेस्ट्री कुक हेड वेटर होस्टेस कम कैशियर बार्टेंडर प्लम्बर कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन चीफ इंजीनियर इनकम ऑडिटर जिकर HSC बाटे और ग्रुप्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन करे खातिर अपन CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है mauritius.recruitment@hilton.com जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोनी करिया 403 मिल एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 18 अक्टूबर 2026। पारास्टेटल के सिक्तिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अथॉरिटी CIA जन 5th फ्लोर म्यूचुअल एड बिल्डिंग 2-5 गेरोजमो स्क्वेयर पोर्टविस में पावल जाला एगो टेक्निकल एग्जीक्यूटिव खोजता एप्लीकेशन जन बाते पोस्ट द्वारा न त हैंड डिलीवर्ड सकबा जा करे एगो प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म जन में चाहेला निमन से सीनियर करे के साथ में चाहेला एगो मोटिवेशन लेटर और एगो डिटेल्ड CV और चाहेला इस सब संगे तोहर ID एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स और कोनो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रही त सब के फोटोकॉपी चाहेला रहे के एप्लीकेशन जोन बाते ई पता पर विदा कर दी है दी ऑफिसर इन चार्ज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अथॉरिटी और चाहेला देर से देर शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 लेख विदा कर देवे के ऊ भी सांझ के 4 बजे लेख जोन पोस्ट के टाइटल है और जोन जॉब रेफरेंस है उ चाहेला निमन से जो नॉवलो बाटे ओकर ऊपरे लेफ्ट हैंड कोना में निमन से लिख देवे के याद रखिया कि कौजीदा लोग उनकर उमेर 2.5 लेख नए चाहेला पहुँचे के सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट लेख जे जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोने करिया 211-7118 और वो एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है याद रखिया 16 अक्टूबर 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ त लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले विलेज काउंसिल ऑफ बेलोम्ब्र एगो पार्ट टाइम विलेज होल और TV अटेंडेंट खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://ljsc.gov.org/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2026। साथ में लोकल गवर्नमेंट सर्विस एगो असिस्टेंट नर्सरी मेट्रन खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://ljsc.gov.org/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 12 अक्टूबर 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में क्यूपिप के रेजो में एगो हाउसमेड कम हाउसहोल्ड वर्कर खोजल जातबा और वो एप्लीकेशन करे खातिर EIC क्यूपिप EIC टेलीफोन करिया 675-1115 973-7130। जबकि कालबास के रिजो खातिर एगो हाउसमेट एगो जॉर्जिनियर और एगो केयर खोजल जात बाटे एप्लीकेशन करे खातिर गुडलैंड्स के EIC टेलीफोनी करिया 282-59-17 त ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू थावाई नू लावेनिया।
1: नीतू शाह जी को धन्यवाद देते हैं नू थावाई नू लावेनिया सेगमेंट के लिए। सुबह के 7:16 हो रहे हैं, आप जुड़े हुए AM2 MBC रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रिय श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। फॉरेस्ट साइड, लुई दे रोशकुट, Hibiscus Lane, Marigold, Jasmine Road, Impasse Rochecoste, Impasse Raffray, Selicourt-Antel,

0: शर्मा और आसपास में जो गलियां हैं उन लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 4 अक्टूबर को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और बनाना क्लूनी ओ ब्लू पोल्ट्री से डब्ल्यूबिया ओ ब्लू तस्ते एम टी एस बनाना से डब्ल्यूबिया क्लूनी रोट रॉयल क्लूनी और बनान के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 4 अक्टूबर को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। यूबीपी बॉम्बू एक्स बीस ड्राइमिक्स प्रेमिक्स कंक्रीट पीबो मेजिन चेफ्रॉ और रूट चेफ्रॉ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 3 अक्टूबर को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 4:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर जी हाँ, फिर प्रोविडेंस मोसेलमों वीओएस आरटीओ नंबर 1 मोसेलमों वीओएस आरटीओ नंबर 2 के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 4 अक्टूबर को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बोशों मंदिरम के पास इंसिनेरेटर से डब्ल्यूबीआ बोशों एन एस फ्लोरों terrain de football qui passe CWA Beauchamp la nourrice MCML CWA 3 îlots aur 3 îlots poultry aur aspas mein jo galiyan hain wahan ke niwasiyon ko suchit kiya jata hai ki kal 4 october ko subah ke 8:30 baje se sham ke 4 baje ke beech bijli ki aapurti mein katauti lai jayegi. Phir Bobassin Raoul le jeune automos Avenue Cosigny, puis c'est une diabinguecti, Bobassin, Raoul le jeune, Automost, Avenue Cosigny, Avenue Sir Walter, Bessante, Louis le Chel, Avenue Poivre, Le Tabernacle, Bio Santé, Ville Sir, Bobassin, Caprice, Gervais, Gould Square, Ricardo, Fastwood, Quicken, Fastwood, Alas Basement. जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 4 अक्टूबर को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर अवेन्यू वेंकटा स्वामी अवेन्यू डे रोसने अवेन्यू मोनरॉन अवेन्यू एम जे ऑलिन अवेन्यू मेलड्रम एली एंड सन्स बोबासिन अपार्टमेंट क्वीन रेजिडेंस शांतरेल और आसपास की जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 4 अक्टूबर को दिन के 2 बजे से दिन के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को चालू कर दी जाएगी। सेबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
3: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना
4: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार रेडियो मॉरिशस पर।

संगीत में दिलचस्पी रखने वाले सभी दोस्तों को एक बार फिर अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 7:20, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग मॉरिशस। ये आपका मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना एमबीसी रेडियो मॉरिशस के लिए रोपे मीडियम आवाज 119 किलोहर्ट्ज पर, एक ही नंबर है 819 किलोहर्ट्ज। सो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही नंबर पर चून करें ऑन 819 किलोहर्ट्ज एएम मोड पर चल रहा है ये कार्यक्रम। बेशक इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं।

0: डिजिटल मोड पर क्लिक करें www.mbcradio.tv, फिर क्लिक करें लिसन एमबीसी रेडियो मॉरिशस। सो हम आप सभी लोगों का शानदार स्वागत करते हैं। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, जी हाँ, सितंबर चला गया, बाय बाय सितंबर, वेलकम अक्टूबर। अक्टूबर का तीसरा दिन है आज, शनिवार का दिन 3 अक्टूबर 2026। बस यही आशा है, ये उम्मीद करते हैं कि आज 3 अक्टूबर का दिन सभी के लिए अच्छी तरह से बीते और बेशक मुस्कुराइए, हंसिए, गाइए, जिंदगी का जश्न जिए। जी हाँ, जिस जिंदगी का जश्न मनाएं, हमेशा खुश रहे, प्यार खुशियां बांटते रहे, ठीक है। और मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे। देखते हैं आप लोग दोस्तों की चिड़िया जो होती है गीत गाती रहती है, चहचहाती रहती है, क्या बात है। तो कम से कम प्रकृति के कण से हम, प्रकृति के जो जीव जंतु उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे चिड़िया गीत गाते, आप भी यूं ही मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहे। दिस इज योर मस्त मॉर्निंग शो, सुबह का नजराना अभी से दिन के 9 बजे तक हर शनिवार की तरह। हम जानते हैं कि आप लोग मीठे मीठे नींद से अभी अभी जाग रही है, सो सुस्वागत हम। बहुत से लोग कब के जाग चुके हैं, काम पे है, जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकले हैं, बों को आश कहते हैं, काम तो करना पड़ता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, है कि नहीं। पर कुछ लोग बहुत लकी है कि सप्ताह के दिनों में काम करते हैं, वीकेंड को घर पे रहते हैं। पर घर पे रहने का मतलब ये नहीं कि कोई काम नहीं। बहुत सारा काम है, घर की साफ सफाई करना है, ये सब तो चलता रहता है कि नहीं। हाँ जी, सो जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी है, जहाँ पर भी है, बस हमारी आवाज़ को आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रोग्रामों के साथ जुड़े हुए, तो ये है आप ही लोगों का नंबर 1 लोकल रेडियो स्टेशन MBC रेडियो मॉरिशस। चलिए देर न करते हुए इस प्रातकालीन सभा की शुरुआत करते हैं आज के चिंतन सेगमेंट में, और आप जब सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी को।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: संसार में जो श्रेष्ठ होता है उसका ही चहुं ओर आदर होता है। अपनी श्रेष्ठता के कारण ही सागर नदियों का स्वामी है, अग्नि समस्त धरती का स्वामी है, और चांद नक्षत्रों का स्वामी है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपनी श्रेष्ठता का त्याग कभी मत कीजिए।

जी हाँ, सच्ची तो कहा कि जीवन के दिन छोटे ही सही, पर दिलवाला इंसान इस छोटे से भी जीवन को प्यार से जी लेता है कि नहीं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए। अब सुनिए हमारे रेडियो प्रोग्रामों की झलकियाँ, रेडियो मॉर्शस पर कौन कौन से प्रोग्राम रखे गए हैं। सो अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजाना कार्यक्रम, 7:45 होगा ज्ञान सरोवर हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से, 8:00 भोजपुर में समाचार और शोक समाचार पढ़े जाएंगे। उसके बाद योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना कार्यक्रम का दूसरा भाग, 8:05 से 9:00, 9:00 समाचार, समाचारों के बाद बिग टाइम मैगजीन आज की चर्चा किरण चट्टू जानकी के साथ, 10:00 समाचार, 10:03 पर उर्दू कार्यक्रम गुलाहिया की दत्त, दिन की 11:00 समाचार, समाचारों के बाद तमिल प्रोग्राम सिल्वर उलगम पूवना के साथ, दिन के 12:15 पर तेलुगु कार्यक्रम वंदना के साथ बालानंदम, दिन के 1:00 मराठी प्रोग्राम सीताबाई के साथ स्वर तरंग, दिन के 1:45 गुजराती कार्यक्रम, दिन के 2:15 आपकी पसंद देवीना के साथ, 4:00 होगा साहित्य दर्पण प्रोग्राम अलका जी के साथ, शाम के

बजे खेल खिलाड़ी रोशन के साथ, शाम के 6 बजे समाचार, समाचारों के बाद 6:30 बजे होगा डेविड के साथ चाइनीज प्रोग्राम हाई गेल यान गाइना, रात के 7 बजे तमिल प्रोग्राम, रात के 7:30 बजे तेलुगु कार्यक्रम, रात के 7:50 पर मराठी प्रोग्राम रजनी गंधा बापू जी की पेशकश में, रात की

अभिनाश के साथ महफिल शब अभिनाश के साथ रात के 8:40 पर रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक रत्ना पदारत की पेशकश में भोजपुरी चरका प्रोग्राम, रात के 11 बजे सुनहरे पल प्रोग्राम और सुनहरे पल पूनम के साथ रात के 12 बजे से कल सुबह के 5 बजे तक आप सुनेंगे नॉनस्टॉप फिल्मी तराने। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आज रेडियो मॉरिशस के प्रोग्रामों की झलकियाँ। आशा करते हैं कि आप लोग दिन भर इस रेडियो चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और यूं ही गाते गुनगुनाते रहेंगे। और ये पहला तराना आपके नाम आपकी महकी हुई जुल्फों की बातें हो रही है लता जी और यशदास जी की आवाज़ों में।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी आजकल हम पितृ पक्ष मना रहे हैं और बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं कि ये पितृपक्ष आखिर क्या है। सो पितृपक्ष जो है हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों पितरों को याद करने, उसका सम्मान करने और उनके लिए श्रद्धा से तर्पण पिंड दान व श्राद्ध करने का लगभग समय होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। सो हम पितृपक्ष इसलिए मनाते हैं ताकि पूर्वजों की स्मृति में यह श्रद्धा श्राद्ध किया जा सके। जहाँ पूर्वजों की स्मृति में श्राद्ध किया जाता है, जल तिल आदि से तर्पण किया जाता है। कई परिवारों में पितरों के नाम से भोजन और पिंड अर्पित करते हैं। ब्राह्मणों, ज़रूरतमंद लोगों, अतिथियों को भोजन दान भी हम देते हैं। कुछ परंपरा में गाय, कुत्ते, कौवे आदि को भोजन कराते और इसे शुभ भी माना जाता है। और परिवार में जिस पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि को हुई हो उसी तिथि पर श्राद्ध

करने की परंपरा भी होती है। और पितृपक्ष करने का उद्देश्य ये है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह समय अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, स्मरण और श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है। इसका भाव केवल कर्मकांड नहीं बल्कि परिवार की पिछली पीढ़ियों को याद करना और उसके प्रति सम्मान प्रकट करना भी होता है। सो अभी चल रहा है पितृपक्ष, सो ज़रूर अगर सुबह या कोई भी समय हो आप स्नान करते हैं, सो एक लोटा जल अपने जो पितर हैं उनके नाम ज़रूर उस जल को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर हमेशा बना रहे। तो भूलिएगा मत कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है और इसके बाद 11 अक्टूबर से हम देव पक्ष में प्रवेश करेंगे और देव पक्ष में वहाँ पर नौ दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा आरती होगी। अभी के लिए तो हम पितरों को याद करते हैं और बहुत से लोग पिंडदान भी करते हैं, तो अवश्य एक लोटा जल अपने पितरों को ज़रूर अर्पण करें।

ओ मेरे शाही खुबाज, यहाँ मोहम्मद रफी गाई से गीत के साथ ही मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना का पहला हिस्सा यहीं पर समाप्त होता है। याद है कुछ ही मिनटों में सुबह के 7:45 बजने वाले हैं। ठीक 7:45 बजे आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम। 8 बजे भोजपुरी में समाचार और शो के समाचार पढ़े जाएंगे और समाचार के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर, आपके अपने MBC रेडियो मॉरिशस पर AM2 पर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजारा प्रोग्राम के दूसरे भाग के साथ। उसमें कुछ डेडिकेशंस भी होंगे। Stay tuned, stay connected, सुनते रहिए प्रेम से AM2 MBC रेडियो मॉरिशस।

0: प्रिय श्रोताओं, जान सरोवर नामक साप्ताहिक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज अतिथि के रूप में डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी हमसे जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी, आपका हार्दिक स्वागत है MBC स्टूडियो में।
1: धन्यवाद विश्वानंद जी।
0: श्रोताओं, किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार कार्य हेतु उस भाषा से संबंधित गतिविधियों का समय समय पर आयोजन करना बहुत आवश्यक होता है। ये गतिविधियाँ भाषा सीखने वालों को प्रोत्साहित करती हैं। प्रिय श्रोताओं, हिंदी स्पीकिंग यूनियन भी ऐसी गतिविधियों का आयोजन करता रहता है। हमारे समक्ष डॉक्टर अंजलि जी अभी उपस्थित हैं, जो हिंदी संगठन की अध्यक्षा तथा MGI के हिंदी विभाग की वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। अंजलि जी, पिछले महीने हिंदी प्रेरणा के सुर कार्यक्रम की सफलता हेतु

0: आपको हार्दिक बधाई।
1: धन्यवाद।
0: स्थानीय कलाकारों ने प्रेरणादायक गीतों के माध्यम से हिंदी भाषा का यशगान किया। आपकी अध्यक्षता व कुशल नेतृत्व में हिंदी स्पीकिंग यूनियन निरंतर हिंदी भाषा को समृद्ध करने में संलग्न है, इसके लिए आपको पुनः बधाई।
1: धन्यवाद।
0: अंजलि जी, आप हमें यह बताएं कि इस महीने में कौन सी गतिविधि निश्चित की गई है?
1: जी, जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि हिंदी संगठन समय समय पर अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर रहा है
0: जी,
1: ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार सही ढंग से हो सके। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी उद्देश्य से अक्टूबर महीने में हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा हिंदी दिवस 2026 के अवसर पर एक विशेष पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। यह एक अवार्ड सेरेमनी है जो हम शनिवार 10 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं ओक्टावियो ऑडिटोरियम रिज्वे। और इस अवसर पर पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में आयोजित जो स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट की जो परीक्षाएं होती थी, उसमें हिंदी भाषा और हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में जो बच्चे अव्वल आए हैं, विशेषकर जो 10 बेस्ट छात्र आए हैं, शीर्ष विद्यार्थी आए हैं, उनको हम हिंदी में उस अव्वल आने के लिए उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं,
0: पुरस्कृत कर रहे हैं।
1: और ये वे छात्र हैं जो अपनी मेहनत से हिंदी भाषा के महत्व को समझते हुए अन्य भाषाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर सभी को गौरव प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही केवल विद्यार्थियों को बस पुरस्कार देना नहीं है, लेकिन वर्षों की उनकी जो मेहनत है, क्योंकि एक साल में तो यह होता नहीं है। SC HSC में सोचिए कितने वर्षों तक वे लोग पढ़ते हैं तब जाकर परीक्षा में भाग लेते हैं। तो उनकी मेहनत को पहचानना, उनका मनोबल बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि अन्य विद्यार्थी भी उनको देखकर हिंदी सीखने के लिए इसी तरह प्रेरित हों।
0: जी हाँ।
1: और हिंदी मैं कह सकती हूँ क्योंकि वह केवल एक विषय नहीं है, वह तो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान से जुड़ी हुई भाषा है।
0: एकदम सही।
1: तो बस यह एक अवसर होगा जहां हम उन बच्चों को धन्यवाद भी करेंगे और प्रोत्साहित भी करेंगे।
0: और अंजलि जी, कहा भी गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। और इस प्रकार से जैसे आपने इस गतिविधि का आयोजन किया है और करेंगे भी बाद में भी, तो इसमें उनको एक फल भी प्राप्त हो रहा है, हर एक छात्र को फल प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत सराहनीय कार्य है।
1: हाँ, और उनको प्रमाण पत्र भी मिलता है। ये आजीवन उनके साथ रहता
0: उनके
1: है
0: साथ,
1: कई वर्षों बाद भी वे देखेंगे तो उनको पता है कि उन्होंने क्या जीवन में प्राप्त किया है, ना अचीव किया है।
0: और जब कभी भी वे साक्षात्कार इंटरव्यू में जाएंगे नौकरी के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है हमेशा।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा कार्य अंजलि जी।
1: धन्यवाद
0: अंजलि जी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया और यह आयोजन हिंदी दिवस के ही उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा
1: जी।
0: है। आपके लिए हिंदी दिवस क्या महत्व रखता है?
1: जी, मेरे लिए विशेषकर हिंदी दिवस केवल, जैसे नाम ही है ना हिंदी दिवस
0: जी,
1: तो वह केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। यह तो मैं कहूंगी हिंदी भाषा के प्रति अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारी को याद करने का अवसर है
0: जी।
1: और हिंदी ने मॉरिशस के इतिहास में भारतीय मूल की हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
0: जी।
1: और अगर हम अतीत की ओर जाएं तो जैसे हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में उस भाषा और संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण किया, तो आज इतनी सुविधाओं के होते हुए भी हमारा दायित्व बनता है कि उन सुविधाओं का प्रयोग करते हुए उस भाषा का प्रचार सही ढंग से करें। तो हिंदी दिवस इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें, अपनी जड़ों से जुड़ें। और यह विशेषकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो नई पीढ़ी है उस तक हम उस हिंदी को पहुंचाएं। और यही उद्देश्य है कि हिंदी का उत्थान बढ़ता रहे। और यह आयोजन मैं कहूंगी एक तरह से एक बहाना है, चूंकि हिंदी दिवस है तो एक बहाना है। हम हिंदी दिवस मना तो रहे हैं, सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हर दिन अगर ध्यान दिया जाए तो हिंदी दिवस होना चाहिए।
0: हर दिन,
1: हर दिन हमें हिंदी को अपने उस जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए।

0: चाहिए, चाहे घर से बाहर हो चाहे घर में ही आपस में थोड़ी बातचीत, या फिर आप एक फिल्म देखें, आप कुछ हिंदी में पढ़ें, उस हिंदी को जोड़े रखना चाहिए।
1: जैसे बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम,
0: बिगिंस एट होम, सही
1: घर से ही माता पिता बच्चे इत्यादि सभी लोग आपस में हिंदी में बात करें,
0: हिंदी में बात करें,
1: बहुत आवश्यक है
0: जी। तभी
1: घर
0: तो
1: से ही शुरू करें, और जैसे बोलते हैं माता की जो गोद है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय,
0: सही बोल रहे हैं,
1: तो इसीलिए वहीं से शुरू करते हैं, घर से ही
0: जी। बिल्कुल
1: अंजलि जी, क्या आज भी बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे हिंदी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्या कारण है, क्या समस्या है उनकी?
0: देखिए, मैं कहूँगी दो पहलू हैं, ठीक। जहाँ हम हिंदी शिक्षण को देखते हैं, चूंकि इतने वर्षों से हम शिक्षण से जुड़े हुए हैं, तो आज भी कई बच्चे हैं जो हिंदी के महत्व को समझते हैं और उस भाषा को पढ़ रहे हैं, अपने सीने से लगाकर साथ साथ उसको चल रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं, नियमित तरीके से अपनी बैठकाएं या फिर हिंदी का पठन पाठन कर रहे हैं। यह सकारात्मक पॉइंट है। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा पहलू भी है कि दिन ब दिन कुछ बच्चों की, सभी का तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ बच्चों की रुचि कम हो रही है। और यह एक तथ्य है, एक फैक्ट है। आजकल कायम के सामने, ख्योल मुगसियां के सामने उनको लगता है कि ख्योल मुगसियां ज्यादा आसान है, तो वे लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं,
1: उनका झुकाव उधर
0: चला जा रहा है। और ये जो कई बैठकाएं हैं जो इतनी सुविधाएं प्रदान कर रही है, वहां पर भी बच्चे कम होते जा रहे हैं। तो जो आपने पूछा कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चारों ओर अगर देखा जाए तो बच्चों की संख्या कम हो रही है और आने वाले दिनों में अगर अभी ही इसको नहीं संभाला जाएगा तो समस्या और बढ़ सकेगी। और इसके पीछे क्या है कि विशेषकर जो माता पिता है, अभिभावक
1: है,
0: उन्हें अगर वे ही समझ जाएं कि हिंदी क्यों जरूरी है, हिंदी एक अतिरिक्त भाषा से उनको क्या मिलने वाला है, और बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे अध्यापक सभी मिलकर, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन बच्चे को पहले दिमाग में डालना चाहिए कि हिंदी क्यों जरूरी है।
1: अभी मैं इस प्रश्न पर आने ही वाला था।
0: जी जी,
1: देखिए, जो बच्चे या अभिभावक हमें अभी सुन रहे हैं
0: जी,
1: क्या आप उन्हें यह बता सकती हैं कि आधुनिक संदर्भ में हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आज हिंदी सीखने के अनेक लाभ हैं, अनेक फायदे हैं। सबसे पहले तो हिंदी हमें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ती है। दूसरी बात, अन्य भाषाओं की तरह, इंग्लिश, फ्रेंच, अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भी तो एक समृद्ध भाषा है। और आज समय के साथ साथ विश्व भर के अनेक देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है
1: जी।
0: मैं तो कहूंगी कि यह हमारा एक वरदान है जिसे सभी को समझना चाहिए। जानते हैं, सभी देशों में यह सुविधा नहीं है कि आप इंग्लिश भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, भोजपुरी भी समझ लेते हैं, और क्रियोल, पांच पांच भाषाएं हम सीख कर और साथ साथ लेकर चलते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। अन्य देशों में आप बातचीत करेंगे तो उनको मात्र खाली अंग्रेजी या खाली फ्रेंच आती है। तो अगर हमारे बच्चे ये इतना समझ लें, हमारे बड़े बुजुर्ग और जो हमारे जो माता पिता है बच्चों का, जब वे मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए सभी को कि आप एक अतिरिक्त भाषा सीख रहे हैं और आज हिंदी भाषा तो विश्व गुरु बन रही है। भारत जिस तरह से विकसित हो रहा है, अलग अलग देशों में अनुमान लगाइए, जब भारत के प्रधानमंत्री हिंदी बोलते हैं लोगों को हिंदी सीखनी पड़ रही है। इंटरप्रेटर खोज के ट्रांसलेशन करके वे हिंदी सीख रहे हैं। मतलब हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। और जो भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, वे मेहनत करके हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में कितना इसका महत्व बढ़ रहा है।
1: और देखिए, हिंदी में कई ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, बहुत ऐसी पुस्तकें हैं,
0: बिल्कुल,
1: जिनका अध्ययन करके हम और विद्वान बन सकते हैं।
0: और जो हिंदी है आज, तो वह डिजिटल मीडिया, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश फ्रेंच आगे बढ़ रहा है, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आजकल जितना कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, फेसबुक देख लीजिए, अलग अलग ट्विटर, चारों ओर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा।
1: और हिंदी का प्रयोग करते हुए मोबाइल में भी हम किसी से भी आसानी से मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
0: तो चाहे मीडिया हो, सिनेमा हो, संगीत हो, पर्यटन हो, टूरिज्म हो, शिक्षा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध ही क्यों ना हो, वहां पर अगर ये बच्चे आज समझ से हिंदी सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, तो आगे चलकर उनको कितना लाभ होने वाला है। और जानते हैं, मेरा यह मानना है, मेरा अपना अनुभव भी है, जब आप हिंदी जान जाते हैं

0: तो इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी जानने के साथ साथ कल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले गए, कहीं भी चले गए, तो आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, बिल्कुल गर्व के साथ आप बात करते हैं और आपके व्यक्तित्व में ही एक निखार आता है, आपकी पर्सनालिटी जैसे बनती है
1: जी।
0: तो मैं तो कहूंगी सभी माता पिता को, वे अपने बच्चों को बताएं कि क्यों, और थोड़ी सी सख्ती माता पिता की तरफ से तो होनी चाहिए ना। आए दिन मेरे पास शिकायतें आती हैं, मुझे बताया जाता है कि स्कूलों में देखे इतने पत्र आ रहे हैं, बच्चे हिंदी नहीं करना चाहते, माता पिता ही लिख कर भेज रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान कहाँ से निकलेगा? अध्यापक तो है पढ़ाने के लिए, एक तो अध्यापक प्रोत्साहित करे, लेकिन घर पर माता पिता को थोड़ा सा सख्त होकर, अभी थोड़ी सख्ती दिखाएंगे वो तो आजीवन बच्चा जो हिंदी सीखेगा उसके लिए काम आएगा।
1: और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, देखिए मेरे एक अध्यापक ने मुझे कहा था कि तुम यदि हिंदी सीख लोगे अच्छी तरह से, तो मान लीजिए भारत जा रहे हो या भारत से कई अन्य देश भी जा रहे हो जहाँ पर हिंदी बोलचाल में प्रयुक्त हो रही है, तो वहाँ पर हिंदी मित्र है,
0: बिल्कुल
1: दोस्त है,
0: दोस्त है।
1: तो इसीलिए दोस्ती करो हिंदी से और आगे बढ़ो,
0: आगे बढ़ो। और जानते हैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन में ही कई बार फोन आते हैं, कई लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, कई बड़े लोग बोलते हैं कि अपने समय में उन्हें अवसर नहीं मिला था हिंदी पढ़ने के लिए, तो वे अब हिंदी सीखना चाहते हैं
1: जी।
0: तो जिन बच्चों को समय चलते अभी हिंदी उनको सुविधा मिल रही है, तो सीखिए और आगे बढ़िए ना।
1: अंजलि जी एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय भी अभी निकलता जा रहा है। अंजलि जी, 10 अक्टूबर जो हिंदी दिवस कार्यक्रम होने वाला है
0: जी,
1: उसमें कैसी प्रस्तुति होने वाली है? मैंने सुना कि कुछ हिंदी स्पीकिंग यूनियन से
0: जी। एक तो यह जो प्रोग्राम होगा उसमें हम बच्चों को केवल पुरस्कृत नहीं करेंगे, बल्कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा।
1: अच्छा।
0: और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के बच्चे सभी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे हिंदी में, कहानी कथन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, और साथ में कविता वाचन होगा। और जैसा कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन का एक लक्ष्य है प्रकाशन को भी प्रोत्साहित करना, तो पुस्तकों का भी लोकार्पण होगा स्थानीय लेखकों की तरफ से। तो मैं तो चाहूंगी कि जितने लोग मुझे बिल्कुल जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं बस यही अनुरोध करूंगी कि आप आएं, हमारे उन बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, हिंदी के कार्यक्रमों से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। अब विश्वानंद और डॉक्टर अंजलि चिंतामणि को आज्ञा दीजिए अगले सप्ताह जान सरोवर नामक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम से जुड़ने की कृपा करें। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। नमस्कार और शुभ दिन।
0: नमस्कार।

এবখত ফজির কি 8 বাজে বাটে नमस्ते भोजपुरी में समाचार सुना जा। कैबिनेट ई नोट करलन के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम के नवागति देवे खाते न और सरकार दिने घोषित उपाय की तेजी से लागू करे खाते न इकर बोर्ड के पुनर्गठन कर जाता। ये पुनर्गठन में जी ग्वांग जिल्बेया शूट के पाउट टाइम चेयरपर्सन बनावल गलबाते सुहामन चिलन जे के जे एन चिलन के नाम से भी जानल जाला। उनका उपभोक्ता लोग के हित के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करल गल बाते और वीरेंद्र मुसाई के इंडिपेंडेंट मेंबर बनावल गल बाते। एस डी सी के पुराना बोर्ड के 29 सितंबर के बर्खास्त कर देवल गल रहा। ये फैसला की घोषणा एक दिन बाद बुधवार 30 सितंबर के व्यापार मंत्री माइकल सिक्यूएन

रेडियो प्लस पर कर ले रहलन। मॉरिशस में पानी के भंडार के लिए की स्थिति अभी ले चिंताजनक बनल बातें। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ा के मुताबिक कल 2 अक्टूबर के महोवाकुआ जलाशय में पानी की स्तर घट के 36.6% के रहल। पानी के भंडार में लगातार जुन कमी आवता और मौसम के सूखा रहे के जुन अनुमान बातियों करा देख के मंत्रिमंडल पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनावे के जायजा लेलन। ये कमेटी के अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करियन। एकर काम उपलब्ध पानी के संसाधन के जस्ती नियमन प्रबंधन खातिन जरूरी और तत्काल कदम पर विचार करे के बाद अभी पानी पर लागू मौजूदा पाबंदी जारी रही और यदि हालात जस्ती बिगड़ी तो ये पाबंदी की जस्ती सख्त कर जाए। अधिकारी लोग जनता से पानी की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करे की अपील करता। कहे कि पानी के भंडार लगातार कमती होता और मौसम भी अनुकूल नहीं रहे के अनुमान बातें। मॉरिशस में सितंबर से कॉन्सेंट्रिक्स के गतिविधि बंद होने के मामला के बाद अब समाधान मिल गल बातें। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करे होलाई कंपनी के कुनो 300 कर्मचारी की हर बरिस के सेवा के बदले 2 महीना के वेतन एकर संगे नोटिस के तौर पर 1 महीना के वेतन देवल जाए। ये प्रस्ताव कल 2 अक्टूबर के श्रम मंत्री की देखरेख में कॉन्सेंट्रिक्स और कर्मचारी के प्रतिनिधि के बीच होल दूसर बैठक के बाद सामने आल बातें। श्रम मंत्री रेजा उद्दीन बोलन के सस्ता श्रम खातिन मॉरिशस की तुलना में मडागास्कर जस्ती आकर्षक बन गल बाते। वो बोलन के ICT मंत्री अविनाश राम दोहल और उद्योग मंत्री आदिल अमिया मियाँ एगो अंतर मंत्रालयी समिति के हिस्सा हवन। ई समिति ओताम यानी आउटसोर्सिंग एंड टेली कम्युनिकेशन एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के संगे मिलकर आउटसोर्सिंग सेक्टर में मॉरिशस की प्रतिस्पर्धा बढ़ावे पर काम करता। और बैंक ऑफ मॉरिशस देश की में नकली नोट के चलन के लिए की चेतावनी देवता। बैंक ऑफ मॉरिशस जनता से नोट लेवे या इस्तेमाल करे बखत जस्ती सावधानी बरते की अपील करता। बैंक ऑफ मॉरिशस के करेंसी ऑफिस के चीफ जॉन क्लोड शामारी बोलन कि असली नोट के पहचान के 3 गो तरीका बाते छू के देख के और उस सुरक्षा चेन के जांच करके अगर कोनो नोट के असलियत पर शक हो तो उसे स्वीकार नहीं करे के चाहिए और तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में एकर जानकारी देवे के चाहिए। विदेश में फ्लाई दुबई विमान के पायलट पर होल हमला के मामला में अधिकारी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की चेतावनी दिलन। ट्रंप बोलन कि यदि जांच में ई हमला के पीछे ईरान के हाथ हो या होवे की पुष्टि हो तो अमरीका बहुत ही घातक जवाबी कार्रवाई करी। ई भी बोलन के विमान के को पायलट के ईरान से संबंध होवे की संभावना बातें। तो ये रहल भोजपुरी में समाचार। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। News on MBC Play and MBC.MU. टूरी रोड बनाकर में टूरी रोड बनाकर में 56 बरिस के सेकंड सीजन के श्री उमेश एक बार जो राजेश नाम से ज्यादा जानी जिनका लोग राजेश नाम से जानते हैं जा गुजरगर होन करमाती आज इनके ढाई बजे उनका घर है टूरी रोड बनाकर से उठा के अंतिम संस्कार करते हैं बनाकर के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे आट 2:30 PM नंबर 62 NHC बैलेंस प्लेन मान्यो में उनहत्तर बरिस की 69 के श्री आनंद बालचंद जिनका लोग राजन नाम से जानते हैं जा गुजर गल होन करमाती आज इनके 10 बजे उनकर घर है नंबर 62 NHC बैलेंस पेन मानियों से उठा के अंतिम संस्कार का तीन पेन मानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन डे 8:10 AM पेलगान रोड से बास्तपुल में 60 बरिस की 60 के श्री प्रदीप कुमार गोपुर जन श्रीमती इंदिरा गांधी SSS के गोपूर्व कर्मचारी रहलंजा गुजरगल हवन कर माती आज दिन के तीन बजे उनकर पत्नी श्रीमती धीमावती गोपुल के घर पर घर रोड से बासेपुल से उठा के अंतिम संस्कार खातिन में जिन कौंदमास के शमशान भूमि ले जावल

रिक्रमेशन टुडे एट 3 PM स्कूलें कालबास में चौरान भी बरी सके कथों का तूसों के श्रीमती ज्ञानती इमरित पैदाशी नाम ननकू जिनका लोग सतवंती नाम से जाना रंजा गुजर ग्रहण करमाती आज इनके 2 बजे जिनकर बेटा श्री कवि इमृत के घरे स्कूल इन कालबा से उठा के अंतिम संस्कार का तीन मिनिस्ट्री के शमशान भूमि ले जाओ बल जाए क्रमिशन टुडे आज 2 PM बेल्टिया रोड हाईलैंड्स में तिरासी बरी सके कतों के श्रीमती देवज ननी बसावन पैदाशी नाम सीरस और जो दिव्यांगी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज जिनके 10 बजे उनके बेटे श्री विकास बसावन के घरे बेल्टियर रोड थाईलैंड से उठा के अंतिम संस्कार करने फिनिक्स के शमशान भूमि जाओ जाए क्रमिशन टुडे 10 AM दो स्ट्रीट बोवालों में 72 बरीस की सुंदूजों के श्री विजय महाधुर जिनका रालोक प्रेमनाथ नाम से जनर रंजा गुजर ग्रहण करमाती आज दिन के 2 बजे उनकर घरे दो स्ट्रीट बोवालों से उठा के अंतिम संस्कार का दिन टोमोलेन मेबर्ग के शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रमिशन टुडे 2 PM कोई राची लेन लिस्काली में 81 बरी सके 89 के जनाब बाशेर कोई राची जिनका रालोक बाशेर नाम से जनर रंजा गुजर ग्रहण उनकर माती आज दिन के 10 बजे उनकर घरे कोई राची लेन लिस्काली से उठा के दफनावे खातिन ला सोजिन इसका लिए शमशान भूमि जावल जाए क्रमिशन टुडे फ्यूनरल टुडे 10 AM पॉम्पलमस रोड लाफलोरामी 21 महीना के 21 मुआ के बेबी चारवी नंदू जिनकरा लोग येशनी नाम से जंत्र रंजा गुजर कर हवन करमाती आज इनके बारह बजे उनकर दादा जी के घरे प्रीतम कुमार नंदू के घरे पॉम्पलमस रोड लाफलोरा से उठा के दफनावे खातिन गाँव बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे नून बाल्मीकि रोड सा मिशेल बेलेमी 43 बरीस के 43 के कुमारी जयश्री जगेसर जिनकर लोग स्वीति नाम से जनर रंजा गुजर ग्रहण करमाती आज इनके ग्यारह बज के आधा उनकर पिता श्री प्रेमनाथ जगेसर के घरे प्रेमनाथ रोड सा मिशेल बेलिया से उठा के अंतिम संस्कार का दिन बोशों के शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रमिशन टुडे 11:30 AM न्यू रोड रोशनवामी 53 बरीस के 53 के श्री अभिचंद किस्तो जिनका लोग बचन नाम से जनर रंजा गुजर ग्रहण करमाती आज इनके दस बजे उनकर घरे न्यू रोड होशनुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिन बेलमोंग गुडलैंड के शमशान भूमि जाओ बल जाए क्रमिशन टुडे 10 AM रॉय रोड तायाक में विष्णु मंदिरम के भेरी 85 बरीस की 85 के श्री दीनारायण बंगसी जिनका लोग देवनारायण नाम से चंद्र रंजा गुजर घर हवन करवाती आज इनके ग्यारह बजे उनकर घरे उनकर बेटा श्री अश्विन बंगसी के घरे रॉय रोड तायाक से उठा के अंतिम संस्कार खरीन तायाक के शमशान भूमि जाए बजाय क्रमिशन टुडे 11 AM ओडवेंटा नंबर दो वाकुआ में 90 बरीस के 90 के श्रीमती मधुरी शिबू पैदाशी नाम मधु जिनका लोग शांति नाम से चंद्र रंजा गुजर ग्रह हवन करमाती आज इनके दस बज के आधा उनकर बेटी श्रीमती बाबीता शिबू के घर ओडवेंटा नंबर दो वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिन सिर्फ नंबर पाँच बैलेंस के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे 10:30 AM Réunion Morel, Petit Raffremi, Cooney Road, 74 बरीस की 74 के श्री धर्मदेव दाया जिनका लोग विजय नाम से जनर रंजा गुजर ग्रहण करमाती आज इनके बारह बज के आधा उनकर घर कुनी रोड रेन्यू मोरल पे चिराफ से उठा के अंतिम संस्कार का दिन दाहुची के शमशान पर मिले जाओ जाए क्रमिशन टुडे 9:30 66 बरीस की 66 के श्री धीरेन्द्रा वीरागादू जिनकर लोग गाँव सो नाम से चंद्र रंजा और जो न बेगोनिया 601 NHDC कौन लो व्यू रह रंजा गुजर ग्रहण करमाती
आज दिन के 11 बजे आज दिन के 11 बजे वो बासा के लिए अनसन से उठा के दफना भी खातिन सा मौत है कि शमशान भूमि जावर जाए फ्री नेटर चिड़िया 11 AM टुकू रोड हाईलैंड फिनिक्स में टुकू रोड हाईलैंड फिनिक्स में 88 बरिस की कथमा बीतों के श्रीमती के श्री राम गुलाम श्रीमती के श्री राम गुलाम पैदाश नाम अकू और टू चिन करा लोग बिदवंती।

सुबह के 8:20 हो रहे और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पे MBC रेडियो मॉरिशस। प्रिय श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति। बेल्टेयर मोसेलमों बेल्टेयर के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 3 अक्टूबर को दिन के 10:30 से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। इसी भी सुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी

0: बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
3: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
4: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
0: एक बार फिर स्वीकार कीजिए अपने होस्ट दोस्त अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द सेकंड आवर। जी हाँ, सुबह का नजराना, ये मस्त मॉर्निंग शो अजय प्रताप सिंह स्टाइलू के साथ दिन के 9 बजे तक, और हमारा प्रसारण चल रहा है लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर, यानी कि आप हमें देख सकते हैं। सो टिकटॉक पेज पर SMS भी कर सकते हैं और अपनों के नाम जोड़ सकते हैं, और या तो आप फ़ोन कर सकते हैं 4028085 पर। अगला गाना एक बहुत ही प्यारा सा गाना है। जी हाँ, ये गीत आप सुनेंगे शारदा जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सूरज। देखो मेरा दिल मचल गया, देखो मेरा दिल मचल गया, मचल गया। और किसका दिल मचला है, चलिए हम बेशक ये गीत जो है चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो इस समय टिकटॉक पेज के साथ जुड़े हुए हैं, MBC रेडियो टिकटॉक पर, MBC के टिकटॉक पेज पर। सुनिए लक्ष्मण जी, गीत आपके नाम, और यही गाना जाएगा नाद लदीशा रोशन, नीतीश गवंदी, कृतिशा, जेम्स चियो, शैलेश नंदुल, शैलेश नंदुलाल, और यही गीत जाएगा वर्षा रुदो, हाय वर्षा, और यही गीत आवा के नाम, केविशा, रेखा बुधु, और यही गीत हम चलाएंगे आशवी, रेनोहिता, ललिता चरण, लीज, रजनी, रजनी और उनके पूरे परिवार के नाम। यही गीत हम चलाएंगे संजय बिहारी की ओर से, उनकी पत्नी सुरेखा, बेटा कुशल, बहू, बेटी रिंकू, दामाद, छोटे बच्चे और सब बिहारी परिवार के नाम। और ये गीत जाएगा रेहाना हसनानी की ओर से, ये गीत साइलेन, उसकी माँ रीता और उसकी मौसी रेणुका के नाम भी। और ये गाना जो है हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम, अनीता लालजी मौदालबेर से, और सब हितू परिवार के नाम, सब गोगा परिवार के नाम। और यही गाना हम चलाएंगे टिया की ओर से, अनीता, अनीता जो ग्रोजिल रहती है, ये गीत वो मांग रही है टिया के लिए। और यही गाना हम चलाएंगे अर्जुन की ओर से, उनके सभी दोस्तों परिवार वालों के नाम। और चलिए अभी देखते हैं, अगर कोई दोस्त है लाइन पे हमसे बातें करना चाहते हैं, कज़ोदे विद ज़ोविद सैक अभी कोई नहीं है, कोई बात नहीं। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, देखो मेरा दिल मचल गया। यस, और यही गाना संजय रैन के नाम, इसी दो बलिता दवियेश, संजय प्रजापति, रचना, प्रिंसेस एंजल, प्रिया सबिता, और लेडी जागो, बीना पादू, सभी आपादू परिवार रोजबेल से है। पवन जाम्बा, यह गीत आपके नाम भी, देवेन नदी वाला वैनकूवर कनाडा से है, और मॉरिशस में जितने भी लोग इस समय घर पे है, घर से बाहर है, शॉपिंग कर रहे है, कहीं घूमने जा रहे, जितने भी लोग सफ़र में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो ये गीत आपके नाम, देखो मेरा दिल मचल गया।

किसी के पास बहुत धन है पर मन की शांति नहीं, कोई व्यक्ति गरीब है पर वो जीवन में खुश है, संतुष्ट है, है कि नहीं। सो ये सब तो चलता रहता है। ये जरूरी नहीं कि केवल पैसा ही हमें बहुत सुख दे सकता है। हाँ, पैसा चाहिए, धन दौलत की बहुत आवश्यकता है, पर एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जिंदगी तब होती है। जिंदगी अच्छी तब होती है जब हमें अपनों का साथ मिलता है, और खासकर जब हम मुश्किल के समय में होते हैं और जब अपने हमारा साथ देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हर किसी को किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत है। यहाँ पर स्मॉल हग, एक जादू की झप्पी, स्मॉल टैप, जी हाँ, दैट मीन्स अ लॉट, है कि नहीं। सो अगर हो सके समय समय पर तो ट्यूनी एंड डियर वंस, उन्हें एक छोटा सा हग या जादू की झप्पी ज़रूर दीजिएगा। हम तो अभी से आपको जादू की झप्पी दे रहे हैं रेडियो मशर्स की ओर से। यस, इट मीन्स अ लॉट है एट टाइम्स की ज़िंदगी में जब कोई निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, किसी का दिल टूट जाता है। सो जस्ट गो एंड हग द पर्सन, एक छोटा सा हग दीजिए और आप देखिएगा कि वो कैसे उसका मूड सेट हो जाएगा। अगला गाना, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, फिल्म का नाम है इवनिंग इन पेरिस, और ये गाना जाएगा इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप है विद्या, किरण, भूप नारायण, प्रियंका राय, जिया हुसैन मोहम्मद, यह गीत आपके नाम भी, अरुणा, चमक सिंह, फिर यही गीत जाएगा नर्मदा जंगू के नाम, अशबीर करीम, नीलिमा जी, यस यह गीत आपके नाम भी, और प्रियंका जी हमारा साथ दे रही है, नीलिमा भी, और यही गाना जाएगा सुनीता, राजन, अनीता, नीतीश,

और किसी का जन्मदिन है, जी हाँ। और ओके, नीलिमा जी बहुत प्यार से हमें सुन रही है और देख रही है टिकटॉक पेज पर, मानसा स्वीट यह गीत आपके नाम भी। सो जितने भी लोग इस समय हमें टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं और रेडियो पर हमें सुन रही है, सो हमें देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। ये रेडियो आप ही लोगों का है और ये एमबीसी का जो रेडियो मॉरीशस का टिकटॉक पेज है, यहाँ पर आप

इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गाना काफ़ी पुराना गाना है, पुरानी फिल्म से लिया गया, पर गीत एकदम लाजवाब है। यस, जब भी आप यह गीत सुनेंगे आपका मूड एकदम सेट हो जाएगा। और अगर आज आपका जन्मदिन है, इट्स योर बर्थडे, सो बर्थडे बॉयज एंड बर्थडे गर्ल्स, हैप्पी बर्थडे, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है। तो चलिए, जितने भी लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन लोगों के नाम ये प्यारा सा गाना। किसी ने आपको विश किया या ना किया हो, हम आपको विश करते हैं ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: जहाँ सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार आप सबों के जिंदगी में, यही तो हम चाहते हैं, यही तो दिल से दुआ करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहे, मुस्कुराते रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। सुबह 11:40, मौसम तो बड़ा ही प्यारा है, धूप मुस्कुरा रही है और ऋतु विज्ञान केंद्र का कहना है कि आज गर्मी भी काफ़ी होगी। अगर आप देखते हैं कि मौसम प्यारा है, काफ़ी गर्मी है और अगर आप स्विम करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए समुद्र तट पर, अच्छा समय बिताएं। नेक्स्ट गाना तुमसे बढ़कर दुनिया में, काम चोर फिल्म का गाना है ये गीत, प्रियंका राय के नाम, प्रतिमा दुखित राम, ये गीत आपके नाम और आपके पति कृष्ण, मामा बसंती, दुखित राम और रामसरन परिवार के नाम, शोभा जी नमस्ते, प्रमिला जी, नीलिमा जी, फिर शोभा जी, ये गीत आपके सभी दोस्तों के लिए और हमारे लिए भी, थैंक यू शोभा। लोरीना, यह गीत आपके नाम, यूजर 8743, यह गीत मानसी, तुषिका, सीवन का और हैप्पी बर्थडे टू दादी सुनीता, और दादी सुनीता का जन्मदिन है, सो दादी जी माफ कीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी सुनीता। और जितने भी लोग अपना बर्थडे मना रहे या शादी की सालगिरह, कोई भी खास मौका, सो कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बधाई। और ये प्यारा सा गाना टू ऑल माई एक्स टीचर्स ऑफ MGI कॉलेज, मिसेज बंधन, मिसेज ओकर, मिसेज झमन, मिसेज रघुनंदन, मिसेज आगुबा, और यही गाना चलाएंगे MGI कॉलेज मोका के सभी स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के स्टूडेंट्स और रेक्टर के नाम, यही गीत हम चलाएंगे सैतोबे SSS कॉलेज के सभी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स के नाम। एंड अबव ऑल लेट मी विश ऑल द टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे। जी हाँ, नेक्स्ट मंडे को मॉरिशस में हम मनाएंगे अध्यापक दिवस, टीचर्स डे। सो जितने अध्यापक हैं, वेदर इट्स प्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सो सभी अध्यापकों को हैप्पी टीचर्स डे। और टीचर का होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अगर हम आज रेडियो पर इस समय लाइव आपसे बात कर रहे हैं और कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो हमारे अध्यापकों के बदौलत, जो हमारे जो गुरु होते हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। और हमारे पहले गुरु होते हैं, वे आवर फर्स्ट टीचर्स, आवर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, वो हमारे सबसे पहले टीचर होते हैं। फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। सो आज अगर समाज में इतने बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, अध्यापक है, कोई भी काम आप करते हैं, सो आपके अध्यापक अगर नहीं होते तो आज आप यहाँ पर इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते। सो हमेशा अपने गुरु को ना भूलें। और भारत में एक परंपरा है, जब टीचर्स डे होता है तो जो लोग होते हैं वो अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, फल लाते हैं, तोहफे लाते हैं, प्रभु अपने टीचर के चरण धोते हैं। जी हाँ, वहाँ पर एक ट्रेडिशन है, बहुत से देश में ऐसा होता है। अब पता नहीं यहाँ पर कैसे लोग मनाते हैं, पर ऐसा ही मनाना चाहिए कि एक खास दिन होता है जब हम अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं कि गुरु जी या बहन जी, आपकी मदद से, आपके सहयोग से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, जितना भी आपने मेरे लिए किया है बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा याद रखिएगा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जी हाँ, जो हमारे आचार्य है वो भगवान, जो हमारे गुरु जो होते हैं, जो हमारे उस्ताद होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम

यहाँ पर भी है, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर है. सो थैंक्स, थैंक यू ऑल माई टीचर्स, माई टीचर्स पर्सनली और राइट एंड ऑल द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मॉरिशस एंड अब्रोड एज वेल. जितने भी लोग ये अध्यापक का काम करते हैं, इट्स अ वेरी नोबल जॉब, टीचिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन. सो सभी अध्यापकों को हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है. यूँ ही पढ़ाते रहिए, बच्चों को सिखाते रहिए, बच्चों का मार्गदर्शन करते रहिए और बस ये जो सिलसिला है अध्ययन का, एजुकेशन का, यूँ ही चलता रहे. So don't forget, Monday will be holiday for all the teachers. Happy Teachers Day.

जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

जैन दिनों गोविंदन की पूजा भी हो रही है, फिर उसके बाद वेंकटेश्वरा पूजा, और उसके बाद देव पक्ष आएगा, और उसमें जो है नव दुर्गा जो है हम उनका ध्यान करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, और नवरात्रि, नौ दिनों नवरात्रि तक दुर्गा माँ की आराधना करेंगे। सो ये जो नौ रूप है, पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पाँचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, और नौवां रूप जो है सिद्धिदात्री। और शैलपुत्री जो है हिमालय की बेटी है, ब्रह्मचारिणी जो है वो भक्ति का रूप है, चंद्रघंटा वो साहस का प्रतीक है, कुष्मांडा सृष्टि से जुड़ी हुई है, स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय भगवान की माता, कात्यायनी ये जो वार्य फॉर्म है दुर्गा का, जब दुर्गा माँ जब अपने बच्चों अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके लिए लड़ने आती है, सो वो कात्यायनी रूप है। कालरात्रि मतलब काल रूप है जो दुष्टों का नाश करती है, महागौरी जो शांति का प्रतीक है, और सिद्धिदात्री जो स्पिरिचुअल पावर्स हम सभी को देती है। सो आजकल ये जो पूजा का समय बंधा हुआ है, पूजा पाठ हो रहा है चारों ओर घरों में मंदिरों में, अच्छी बात है, पूजा पाठ भी होना चाहिए। और कल 2 अक्टूबर को हमने मनाया गांधी जयंती, जी हाँ, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती हमने कल मनाई बहुत प्यार से। सो और गांधी जी को यह भजन बहुत ही प्रिय था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और गांधी जी जो है मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसा को अपना परमो धर्म मानते थे। गांधी जी ने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया, भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जितना भी कहें कम है, पर गांधी जी को यह भजन बहुत प्रिय था। सो चलिए हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा भजन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यह गीत आपके नाम भी हम करेंगे कुमार जी, फिर कौतिक सविता, यह गीत आपके नाम भी, यह गीत जाएगा ललिता के नाम, नूरज जी नेपाल से है, अनिष्ठा राम टोहर रोजिल से, और आयुष्मा सनासी वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उमा जगन्नायकू, यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ, आपकी बेटी दृष्टि, आपकी दामाद और सभी बहादुर और जगन्नायकू परिवार के नाम यह प्यारा सा भजन। और ये भजन उन सभी दोस्तों के नाम जो गोविंदन पूजा के साथ जुड़े हुए हैं, या बहुत जल्द आप लोग वेंकटेश्वरा पूजा करेंगे, दुर्गा नवमी मनाएंगे, सो जितने भी लोग भक्तिमय वातावरण में हैं हमें सुन रहे हैं, सो ये प्यारा सा भजन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

इस राम भजन के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे यशुदास के गीत के साथ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल दिए। और हम तो जा रहे हैं, पर आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे मिलने आएंगे कल शाम के 3 से 4 बजे और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है शाम के 3 से 4 बजे, डोंट मिस द रेंडेवू। सुबह के 6 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, टिकटॉक पर आपने हमें देखा, हमें फॉलो किया, SMS किया, आपके मैसेजेस, आपके टेक्स्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए शुक्रिया। Wish you all a very lovely Saturday and a wonderful weekend ahead. God bless you all. आप सभी को अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। Be happy, keep smiling and enjoy life. Bye bye. Take care. Love you all. Namaste. 9 बजे का फ्लैश न्यूज के बाद आप सुनेंगे आज की चर्चा, जरूर इस प्रोग्राम को फॉलो कीजिएगा। कल मिलेंगे। Bye bye. Take care. नमस्कार।

0: और समय हुआ है संक्षिप्त समाचारों का। संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं टीना। नमस्कार टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने नोट किया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम को नई गति देने और सरकार द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने के लिए इसके बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है और इस पुनर्गठन में अन्य लोगों के साथ जीगुआंग जिल्बेर शु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। पासुहामेन चेलन, जिन्हें जयन चेलन के नाम से भी जाना जाता है, उनको उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और वीरेंद्र मुसाई को इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया है। याद रहे कि एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त कर दिया गया था। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार 2 अक्टूबर को महोबाक्वा जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया। पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम के सूखा रहने के अनुमान को

देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की जानकारी दी। इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे और इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा। मॉरिशस में सितंबर से कंसेंट्रिक्स की गतिविधियां बंद होने के मामले में अब समाधान निकल आया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन, साथ ही नोटिस के तौर पर 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये प्रस्ताव कल शुक्रवार 2 अक्टूबर को श्रम मंत्री की देखरेख में कंसेंट्रिक्स और कर्मचारियों के प्रतिनिधि के बीच हुई दूसरी सुलह और मध्यस्थता बैठक के बाद सामने आया। बैंक ऑफ मॉरिशस ने देश में नकली नोटों के चलन को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें, नोट पर बने सुरक्षा चिन्ह, उभरे हुए निशान, नोट को झुकाने पर दिखने वाले बदलाव और यूवी लाइट में नज़र आने वाले खास निशानों से इसकी पहचान की जा सकती है। और बैंक ऑफ मॉरिशस ने लोगों से नोट लेते या इस्तेमाल करते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। आज की चर्चा प्रोग्राम में चर्चा का विषय होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन 2026 और आज किरण जानकी के मेहमान होंगे एमओए के टेक्निकल ऑफिसर लेखराम जगेसर। तो आज की चर्चा कार्यक्रम 9 बजे के इन समाचारों के बाद दिन के 10 बजे तक रेडियो मॉरिशस पर। विदेश में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उत्तर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शनिवार की सुबह न्यूकासल नाइट्स टीम के इलाके में रग्बी फैंस की भारी भीड़ के बीच एक कार के घुस जाने से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रेस के मुताबिक पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई, हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार। News on NBC Play.

0: आज की चर्चा।
1: नमस्ते, आज की चर्चा कार्यक्रम में हम किरण आप सब कोई के स्वागत करत है। आज के चर्चा के जो विषय बा ऊ है एमओआरए के जो इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न बा इ बरिस के 2026 के ऊ कैसे चलता। जैसे जानेला हर बरिस जैसे सितंबर और अक्टूबर महीना आवेला त सब कोई इनकम टैक्स फॉर्म के भरे के शुरू कर देवेलन जा, और अब त ई इलेक्ट्रॉनिकली भी होवेला। और ई बरिस सितंबर महीना गुजर गल, अक्टूबर के मध्य तक 15 तक हमने के चाहे ई इनकम टैक्स फॉर्म भर के भेज देवे के। तो ई सब प्रक्रिया कैसे चलता और कौन कौन जानकारी आपके चाहेला हासिल करे के, कौन कौन बात से आपके चाहे परिचित रहे के, इस सब पर बातचीत करे खातिर आज हमने संगे एमओआरए के टेक्निकल ऑफिसर हवन श्री लिखराम जगेसर जी। श्री लिखराम जगेसर जी नमस्ते, कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। जैसे हमने सब कोई जाने ला जा, अभी इनकम टैक्स के जो फाइलिंग सीजन बा वो चलता और ये प्रक्रिया कैसे चलता थोड़ा हमने के ये बतावा। अभी आधा समय जो बा वो तो गुजर गए, अभी और आधा से कमती समय बा हमने के सामने।
2: जैसे बोला जा, हर साल की तरह सभी कंट्रीब्यूटर लोग, कंट्रीब्यूटर बोल रहा है टैक्स पेयर्स लोग, के चाहेला अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरे के। तो इस साल भी लानी फिनांशियर जो बोला था 30 जून 2026 जो टर्मिनल होल बा के बाद कंट्रीब्यूटर लोग के चाहेला अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरे के है। एग्जर्सिस हुआ हमने एमओआरए के वेबसाइट के द्वारा करी ला जा, इलेक्ट्रॉनिकमा भरी ला सा। तनी सुन हिस्टोरिक पर चल जाएला, आगे हमने लोग इनकम टैक्स रिटर्न मैनुअली फिल करत हली सा, भरत हली सा,
1: फॉर्म भर के
2: सब लापोस द्वारा भेजा तली सा। बहुत इनकन्वीनियंस हुआ था हल। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब हल एग्जिस्ट हुआ मोरे, जैसे बोली कि ओकर वेबसाइट से सब इलेक्ट्रॉनिक में भेजी ला सा। तो हम सकब बोले कि है नया तरीका से सब कंट्रीब्यूटर लोग बहुत संतुष्ट हों सर, काहे कि लोग घर वे से ही अपन बीरो से केनो रहियन सा कोनो देश में सकियन सा अपन इनकम टैक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक में भेज दे
1: जरूर।
2: ओके okay? और एगो बात बा कि हाई सिस्टम वहाँ से देख बहुत रैपिड बात, जे लोग अपन रिटर्न भेज दे रहे हवन सा देख बा वो लोग के रिफंड मिल गल बहुत ज़्यादा। अगर वो लोग के इंफॉर्मेशन को बोले होला वो लोग के रिफंड सब मिल गल
1: तुरंत ही मिल जाए,
2: एक हफ्ता
1: ले मतलब आगे हाथ अतान करके कितना महीना के
2: तब चेक सब वगैरह मिला था। अब सब इलेक्ट्रॉनिक
1: हो
2: गया तो
1: वैसे हो जाए।
2: आज लेख सका बोले हमने के सौ से

0: me the foam, say, foam bulletin electronic medium, say, just you milgal.
1: Kitna pourcentage représenté carré?
0: Nay, habi.
1: Nay,
0: sa kabole, basi, pourcentage, one nay, babi, om. Ha. Parce que attendre que la taille ça or mili.
1: Zarour. जैसे जैसे दिनवान निकला आवेला वैसे वैसे सब कोई अब भरे के और शुरू कर देवे
0: और ये मौते हुआ था
1: जी। और फिर जब इनकम टैक्स के जो कंट्रीब्यूट बोला था जेके चाहे ला इनकम टैक्स भरे के तो ये जो श्रेणी में बाकी लोग आवेला के लोग हवन सा कंट्रीब्यूट के चाहे ला इनकम टैक्स भरे के।
0: हाँ, जैसे बोला इस श्रेणी में जो कैटेगोरी बोला जला ऐसा के चाहे ला अपन इनकम टैक्स भरे के। ओके, पहला है जे लोग के आमदनी है लाने फिनांशियर वा है कौन सा बात आमदनी यानी कि लोग के इनकम है लाने फिनांशियर वा में 500,000 से अधिक मिनल बा। दूसरा कैटेगरी जन के आमदनी बिजनेस जो लोग आदमी बिजनेस करे लंजा और लोग के ग्रॉस इनकम 2,000,000 से ज्यादा बा। तीसरा का बा हाउ एम्प्लॉयर लोग के जैसे हमने लोग जन के PAY कटाल बा। और चौथा जो लोग के आमदनी से TDS माने कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एगो एग्जांपल बताएं तोहरा रेंटल इनकम मिलल बा एगो कंपनी से माने कि TDS है टैक्स कटाल बा उमें। और पांचवा है एगो आदमी जिकन रेवेन्यू टैक्स हब बा
1: जी।
0: ओके, वो लोग के चाहिए ना इनकम टैक्स रिटर्न भरे के। और ये एगो कैटेगरी बा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग के जो आदमी है सब कैटेगरी में नहीं होवन सा यानी कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होवन सा वो लोग के भी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भरे के।
1: मतलब कि जे सेल्फ एम्प्लॉयड बा जेकर खुद के अपन कारोबार बा ओकरा भी चाहिए भरे के।
0: हाँ, है सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग के चाहिए अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरे के। और है लानी फिनांशियर में अपन आमदनी लानी फिनांशियर जो बा 1 जुलाई 2025 से शुरू होके 30 जुलाई 2026 तक टर्मिने हुए ना वो लोग के चाहिए अपन आमदनी डिक्लेयर करके। अगर वो लोग के टैक्स वो नहीं पे करके बाद चाहिए ना अपन इनकम टैक्स भरे के।
1: जरूर, तो जैसे सुनत हवा इनकम टैक्स के जो प्रक्रिया है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होवेला। अभी हमने के श्री जगी सर जी बतावत हवन के चाहे ला भरे के इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स बा। और साथ में जे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हवा जा जे लोग के अपन एगो कारोबार बा एगो बिजनेस बा आपके भी चाहे ला ई फॉर्म भरे के। भले ही आपके कोनो टैक्स नहीं परिपेय करे के फिर भी जो आपके इनकम बा आपके चाहे दिखाए करे के। और अभी हमने बातचीत कर रहे थे जा इनकम टैक्स के फाइलिंग पर 2026 के जो फाइलिंग सीजन चला था उकर पर। और हमने संगे हवन MRA के टेक्निकल अफसर श्री लेखराम जगे सर जी और इस विषय पर हमने थोड़ा देर में चर्चा आगे बढ़ावा जा। फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने इनकम टैक्स रिटर्न पर बातचीत करत है जा, देखत है जा कि के चाहेला भरे के इनकम टैक्स के फॉर्म कैसे चाहे भरे के, और फिर जोन जोन जानकारी जरूरी बा आपके इनकम टैक्स से संबंधित, इस सब पर आज हमने के जवाब देवत हवन श्री लेखराम जगेसर जी, जे एमओआरए के एगो टेक्निकल अफसर हवन। त जगेसर जी, हमने के ई बोला कि अभी हम बोलत रही कि 15 अक्टूबर चाहे भर देवे के, थोड़ा हमने के जस्ती जानकारी द, काहे के बुझाला जेके इनकम टैक्स भर पे करे के बा, ओके अगर डेडलाइन थोड़ा अलग है जेके नहीं भरे के बा, थोड़ा हमने के एकर बारे में बोला।
1: जैसे बोला इनकम टैक्स रिटर्न के डेडलाइन है गुरुवार 15 अक्टूबर 2026, फिर से बोला था 15 अक्टूबर 2026 हमने के डेडलाइन है, ये लालवा में प्रेस करा बा, और हमने सब कोई से मांग करते हैं कि हाई डेडलाइन वाले अपन फॉर्म भर दिया
0: जी।
1: और एगो मांगो करते हैं जमे कि तोहर फॉर्म डेडलाइन के आगे वही से सबमिट कर दिया, जमे जे जिनो जे कोनो प्रॉब्लम रही था सकब से एडे करे
0: डेडलाइन से अगते।
1: हाँ, जे डेडलाइन पर सबमिट कर ले हवा कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब प्रॉब्लम हुई हमने के जे ऑफिस आवर्स के बाद अपन रिटर्न सबमिट कर ले और प्रॉब्लम रही, तब डिफिकल्टी रही हमने के तोहरा एडे करे के। और जब डेडलाइन हो जाला तब का होला जे अपन रिटर्न भेजबा तब लामान मिलेला नहीं तेरे मिलेला, तब आवब है अभी लामान पर कितना लामान मिलेगा। हाँ। अगर आप एगो सालोये हो जैसे कि हमने लोग सालोये हैं सा, तो हमने के लामान है 2000 रुपये अप टू ए मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम 5000 रुपये प्लस जो टैक्स बा ओकर पर 1% पेनालिटी और 0.25% लेते हर महीना के जब तक है टैक्स वा नहीं चुकाएगा। और जो बिजनेस ओकर शिफ्ट डाफेयर 10 मिलियन से कम तीबा वो लोग वो के लामान है 2000 रुपये और मैक्सिमम है 5000 रुपये पागे, जैसे बोली है 1% ओकर पेनल्टी लेट पेमेंट और 0.25% लेते जब लेक टैक्स वा नहीं पे होलबा, और तोहर शिफ्ट डाफेयर 10 मिलियन से जस्ती बा तो ओकर लामान

0: just here. Ou la manoir 2000 roupies, c'est ok, 10000 roupies les cas, 20000 roupies les cas là. Or tu as pénalité John Ballet paiement 1% c'est 2% 2.5% rahé là. Or l'intérêt 0.25%. Donc dès que tu as dès l'intérêt ou la pénalité, il khatin hamni sab so is man kar lena sa ki to har return time par
1: samay par bhejta. और जब अभी रिटर्न के बात करत है जा जैसे एगो समय अवेला लाने फिनांसिया समाप्त होवेला तो ईडीएफ फॉर्म भी हमने के चाहना भरे के वो भी ऑनलाइन ही है अब और एक तुरंत बाद इनकम टैक्स भी ढेर कोई ई दोनों के बीच नहीं सकेला जा फर्क करे या फिर एगो कन्फ्यूजन भी रहेला तो हमने के थोड़ा बोला ईडीएफ का है इनकम टैक्स का है और ई दोनों के कौन रोल है
0: जैसे बोला कि ईडीएफ नॉर्मल हमने उत में जब फाइनेंस एक्ट वोटे हो जाला तब ईडीएफ आवेला समा ईडीएफ पर एक बार बोला ईडीएफ ओकर डिटेल में नहीं जाता है ईडीएफ ग्रोसो मोडो बोला था ईडीएफ हम नी अपन एम्प्लॉयर के सबमिट करी ला जा
1: हां
0: जब में की एम्प्लॉयर वा देखी कौन टैक्स चाहिए कटाई के हर महीना के ईडीएफ से तू एम्प्लॉयर लोग के है
1: जी
0: ओके और How EDF for moi mais sub upon deduction bol ba tab employer wa janila
1: okar hisab
0: se kitna katai
1: kate ke chahi pay as you earn
0: pay as you earn aur humni MRE ke website se u EDF wa submit kare se ma important hai jane ke MRE khali ko facilite dal le ba jab employer employer sakyan sa employer wa retrieve kare ke jun information wa dal le wa aur employer wa apan EDF सबमिट करके जमे कागज के जरूरी नहीं सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाए और इनकम टैक्स रिटर्न हमने सबमिट कर लिया था जहाँ पर हमने के लाने फिनांशियर जैसे बोली आगे में 1 जुलाई 2025 से शुरू हो गया और 30 जुलाई 2026 लेक टर्मिने हो गया ऊपर हमने अपन आमदनी के डिक्लेयर कर लिया पर कौन EDF जो हम बोल रहे हुआ वो लाने फिनांशियर 1 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 लेक जाए जमे तोहर जो ओ एम्प्लॉयर वा जानी कौन ची काटे के
1: जरूर तो अभी जब इनकम टैक्स और ईडीएफ के ई स्पष्टीकरण आप दे दिला तो एगो दूसरा सवाल ई बा कि जब जाते जा ऑनलाइन ई फॉर्म भरे इनकम टैक्स के तो देखत है जा कि तीन गो टाइप तीन गो किस्म के रिटर्न्स बा थोड़ा ई तीन गो जन किस्म के रिटर्न्स बा ओकर पर हमने के थोड़ा जानकारी द
0: हां देख बा जा जब अपन रिटर्न भरत हुआ जो लोग ने भर ले अपन जब जाए बस अब एमओरी के वेबसाइट में देख बजा कि तीन प्रकार के रिटर्न बा एगो बली ना सा स्टैंडर्ड रिटर्न दूसरा हा प्रिसेप्टिव टैक्स रिटर्न एगो बा सिंपलीफाइड टैक्स रिटर्न तो पहल का मैं आवत है स्टैंडर्ड टैक्स रिटर्न है रिटर्न वा के चाहिए ला भरे के वो लोग जेके लोग के आमदनी यानी कि रेवेन्यू एक साल से में 500,000 से अधिक बा और जे लोग के बिजनेस के ग्रॉस इनकम जो आगे में बोल लीजिए 2 मिलियन से अधिक बा और जे लोग के POI जैसे बोली है अभी ये बोली सब POI कटाल बा TDS कटाल बा और जे लोग के चार्जेबल इनकम बा यानी कि ये लोग के टैक्स पे करेगा वो लोग स्टैंडर्ड टैक्स रिटर्न भरियन सा सेवा है रिटर्न वा भरे के आगे ढेर नोट्स बा है वेबसाइट में ढेर इंफॉर्मेशन बा सब बा जब भरे तब अपन रिटर्न भरे के और दूसर का है प्रिसेप्टिव टैक्स रिटर्न ये रिटर्न वा ओ लोग के है जो पेची ते मॉयन एंटरप्राइज हो वंजा और सेफ एम्प्लॉयड वो वा वंजा ये लोग 1% टैक्स पे करे लंसा लेकिन अपन टर्नओवर में यानी कि ओ लोग के शिफ्ट डाफेयर में और है रिटर्न वा भरे के ओकर कंडीशन है न कि आप जाइबा अपन रिटर्न भरबा बोलबा हम साल ये है जाता है प्रिसेप्टिव भरे नहीं ऐसे नहीं हुई ओकर कंडीशन है ग्रोसो मोडो बोल वा था कंडीशन है ओ लोग के ग्रॉस इनकम चाहे ना 10 मिलियन से अधिक ओ लोग के रेवेन्यू दूसर सोर्स से यानी कि दूसर रेवेन्यू 400,000 से ने चाहे ना डिपासे करे के और ओके चाहे ना सर्टेन एक्टिविटी में रहे के एगो एग्जांपल देता है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग होलसेल ऑफ गुड्स है सब कंडीशन डिजाइन लिखाल बा ओके और तीसरा का है सिंपलीफाइड रिटर्न वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड के है ये रिटर्न जहाँ बोल ले रही जहाँ वो लोग के चाहे भरे के ई में टैक्स नहीं बाप है ये करके सेल्फ एम्प्लॉयड

0: वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होन सा हैरी टोनवा जब बोला था सेल्फ एम्प्लॉयड से कंसीनियर होन सा या फिर स्टैंडर्ड टैक्स रिटर्न या प्रिसेप्टिव जैसे बोली आगे में उपते कर कौन रिटर्न भरे के और यही में जो सिंप्लीफाइड बा यही में और कौन बा ग्रॉस इनकम नहीं चाहे ला दे मिलियन से
1: दिपासे करे के
0: कम नहीं चाहे ना कमती रहे के और उकर नेट इनकम चाहे ना 500,000 से कमती रहे के
1: अच्छा तो ये सब जानकारी जो हमने के आज लेकर आम जगह सर जी देवत हवन बहुत ज़रूरी बा सब कोई के जाने के अभी आप तीन किस्म के जो रिटर्न्स बा ओकर बारे में बोल ला और थोड़ा देरी में अभी थोड़ा घरी में हमने जाने चाह जा कि जब हमने ये बरिस अपन फॉर्म भरत है जा तो जो टैक्स रेट बा जो ये बरिस अप्लीके हुआ था ढेर सौजमा आल बा ढेर बदलाव आल बा तो एक पर थोड़ा घरी में हमने बातचीत करब जा कि कौन रेट पर चाहिए हमने के ये बरिस इनकम टैक्स भरे के एक से आगे ले अब जा एगो छोटा सा ब्रेक

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। हमने ई बरिस के जो इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न बा ऊपर बात कर रहे जा, और हमने संगे हवन इनकम टैक्स से जुड़ल एमओआरए के एगो टेक्निकल अफसर श्री लेखराम जगेसर जी। हमने जो जानकारी हमी के दिले आवत हवा, हमें रुकल रही जा ई जाने खातिर कि ई बरिस जो रेट बा इनकम टैक्स रेट उ कहाँ तक बा, कैसे चाहे ई डिडक्शन करे के, थोड़ा हमने के एकर पर स्पष्टीकरण दा।
2: जैसे ब्रेक के आगे बोल रहे हुए टैक्स रेट पर बात कर रहे सर, इस साल हमने के टैक्स रेट तीन गो प्रकार के बा, 0%, 10% और 20% है। एगो स्टैंड जैसे ब्रेक से पहले बोल दिया तीन प्रकार के रिटर्न बा, तब ओकर डिटेल देवत हैं। अगर आप एगो स्टैंडर्ड टैक्स रिटर्न जो जानकारी देली सर आगे में भरत हुआ, तो हर इनकम 100,000 चार्जेबल इनकम 100,000 से तोहर इनकम 100,000 से कम थी बा, वो 0% आई, तब तोहरा 100,000 जब डलबा तब 0% से मिछुए करबा तब 0 आए, माने कि जितू टैक्स नहीं परी करी करबा। और क्वेश्चन 100,000 रही था 10% पर और ओकर से जस्ती तब 20% पर आओ, या नहीं कि जे 500,000 पोर्सेंट 500,000 से जब बोला था 20% ना कि डायरेक्ट 20% पर आई, पहले 10% आई तब पोर्सेंट 500,000 पोर्सेंट जो 500,000 से अधिक बा तब 20% पर आए। और प्रिजेप्टिव पर बोल ले रही जा ओकर रेट है 8% ओकर शिफ्ट दाफिया में, और जे लोग सिंप्लीफाइड रिटर्न भरे लन सा हियाँ जितू टैक्स नहीं पे ये करियन सा। ओके
1: हाँ, और जब ये सब रेट बोला था तो एगो व्यक्ति के मतलब कि जब आप अपन डिडक्शन डाला था तो के सकबाई कर में एंक्लियर करे के कर पर डिडक्शन सकबा करे।
2: यहाँ पर डिडक्शन डेजा लालिस्वा बा एमओआरए के वेबसाइट पर सब देता है बाऊ में
1: जी।
2: डिडक्शन मिलेला डिपेंडेंट्स लोग के, लड़का लोग के या कि स्पाउस
1: जो। हाँ, तो डिपेंडेंट में के आवेला?
2: डिपेंडेंट में आवेला तो हर लड़का लोग, पहला हर डिपेंडेंट ओके से बोले या पति या पत्नी यानी कि स्पाउस एक साल में, और ओकर इनकम 100,000 रुपी से 100,000 रुपी एक साल के हाउ जो लानी फिनोशिया बोल ली है सर, ओकर से कमती चाहे मिले के, यानी कि मान लो जा कि हम काम करत है अपन पत्नी जो घर पर बा, लेकिन ओकर थोड़ा सा बहुत टाइम इनकम मिलेगा 100,000 रुपी से ज़्यादा, ओके नहीं सकब साले हुए इंडिपेंडेंट।
1: अच्छा।
2: ओकर इनकम चाहिए 100,000 हुए या कि 0। और लड़का लोग जो 18 नहीं होल बा, यहाँ एम्पोता हाँ जो बोला था लड़का लोग जो 18 नहीं होल बा, तो यहाँ बोल बा कि तुहर लड़का के 18 हो गल बा यूनिवर्सिटी पर आवत है एकर पर, या तो लड़का जिसके 18 हो गल बा और वो फुल टाइम एजुकेशन या कोर्स करत हो, फुल टाइम बोला था यहाँ, और सकबल वे लड़का लोग जो ओतरमा कपाब बाकर 18 हो गल बा, सकेला एगो लड़का बा ओतरमा कपाब लेकिन वो काम नहीं करेला, ओकरा सकबा डिपेंडेंटली
1: जो लड़का के 18 हो गल बा लेकिन वो काम नहीं करता सकबा अकेले वे
2: नहीं सकबा। यहाँ फसी लालवा स्पष्ट बा जैसे बोली है जो लड़का फुल टाइम एजुकेशन जैसे एगो एग्जाम देता है एगो आदमी के लड़का यूनिवर्सिटी पर ओके सकी डिपेंडेंट ले, क्योंकि वो फुल टाइम एजुकेशन करता है या कोनो कोर्स करता है फुल टाइम। दूसरा डिडक्शन है लेते हाउसिंग लोन पर, यहाँ पर भी

0: कोचियों बा जैसे बोले हैं जब हई लेते क्लेम करबा तो हर रिटर्न में चाहे पहरे के कौन से निकाल बा हई नोट्सवा में ढेर बा रेफरेंसिंग सब बा हई वेबसाइट में सकबा ओकर नोट्स पहरे दो तीन गो कोचियों हई बोले बताएं हलो नुआ फिक्स चार्ज पर चाहे ला रहे कि न कि एगो पर्सनल ले लोन ले लिया हुआ घर बना हुआ था पर्सनल लोन वहाँ से नहीं सक पा दे जुया करे फिक्स चार्ज वाने एक बार लिए हाँ फिक्स इपोटेक रहेला और ओके नहीं चाहे ला एगो दूसरा दूसर घर बा नहीं कि एक के घर पर हाँ दूसर प्रॉपर्टी एक वहाँ जो नहीं रही और ओकर रेवेन्यू टोटल डिविडेंड से सब मिला के 4 मिलियन नहीं चाहे ला डिपासे करे के Okay. और जो लोग देसा हाउसिंग बेनिफिट मिलल बा 2011 से वो लोग नहीं सकें सा है दे पासे करे
1: ठीक बा
0: एगो चीज बोला भी हाँ जो उनके लेंटेरे मिलल बा माना कि एगो पति और पत्नी जॉइंट लोन ले रहे हो वन सा सकें सा है लोन वा स्वाजी का स्वाजरे करे के है लेंटेरे वा क्लेम करियो कर रिटर्न में या कि आधा आधा यहाँ बोल रहे थे आधा आधा 50% सक बस पोताजे करें और डिपेंडेंट चाइल्ड के ताले आवा टेंशन बोले पर खाली एक गो इस पास सकना अपन रिटर्न में क्लेम करें
1: जरूर
0: और तीसरा का डिडक्शन है मेडिकल अभी देख बहुत लोग मेडिकल इंश्योरेंस से वेलन सा
1: जी
0: ये लोग सकें सा क्लेम करें एकर मोटा हा सेल्फ जेकर अपन ने वत हुआ था 25 मिल देख बा यहाँ बहुत क्वेश्चन मिले हमने के माना जा कि हम एगो लाइसेंस मेडिकल ले रहे हैं अप्रैल 40 मिल रुपी पे ये करते हैं सेमा है रिटर्न हुआ मैं जब तो हर डिटाइल डल बा 40 मिल सेमा उकर लिमिट है 25 मिल इन आलवा हा तो पहला जो सेल्फ बा 25 मिल हा तो हर पहला डिपेंडेंट के 25 मिल दूसरा डिपेंडेंट के 20 मिल तीसर का डिपेंडेंट के 20 मिल और चौथा डिपेंडेंट बा जो मैक्सिमम बा 20 मिल जो आदमी हिया और ही चाहे बोले के जो आदमी के टैक्स पेयर लोग के और लोग के एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यू करे रहे सा लोग के मेडिकल इंश्योरेंस में जैसे एक एग्जाम्पल बा हम हमारे एम्प्लॉयर जिसों 75% पे ये करता हम 25% पे ये करते हैं हम खाली सका भाई 25% वहाँ जो पे ये करते हैं ओकरा क्लेम करे के दूसरा प्रॉब्लम हो ना कोने कंपनी लोग अपन एम्प्लॉयर के फुल मेडिकल पे ये करे ना सर ये लोग नहीं सकें सर क्लेम करे क्योंकि एम्प्लॉयर वहाँ देसा पे ये करता ओके चौथा डिडक्शन है जो पारों के लड़का लोग यूनिवर्सिटी जालन सा वो लोग सकियन सा 600 मिल एडिशनल डिडक्शन क्लेम करे ओके हियों ओकर कंडीशन बा है कुआ चाहे फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो के
1: फिनों से बोला नहीं
0: पट्टा पॉट टाइम नहीं
1: जी
0: फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अभी पोस्ट ग्रेजुएट वो दलागल बाई में और तोहर एनुअल फीस जैसे बोल बा हमारे लड़का यूनिवर्सिटी मोगिस जाता तो और एनुअल फीस चाहे 34,800 से जस्ती हो के
1: अगर से कमती रही था
0: नहीं सकबा
1: ऐसा बदल जुआ करे
0: नहीं और
1: जे लड़का विदेश जाए था
0: नहीं तो ओकर यूनिवर्सिटी पे यहाँ है ना
1: हाँ
0: जे तुम्हारा तो स्कॉलरशिप मिल गया जे नहीं पे ये करे तो नहीं सकबा क्लेम करे
1: अच्छा।
0: लेकिन वो लड़का के सकबा डिपेंडेंट ले
1: अच्छा और अभी इनकम टैक्स के फॉर्म के जो क्रम बा ओकर हिसाब से जाते जा तो देखते है जा कि एगो ऐसन भी एगो जगह बा एगो सेक्शन बा जहाँ पर बेड रिडन नेक्स्ट ऑफ किन ई लिखल बा एकर का मतलब है
0: ई बेड रिडन नेक्स्ट ऑफ किन एगो डिडक्शन हाँ अगर एगो इंडिविजुअल के पेरेंट यहाँ चाहिए जाने के निमन से हैं एगो इंजीनियर के पास ना कि हम अपन पिताजी या माताजी के डायरेक्ट डायरेक्ट जब है रिटर्न वहाँ में ओकर नाम भरे नहीं हुई तो आवा बुकर पहुँचियों पर
1: हाँ।
0: अगर इंजीनियर के पेरेंट ग्रैंड पेरेंट भाई बहन या फिर ओकर पति या पत्नी के भाई बहन बेड रिडन हवन सा बेड रिडन बोला जाए एगो आदमी के जो ओके केयरर्स अलाउंस मिला था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी से और ओ सकी ओकरा डिपेंडेंट ले हाई फॉर्म में देखबा जब फॉर्म भरत हुआ सा

0: Oh, déjà, j'en ai la connaissance, déjà, qui est heureuse à la 11 minutes. Là.
1: Oui.
0: OK? Ah. Or, des gars, je m'en ai dit, et gars, mais deux gars, bhai, hon, ça.
1: Et qui go
0: bhai? Et qui que ça can sa le.
1: Ha. O log chahe ego
0: sahmati ho jaye jame dekhen sa ke hai depend. Do not claim kar de on sa ta amore definitivement query kar yo.
1: Ha. Aur jab ye sab bata de wa tha ye sab jankari ke baad ek jana apan form thik se nahi bharla okar mein kono area chal gal tab ka hui. Bas ye uta electronic ka chal gal.
0: हाँ जो लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भेजले वंसा 100% अभी हमनी के मिला था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एरिया हो गल बा फिनो से सकी अपन टैक्स अकाउंट नंबर या ओकर आईडी से लेके और अपन पासवर्ड डाल के एगो डैशबोर्ड मिलेला
1: हाँ
0: वो फॉर्म सकी एडिट करे तब जो एरिया हो गल बा तब सकी कोरिजे करे
1: तब सकी फिर से भेजे अच्छा
0: हये बोलीला सा जब सुमित करे के आगे एगो फैसिलिटी बा सब बस सेव करे ड्राफ्ट में
1: फिर से एक कुछ देख लेवे
0: चेक कर दे फिर जे कोनो इंफॉर्मेशन मिसिंग बा कोनो कागज मिसिंग बा वेरीफाई कर दे आगे तब सबमिट कर दिया और जब सबमिट कर बा चाहे वेरीफाई करके तो हर एक्नॉलेजमेंट आईडी मिलल बा
1: जी हाँ और कौन कौन बात के चाहे ख्याल रखे के ताकि कोनो एरिया नहीं हुई ई खातिर कौन कौन बात के ख्याल चाहिए रखे के जब बर्थवा चाहे निमन से देखे के तब कौन सी चाहिए देखे के
0: हाई के आगे मैं एगो बात बोलब एम और एगो फैसिलिटी दे रहे बा एगो ओकर देसा ओकर वेबसाइट में चैट बोट बा मायरा चैट बोट देख बा जब कोनो क्वेश्चन में सक बा टाइप करें हर वेबसाइट में देख बा अभी चैट बोट बा और दूसरा हम के एगो फैसिलिटी हा ई अपॉइंटमेंट देख बा ई अपॉइंटमेंट बा तो सक बा ऊफ ई अपॉइंटमेंट हुआ वेबसाइट पर तोहर टाइम डाले के और ऊ इस लोट टाइम वहाँ पर एगो ऑफिशियल तोहरा सुने करी विया व्हाट्सएप तोहरा चाहिए अपन इंटरनेट रखे के व्हाट्सएप हो रहे के तब तोहरा एडे करे जमे तू पोर्टविस ने चाहिए डेगों से होके ट्रैफिक में आके एम और के दफ्तर में आके तोहर रिटर्न भरे के सब है सब फैसिलिटी वाले भी और जैसे बोला एरिया एगो कंट्रीब्यूएबल के बहुत लोग देखे ला जा कंट्रीब्यूएबल लोग अपन सब रेवेन्यू नहीं डिक्लारे करे लन जा पर टाइम रेवेन्यू की जैसे कि एमईएस फीस कोनो लोग एमईएस में वेये करे लन सा कि एग्जाम पेपर्स पर ये प्रिपेयर करे लन सा नहीं डिक्लारे करे लन सा बोर्ड फीस या बोर्ड डायरेक्टर्स फीस नहीं डिक्लारे करे लन सा दूसरा है डिपेंडेंट चाइल्ड जैसे डेफिनेशन दे ली सा पेरेंट्स लोग से ये करे लन सा पर ताजे करे के नहीं सक बा पोता से करे दुआ नहीं है पोता से करे के है लालवा है अब देख बा जो लोग माना कि कोनो कारण जीवो से हो गलो मन सा
1: हाँ
0: चाहे सहमति है दोनों पारों से लेके
1: के ले क्लेम करे
0: माना जी ओकर पिताजी क्लेम कर लेना
1: है ना मामा मा, भी कर लेना
0: तब डेफिनेटिवली क्वेरी होई
1: तो एक जना के परिगे तू ना करेगे भरे के
0: हाँ एम ओगे डिसाइड करे ओकर पाप में डिटाइम में नहीं जाता है बिकॉज़ सेंसिटिव है इसलिए ने बोला था ही
1: हाँ
0: समा चाहिए हाई सब प्रिकॉशन लेके और ये तीसर का हाँ जो नेगेया हुए ना ती जो अंडर ग्रेजुएट कर कोर्स कर रहा था वन सा चाहिए इम्पोर्टेंट देखे के फुल टाइम एजुकेशन हाँ और फीस बोले हैं सर 34,800 से कम थी हो तो नहीं सक बाले हुए और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे यानी जब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था वो अंडर ग्रेजुएट से आजुते करके पोस्ट ग्रेजुएट डाला था तब जो वो डिपेंडेंट वहाँ के खाली 6 साल तक बाद क्लेम करें ना कि जस्ट
1: वो डिपेंडेंट एगो माता पिता के लड़का के धरला 30 बरिस हो गए अब वो मास्टर्स कर रहा था तब वो माँ बाप से के डिडक्ट करे
0: नहीं डिपेंड हुए ना बस ये कोनो लोग देख बात अब बी एस सी कर दे रहा काम कर रहे हाँ। तब आगे ते कर सा तब फिनो से तब डिफरेंट हाँ हाँ चाहे केस पर केस बेसिस देखे के
1: जी
0: ओके और जो को स्पॉन्सर बात है हयो चाहे ना देखे के जो स्पॉन्सर बने सक बे जो एडिशनल बोला था यहाँ जो एडिशनल और लोग बा जो प्राइवेट स्कूल जानन सा
1: जी
0: लोग सक बस जैसे प्राइवेट स्कूल देख बा ता ये गो डिडक्शन हाँ लेकिन बहुत कॉन्ट्रीब्यूएबल लोग जो कल लड़का लोग गवर्नमेंट कॉलेज जानन सा क्लेम कर दे वेलन सा तो जब पापिये मांगब सा वेरीफाई करब सा तब
1: लोग
0: क्लेम करे के तो टैक्स पेनाल्टी फिर से क्लेम करो और ये लोग किंडर गॉड

0: eh God rimi hayo nahi sakba claim kare
1: nahi sakba
0: nahi
1: ji aur je ego taxpayer ego contribuable apan tax nahi bharlak ta jese bolla mu nahi hi bharlak u baad mein bhi nahi bhari ta ka hoi
0: definitivement hai mori ke paas bahut information ha
1: u
0: jaan jaye tab tohara ego let mili ya email mili tab tohara chahiye mori hai ki u mein problem hoi haiye mang kar la ja ki tohar return bhar de ba time mein 15 october se aage
1: ha aur नहीं तोहरा कोनो एगो विकल्प कोनो ऑप्शन नहीं बा नहीं भरे के जित तोहरा चाहे भरे के एगो कॉन्ट्रीब्यूट हवा तो आपके चाहे हर हाल में ई टैक्स के फॉर्म भर के भेजे के एकर से आप ही के फायदा रही और आप बेवजह झंझट से भी बच जाएगा कहे कि जे नहीं भरला तो बाद में आके आपके बहुत समस्या
0: डेफिनेशन हो जैसे आगे में बोल ली है सा कितना पेनालिटी बा उमे जे रिटर्न ने भर बता कितना पेनालिटी बा मोर नहीं या नहीं बा तो हर पेनालिटी कलेक्ट करे के
1: हां मे समय को नियम बा एगो कानून बा ते चाहे रिस्पेक्ट करे के ते जैसे अब सुनत हवा एगो ऐसा विषय पर बात करत है जकर से लगभग सब कोई एकर से संबंधित बा आप सब कोई के चाहे ला जे कॉन्ट्रीब्यूट हवा जा ई इनकम टैक्स फॉर्म भर के भेजे के और समय बा अभी से 15 अक्टूबर तक आपके चाहे ई भर के भेज देवे के अभी थोड़ा देर में हमने ई प्रोग्राम के ओकर अंतिम चरण पर जाब जा देखब जा कि कैसे चाहे ई इनकम टैक्स पे ये करे के और कौन कौन समस्या जे खड़ा होई तो कौन चीज़ आपके चाहे करे के हमने के सवाल के जवाब दियन आज एमओआरए के टेक्निकल अफसर श्री लेखराम जगेसर जी एगो छोटा ब्रेक के बाद ई प्रोग्राम के अंतिम चरण तक पहुँचब जा।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा में हमने इनकम टैक्स पर आज बतेली जा और एकर अंतिम जो चरण बा एकर में हमने श्री जगेसर जी से जानने चाहब जा कि जे लोग के टैक्स पे करे के बा भरला के बाद फॉर्म तो उ लोग किसे सकें सा अपन टैक्स पे करे जे कोई पहला हला पे करे जाता था
2: ये देख बात है जब रिटर्न हुआ सबमिट करत हुआ तब तोहर दिताई बौके मांग है पोता हर जाने के एम ओ तोहर दिताई बौके नहीं रखी ई वेबसाइट पर डलबा था जब डलबा था दुगो फासो बा या डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर आवा बाबे डायरेक्ट डेबिट तोहर इन्फॉर्मेशन बौके डाल देबा था तब सब डेबिट हो जाए डायरेक्ट से मैं एगो मांग करता था हियाँ जब डाल देबा था तोहर इन्फॉर्मेशन एक दो दिन में तोहर अकाउंट वेरीफाई करती है
1: हाँ जब पैसा बाकी नहीं
2: जमे सिया जनबा कि तोहर को डेबिटे हो गल बा
1: अच्छा
2: न तो बाद में देखबा एगो क्लेम मिल गल बा और चाहना जो मोटा बाप ये करे हा अमाउंट हुआ चाहना अपन कोट में रहेगी और दूसरा है क्रेडिट कार्ड जब भरबा तो दूगो रेडियो बटन बा ये बोलल जा रेडियो बटन सकबा स क्रेडिट कार्ड वो स्वाजीरे करे के और क्रेडिट कार्ड लेकिन लिमिट है 25 मिनट चाहे उमें कूबा डायरेक्ट डेबिट पर कौन फ्री है सकबा है सब लोग और एक बार बार जो लोग के रिफंड मिला था हाँ। रिफंड वो चाहिए वो लोग के बैंक डिटेल्स देखे डायरेक्ट तो हर कौंट में चल जाए अब जब कौंट में चल गल था एक SMS वो मिली कि तुहर तो अकाउंट खिंचते हो गल बा
1: और डेबिट के भी तुहरा एगो इन एगो मैसेज
2: नहीं मिली
1: तुहर तो तुहरा चाहिए चेक करे
2: चेक करे के लेकिन वो वेबसाइट पर तुहर एगो एक्नॉलेजमेंट मिली हां ये आगे में बोल ले रही जा एगो एक्नॉलेजमेंट मिले ना तब देखबा सब ठीक से चल गल हाँ ये कहे बोली तुहर तो कौच भरे के जा जे ओकर अमाउंट नहीं रही था सिया पेनालिटी मिली
1: अच्छा और फिर अभी ये सब जानकारी देला के बाद जे कोई की कोनो कठिनाई हुई तो लोग का चाहे करेंगे
2: जे के कठिनाई होता जैसे बोली सर ई अपॉइंटमेंट बा ये अपॉइंटमेंट से जब मैं टेलीफोन ही नहीं करी ये अपॉइंटमेंट एक नया फैसिलिटी है दो तीन बरिस से चला था ए वो परफेक्ट चला था उस लॉट टाइम पर तो हर अपॉइंटमेंट टाइम भर देबा तो एक शेष या तो टेलीफोन करी वही टाइम पर सब ऑटोमेटिक जाना लेकिन तो चाहिए अपन पोता अपन हाथ में रखे वो टाइम पर एक जगह में रहबा जमा रेसो मिनी न तो उस लॉट वहाँ सोते हो जाए
1: अच्छा
2: और जैसे बोली था चैटबॉट बा और पूरा पूरा वेबसाइट में नोट्स बा और जब जे प्रॉब्लम हो तब दिखाओ से ओके जब चले जा पोते

0: में ऑफिशियल लोग जैसा कस्टमर के अब
1: जरूर
0: एडी कर दिया सब भरे के फॉर्म में
1: जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद जगेसर जी, आज आप प्रोग्राम में आइला, प्रोग्राम समाप्त हुआ था और अंतिम में जाते जाते आप कौन सलाह देब?
0: हाँ सलाह देव कि डेंजलियर ने आतान करके अपन फॉर्म भरे के
1: लेकेज नहीं आतान करा
0: नेतन लेकेज नहीं आतान आज से अपन फॉर्म भर दा जब मैं देखवा दा आज
1: जिस समस्या होई तो सकबा ओके समाधान ढूंढ लेवे।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद जगे सर जी, आज आप अइला फजीर फजीर सामदी के दिन और आप जे हमने के सुना था हुआ देखा था हुआ आपके ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद। आशा करत है जा कि ये जो प्रोग्राम रहल एकर से आपके आपके इनकम टैक्स फॉर्म भरे में आसानी हुई। आप सब कोई के ई सप्ताहांत के बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, नमस्ते।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने नोट किया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम को नई गति देने और सरकार द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने के लिए इसके बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन में अन्य लोगों के साथ जी क्वांग जिलबेशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। परसुरामन चिलन, जिन्हें जयन चिलन के नाम से भी जाना जाता है, उनको उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और वीरेंद्र मुसाई को स्वतंत्र सदस्य यानी इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया है। याद रहे कि एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त कर दिया गया था। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार 2 अक्टूबर को महोवाकुआ जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया। पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम के सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की जानकारी दी और इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे। इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा। बैंक ऑफ मॉरिशस ने देश में नकली नोटों के चलन को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें, नोट बनने पर बने सुरक्षा चिन्ह, उभरे हुए निशान, नोट को झुकाने पर दिखने वाले बदलाव और यूवी लाइट में नजर आने वाले खास निशानों से इसकी पहचान की जा सकती है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने लोगों से नोट लेते या इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है और अगर किसी नोट की असलियत पर शक हो तो उसे स्वीकार न करें और तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दें।

0: 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के पास कुल 363 शिकायतें दर्ज की गई, इनमें से 167 मामले स्कूल से जुड़े थे, 63 परिवार से और 11 ऐसे बच्चों से जुड़े थे जिन्हें विशेष ज़रूरतें यानी स्पेशल नीड्स है या फिर डिसेबिलिटी के साथ रह रही है। इस दौरान जाँच टीम ने 20 फील्ड विजिट्स भी किए। आंकड़े ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन की 2025-2026 वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए है जिसे कल पोथी के कोदा आर्ट सेंटर में पेश किया गया। विदेश में मध्य पूर्व में तनाव अभी भी जारी है। इस बीच शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कुवैती झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर पर हमला किया गया। इस टैंकर पर 5 भारतीय मौजूद थे। ओमान में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि ये भारतीय नागरिक एमटी काजी महा पर सवार थे जो इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरते समय हमले का शिकार हुआ। सभी 5 लोगों को सुरक्षित किनारे पर पहुँचा दिया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। जो ही रोज बुना कर्मी 56 साल के 56 इयर्स ओल्ड के श्री उमेश एकबाव जो राजेश नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज इनके ढाई बजे उनके घर तो हुई रोज बुनाकर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुनाकर की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रोड पोंपाला में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी फातमुन बिहारी पैदाइशी नाम पांचू और जो फातमुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे जनाब रियाज अली बिहारी के मकान रॉय रोड पोंपाला से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए पोंपाला की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए बुआ मौशों के कब्रिस्तान यूनिवर्सिटिया हाफ पास नून। रॉय रोड मेलरोज में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रमावती मोती पैदाशी नाम गुदा और जो मामा आदिप नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री आदिप मोती के घर रॉय रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताब लॉन्ज की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। बुदाई लेन लिस्कालिये में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री नमेसर सिंह रामफल जो मामू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर बुदाई लेन लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

वह उम्मिया इलाहीन मिन दूनिल्लाह, क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी माँ को दो खुदा बना लो अल्लाह के सिवा। इन अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ऐ ईसा, क्या तूने ये बात लोगों से कही थी कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो, मेरी पूजा करो, मेरी माँ की पूजा करो। इस खिताब को सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कांप जाएंगे, कौला और अर्ज करेंगे, सुबहानका, पाकी है तुझे तमाम नकाइस से और तमाम उयूब से, तू पाक है और इस बात से भी तू पाक है कि तेरा कोई शरीक हो सके, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे कोई बराबर नहीं, तेरे सिवा कोई इलाह खुदा माबूद नहीं, तू औलाद से पाक है, सुबहानका, पाकी है तुझे, मा यकूनु ली अन अकूल मा लैसा ली बिहक, मुझे जायज नहीं कि वो बात कहूं जो मुझे नहीं पहुंचती। यानी जब कोई तेरा शरीक नहीं हो सकता तो मैं ये लोगों से कैसे कह सकता हूं। अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि हजरत ईसा अलैह सलाम ने ये नहीं कहा, लेकिन इस सवाल में हिकमत ये होगी कि ईसाई ये दावा करते थे कि ईसा अलैह सलाम ने हमें कहा कि अल्लाह के सिवा हम ईसा अलैह सलाम की पूजा करें और इनकी वालदा की पूजा करें और इन्हें खुदा समझें। तो ये सवाल और फिर इसके बाद ये जवाब सुनकर ईसाई शर्मिंदा होंगे और जलील रुस्वा होंगे। इन कुंतु कुल्तुहु फकद आलिमता, अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा। तालमु माफी नफसी, तू जानता है जो मेरे जी में है। वला आलमु माफी नफसिक, और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही है सब गैबों का खूब जानने वाला। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने इल्म की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की और मामला अल्लाह ताला के सिपुर्द कर दिया और अजमत इलाही के सामने अपनी मिस्कीनी का इजहार किया। ये हजरत ईसा अलैहि सलाम की शान अदब है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने तो इनसे न कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था। यानी ऐ मालिक, मैंने तो इनसे वही बात कही जिसका तूने मुझे हुक्म दिया। अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यानी ऐ मालिक, मैंने तो इनसे ये कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वकुंतु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और मैं इन पर मुत्तले था जब तक मैं इन में रहा। फलम्मा तवफ्फैतनी कुंत अंतर रकीब अलैहिम, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगाह रखता था। वअंत अला कुल्लि शयइन शहीद, और हर चीज तेरे सामने हाजिर है। यहां पर अल्फाज हैं फलम्मा तवफ्फैतनी, फिर जब तूने मुझे उठा लिया। बाज लोग मसलन कादियानी, जो मिर्जा गुलाम कादियानी को मानते हैं, परवेजी जो मिर्जा गुलाम परवेज को मानते हैं, और सर सैयद अहमद खान के जो नेचरी थे, और बहुत सारी चीज़ों का और कुरान और हदीस की बहुत सारी बातों का इन्होंने इनकार किया। सर सैयद अहमद खान ने जो तफसीर लिखी है, तफसीर कुरान, उसे आप देखें, उन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, जिन्नात का इनकार किया,

और उन्होंने लिखा कि फरिश्ते भी इंसान हैं, जिन्नात भी इंसान हैं, जो शरीर इंसान होते हैं उन्हें जिन्नात कहते हैं और जो शरीफ इंसान होते हैं उन्हें फरिश्ते कहते हैं। इन्होंने जन्नत और जहन्नम का इनकार किया, नबियों के मौजजात का इनकार किया, बहुत सारी चीजों का उन्होंने इनकार किया। तो इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने और मिर्जा गुलाम कादियानी ने और मिर्जा गुलाम परवेज ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान की तरफ उठाए जाने का भी इनकार किया। और ये फलम्मा तवफ़ई तनी से दलील लाने की कोशिश करते हैं। तो हजरत सदुल अफादिल अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा लिखते हैं, तवफ़ई तनी के लफ्ज़ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत पर दलील लाना सही नहीं, क्योंकि अव्वल तो लफ्ज तवफ़ा मौत के लिए खास नहीं, यानी तवफ़ई तनी का हकीकी माना यह नहीं है कि जब तूने मुझे मौत दी, ये मौत के माना के लिए खास नहीं। किसी शय के पूरे तौर पर लेने को कहते हैं, चाहे वो मौत के जरिए ली जाए या बगैर मौत के ली जाए, किसी शय को पूरे तौर पर उठा लेने को तवफ़ा कहते हैं। जैसा कि कुरान करीम में इशाद हुआ, अल्लाहु यतवफ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, अल्लाह ताला रूहों को उठा लेता है, पूरे तौर पर उठा लेता है उनके मौत के वक्त, और जिन्हें मौत ना आई फी मनामिहा उनकी नींद के अंदर, तो नींद में रूहें उठा ली जाती हैं। तो आप देखें यतवफ़ा ये यहां पर पूरे तौर पर उठाने के और लेने के माना में है। दूसरी बात ये कि जब ये सवाल और जवाब कयामत के दिन होंगे, तो कयामत में जब हजरत ईसा अलैहि सलाम हाजिर होंगे तो उस वक्त तो वो वफात पा चुके होंगे, क्योंकि कुर्ब कयामत में हजरत ईसा अलैहि सलाम का नुज़ूल होगा और फिर नुज़ूल के बाद 40 साल दुनिया में रहेंगे और फिर वफात पाएंगे और फिर कल बरोज़ कयामत अल्लाह के हुजूर आप हाजिर होंगे। तो अगर लफ्ज़ तवफ़ा मौत के माना में भी फ़र्ज़ कर लिया जाए, जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नुज़ूल से पहले इससे साबित न हो सकेगी, ये मानना पड़ेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत कयामत से पहले हुई। और ये तो हर मुसलमान का अकीदा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत हर नबी ने मौत का मजा चखना है, और एक आन के लिए वो मौत का मजा चखना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी मौत का मजा चखा नहीं, कुर्ब कयामत में वो नाजिल होंगे, 40 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पैगाम आम करेंगे और फिर आपका विसाल होगा। وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد, और हर चीज तेरे सामने हाजिर है। हजरत ईसा अलैहि सलात व सलाम बखूबी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हर चीज को जानने वाला है। आप अर्ज करेंगे, ए मालिक, मेरा और इनका किसी का हाल तुझसे पोशीदा नहीं। आगे फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर तू उन्हें अजाब करे तो वो तेरे बंदे हैं। वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम है कि कौम में बाज लोग कुफर पर इसरार करते रहे और बाज लोग ईमान के शर्फ से मुशर्रफ हुए, इसलिए आपकी बारगाह इलाही में ये अर्ज है कि इनमें से जो कुफर पर कायम रहे और जिनका खात्मा कुफर पर हुआ, इन पर तू अजाब फरमाए तो बिल्कुल हक और बजा है और अदल व इंसाफ है, क्योंकि उन्होंने हुज्जत पूरी होने के बाद कुफर इख्तियार किया। और जो ईमान लाए

ए अल्लाह, अगर तू इन्हें बख्श दे तो ये तेरा फजल व करम है और तेरा हर काम हिकमत है। इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अजाब करे तो वो तेरे बंदे हैं, यानी जिनका खात्मा कुफर पर हुआ, उन्हें अजाब देना ये बिल्कुल हक बजा और अदल इंसाफ है। वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू उन्हें बख्श दे यानी जो ईमान लाए, तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है और ये बख्शना तेरा फजलो करम है। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये है वो दिन जिसमें सच्चों को इनका सच काम आएगा, यानी ये कयामत का दिन है। जो दुनिया में सच्चाई पर रहे इनको इनका सच काम आएगा, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया सच्चाई पर कायम रहे, इनका सच आज कयामत के मैदान में यकीनन काम आएगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवा दवा हैं, हमेशा हमेशा इनमें रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन्हु, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। जो सच्चे हैं और सच पर कायम रहते हैं उनके लिए दुनिया में भी कामयाबी की बिशारतें हैं और आखरत में जन्नत की बिशारतें हैं और बहुत बड़ी कामयाबी की बिशारत है। फरमाया अल्लाह इनसे राजी वो अल्लाह से राजी, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सब को ये कामयाबी नसीब फरमाए। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा फीहिन्न, अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है सबकी सल्तनत। आसमान और जमीन की सल्तनत और जो कुछ आसमान और जमीन में है उसकी बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर, और वो हर चीज पर कादिर है। सच्चे को सवाब देने पर भी कादिर है, झूठे को अजाब फरमाने पर भी कादिर है। मसला समझ लें कि अल्लाह ताला की कुदरत का ताल्लुक मुमकिनात से होता है, कुदरत मुमकिनात से मुताल्लिक होती है। जो चीजें वाजिबात हैं और जो चीजें नामुमकिनात हैं उनसे कुदरत ताल्लुक रखने वाली नहीं होती। तो आयत के माना ये हैं कि अल्लाह ताला हर अमर मुमकिनुल वजूद पर कादिर है। झूठ बोलना और इस तरह के दीगर उयूब और बुराइयां अल्लाह ताला के लिए मुहाल हैं, नामुमकिन है। इनको तहते कुदरत बताना और इस आयत से दलील लाना गलत और बातिल है। खुलासा आसान अल्फाज में ये है कि अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है। इस आयत करीमा से ये समझ लेना कि अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता है और दीगर इस तरह के उयूब अल्लाह ताला से मुमकिन है, तो इस तरह का ख्याल गलत है। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने बहुत बड़ी खता की। वो कुरान मजीद, फुकान हमीद और अहदीस तैयबा को न समझ सके। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती नसीब फरमाए। सूरतुल माईदा मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला इस सूरत के नूर से हमारे कुलूब को रोशन फरमाए। जो नसीहतें हमने समाअत की अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।

0: सूरह अल-मैदा की तफसीर का 16वां हिस्सा अभी आप समाप्त कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन थुम्मा आमीन। सामीन, जैसा कि मैंने कहा कि आज गुलाए अकीदत प्रोग्राम में हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं हज़रत महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को। पेश खिदमत है हज़रत क़िबला की हयात मुबारक पर यह मुख्तसर रिपोर्ट।
1: हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत सन 1238 ईस्वी में हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में हुई। आपके वालिद का नाम था हजरत सैयद अहमद डेनियाल रहमतुल्लाह अलैह और आपकी मोहतरमा वालिदा का नाम था हजरत सैयदा बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह ताला अलैहा। दोस्तों, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दोनों यानी वालिद और वालिदा का नसब वंश हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। इसी नस्बत से आप हुसैनी सैयद कहलाते हैं। आपके दादा का नाम था हजरत सैयद अली और नाना का नाम था हजरत सैयद अब। ये दोनों असल में बुखारा मौजूदा उज्बेकिस्तान के शहर बकरा के रहने वाले थे। फिर वहां से हिजरत करके पहले लाहौर, फिर वहां से दिल्ली और बदायूं आकर मुस्तकिल हुए। बाद में हजरत सैयद अली ने अपने बेटे हजरत सैयद अहमद का निकाह अपने ही रिश्तेदार हजरत सैयद अब की बेटी सैयदा बीबी जुलेखा से करवा दिया। जब हजरत सैयद अहमद और हजरत सैयदा बीबी जुलेखा का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक नेक पाकीजा औलाद से नवाजा जिनका नाम रखा गया हजरत मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका पैदायशी नाम था मोहम्मद और ये इनाम इलाही था। आपके वालिद उस वक्त बदायूं शहर में अपनी आजीविका में मसरूफ रहते थे। जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की उम्र सिर्फ 5 साल की थी उस वक्त आपके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी मोहतरमा वालिदा ने ही आपकी परवरिश का जिम्मा उठाया। उन्होंने आपकी तालीम व तरबियत पर खास तवज्जो दी और आपको एक मदरसे में दाखिल करवाया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने वहां कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। फिर आपने उसूल ए फिका, इल्म ए तफसीर, तफसीर ए कुरान, तफसीर ए हदीस और दीनी किताबों की गहराई से तालीम हासिल की। आपने तकरीबन 16 साल की उम्र तक उस दौर के मशहूर उल्मा और मुफ्तियाने किराम से इल्म हासिल किया। जब आप मदरसे से फारिग हुए तो आपका इल्मी मकाम इतना बुलंद था कि उस जमाने में आपकी मिसाल मिलना मुश्किल था। आप जब किसी महफिल में गुफ्तगू फरमाते तो आपकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता था। आपकी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज इल्म और हिकमत से भरपूर होता। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह न सिर्फ एक आलिम दीन थे बल्कि मुनाजरे डिबेट्स में भी माहिर थे। जो कोई भी इस्लाम के खिलाफ बातें करता आप उससे इल्मी मुकाबला करते थे और अल्लाह की दी हुई हिकमत से कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाता था। आपको भी अपने वालिद की तरह एक ऐसे शहर में रहने का शौक था जहां इल्म, अमल और रूहानियत की फिजा हो। इसी शौक के चलते आपने इरादा किया कि दिल्ली जाया जाए। इसीलिए आपने अपनी मोहतरमा वालिदा से इजाजत ली और दिल्ली का सफर इख्तियार किया। दिल्ली पहुंचकर वहां के हालात देखे, लोगों का मिजाज और माहौल का जायजा लिया, फिर वहां से बदायूं लौट आए। बदायूं लौटकर आपने अपनी वालिदा, बहन और भांजों को साथ लिया और फिर हमेशा के लिए दिल्ली चले गए। अब जानते हैं कि जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली तशरीफ लाए तो वहां उनके हालात कैसे थे और किस तरह उन्होंने दिल्ली को इल्म व इश्क का मरकज बना दिया। जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली शरीफ तशरीफ लाए उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 16 या 17 साल थी। आप अपनी मोहतरमा वालिदा, अपनी बहन और उनके बच्चों को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे। शहर में आने के बाद सबसे पहले आप एक सराय मुसाफिर खाना में ठहरे। कुछ दिन वहां कयाम करने के बाद आप हजरत अमीर खुसरो रहा के मामू के घर तशरीफ ले गए। उस वक्त अमीर खुसरो के मामू घर पर मौजूद नहीं थे। जब वो वापस लौटे और अपने घर में नए और अनजान लोगों को देखा तो उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए तमाम लोगों को घर से निकाल दिया। इस नाजुक मौके पर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने कोई शिकायत नहीं की। आपने सब्र किया और फिर अपनी वालिदा और खानदान के साथ शहर में जगह जगह कयाम करते रहे। काफी तलाश और मुसीबतों के बाद आपको एक छोटी सी जगह और सादगी भरी बस्ती मिली और वहीं आप मुकीम हो गए। यही बस्ती बाद में

आपकी रूहानी तालीम गाह बनी। आपकी वालिदा मोहतरमा घर चलाने के लिए कपड़े सीती थीं, उन्हीं चंद पैसों से घर का गुजारा होता। हजरत निजामुद्दीन औलिया उस वक्त बेहद कमसिन थे, सिर्फ 16-17 साल की उम्र थी, लेकिन तलबे इल्म से दिल भरा हुआ था। आप अक्सर जामा मस्जिद में जाकर बैठते और जो भी कोई आलिमे दीन वहां आता तो आप उससे इल्म हासिल करते। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में उस वक्त शदीद तंगी और गरीबी का आलम था। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। ऐसे वक्त में आपकी मोहतरमा वालिदा आपको तसल्ली देती और फरमाती, बाबा मोहम्मद, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाहु अकबर, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं। उस वक्त तो मुझे मेरी वालिदा का यह जुमला समझ नहीं आता था, मगर अब जब याद करता हूं कि वो कहती थीं हम अल्लाह के मेहमान हैं, तो इस सोच में अजीब सुकून और लुत्फ महसूस होता है। एक रोज हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी वालिदा के पास जाकर सलाम अर्ज किया। वालिदा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा कल तुम किसे सलाम करोगे? आपने हैरानी से कहा, अम्मा जान, ये आप क्या फरमा रही हैं? हम आपके बिना कैसे जिंदा रह पाएंगे? तो मोहतरमा ने बहुत ही प्यार और इत्मीनान से कहा, बेटा अब जाकर सो जाओ, सुबह मेरे पास आ जाना मुझसे मिलने। लेकिन सोना कहाँ था? हजरत निजामुद्दीन औलिया सारी रात बेताबी में जागते रहे, बेचैनी में करवटें बदलते रहे। जब तहज्जुद का वक्त करीब आया तो आप उठे और अपनी वालिदा के कमरे की तरफ बढ़े। वहां देखा, आपकी वालिदा मोहतरमा पहले से ही जाग रही थी, वुजू कर चुकी थी और तहज्जुद की नमाज की तैयारी में मशगूल थी। वालिदा ने आवाज दी, बेटा अंदर आओ। जैसे ही आप कमरे में दाखिल हुए, आपकी मोहतरमा वालिदा ने आपका हाथ थामा, आसमान की तरफ उठाया और रखालूद आवाज में दुआ करने लगी, इलाही, अब ये गरीब तेरे हवाले, अब तक तेरी रहमत से मैंने अपने बेटे का ख्याल किया, मगर आज से मैं निजामुद्दीन को तेरे सुपुर्द करती हूं। अब इसके साथ जो करना है तू ही इसका हामी और निगेबान बन। ये दुआ पूरी होते ही आपकी वालिदा मोहतरमा का विसाल हो गया और साथ ही हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी का सबसे बड़ा गम। आप फरमाते हैं, जब से होश संभाला था मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरी परवरिश के लिए कुर्बान कर दी थी। उनके जाने के बाद मैं गम में डूबा रहा। इस गम को हल्का करने और दिल को सुकून देने के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया अक्सर दिल्ली के मेहरौली शरीफ में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रह की दरगाह पर जाकर बैठते थे। एक रोज जब आप वहां तशरीफ फरमा थे, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग वहां आए। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के करीब गए, अर्ज किया, बाबा मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं इस शहर का आज ही बनना चाहता हूं। बुजुर्ग ने गौर से देखा, एक नौजवान मगर नूर से भरा चेहरा, फिर मुस्कुराकर फरमाया, नहीं तुम कोई नहीं बनोगे, मैं तो ये देख रहा हूं कि तुम बादशाह हो और सारा आलम तुमसे फैज हासिल कर रहा है। अल्लाहु अकबर, ये अल्फाज सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया के दिल को सुकून मिला, एक अजीब इत्मीनान। किताबों में आता है कि वो नूरानी बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के सगे भाई हजरत शेख नजीबुद्दीन थे। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया की उम्र 20 साल हुई तो आपके दिल में तलब जागी कि अब मुझे किसी कामिल वली के हाथ में अपना हाथ देना चाहिए, और आप चल पड़े उस जमीन की तरफ जो आज पाकिस्तान में है, पाक पत्तन, जहां तशरीफ फरमा थे सुल्तान ए हिंदुस्तान ए तसव्वुफ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। आप बचपन से ही बाबा फरीदुद्दीन का नाम सुनते आए थे और दिल में यह ख्वाहिश पलती रही कि मैं उनका मुरीद बनूं। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया पाक पत्तन पहुंचे और बाबा फरीद की नजर आप पर पड़ी तो उन्होंने फौरन फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मकाम अता करने वाला है। और उसी पहली मुलाकात में बाबा फरीद ने अपना अमामा पगड़ी उतार कर हजरत निजामुद्दीन औलिया के सर पर रख दिया। सुभान अल्लाह, ये इशारा था कि अब रूहानी विरासत का ताज एक नए वली के सर पर रखा जा रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की खानकाह में 7 महीने और 17 दिन गुजारे। इस दौरान आपने

खूब फैज पाया और मुजाहिदा रूहानी मेहनत का पूरा हक अदा किया। इसी दौर में आपने हजरत कैदी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह से भी इल्म हासिल किया। वो आपके उस्ताद भी हुए और बाद में आपसे इखलास का रिश्ता भी रहा। जब वो 7 महीने 17 दिन पूरे हुए, बाबा फरीद ने अपनी खानकाह में तमाम मुरीदीन और खास अहबाब को जमा किया। फिर अपने दामाद मौलाना बदरुद्दीन इसहाक

और ऐलान किया, आज से निजामुद्दीन ही हमारे जशनशीन हैं। उस मुबारक मौके पर बाबा फरीद ने अपना सिर का पगड़ी भी अता किया, जो हजरत अली रजी अल्लाहू अनहू से सिलसिलेवार चलता आ रहा था। साथ ही और भी कई तबर्रुकात, मुबारक चीजें हजरत निजामुद्दीन को अता फरमाई। फिर बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया, निजामुद्दीन, हमने तुम्हें दिल्ली की विलायत अता की है, अब तुम वहां जाओ और इस्लाम की तबलीग और इरशाद का काम शुरू करो। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली वापस लौटते हैं, मगर दिल में एक सवाल, मैं अब कहां जाऊं, कहां से इस काम का आगाज करूं। इसी सोच में आप एक हाउस के किनारे में बैठे हुए थे कि आपको नींद ए गई और अपने ख्वाब में रियासपुर जाने की हिदायत पाते हैं, जहां उन्होंने अपनी खानकाह कायम की। आज यह इलाका बस्ती निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, जो इलाही फैज का चश्मा बन चुका है। सैयद मोहसिन मियां साहब का मशहूर बयान है, जहां आका निजामुद्दीन ने बस्ती बसाई है, मुरादें सब पूरी हुई, मदद हर आज जारी है। मेरे आका निजामुद्दीन, तेरी हाजत रवाई है, फकीरे कादरी सैयद पे उनकी मेहरबानी है। एक दिन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास एक बुजुर्ग औरत आई और थोड़ी सी नजराना पेशगी देकर चली गई। हजरत ने अपने मरीदों को हांडी पर चढ़ाने का आदेश दिया और कहा, इसे पकाओ और इसे बनाओ। कुछ समय बाद एक मजबूर फकीर आया और हजरत से कहा, अगर कुछ खाने के लिए हो तो इस फकीर को दे दो। हजरत ने उसे वही हांडी भेजने का आदेश दिया जो चूल्हे पर चढ़ाई गई थी। जब फकीर हांडी को लेकर आया तो वह उसमें से खाता है और फिर हांडी को नीचे पटकता है और तोड़ देता है। ये दृश्य हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी आंखों से देख रहे थे। जब फकीर ने हांडी को तोड़ा तो उसने यह शब्द कहे, ए निजामुद्दीन, हमने ये हांडी तोड़ दी है, हमने पकड़े जाहिर को तोड़ दिया है और आज से अल्लाह तुम्हें फक्र से बचाए रखेगा। इस वाक्य ने कई नजाने उत्पन्न किए और साथ ही यह स्पष्ट किया कि सच्चे पीर के अमीर कभी दौलतमंद मुरीद से नजर आना नहीं लेते, बल्कि गरीब और यतीमों की मदद करते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जीवन शैली में यह साफ था कि वह गरीबों और यतीमों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जो कुछ भी नजर आना उनकी खानकाह में आता, वह उसे गरीबों में बांट देते थे। उन्होंने अपने लिए एक साधारण सी झोपड़ी में जीवन बिताया, जबकि उनकी खानकाह में नजरें और दुआएं आ रही थीं। उन्होंने गरीब मुरीदों की मदद करने के लिए उनकी शादियां करवाई। सच्चे पीर की पहचान यही होती है। हजरत ने अपनी खानकाह में लंगर का भी इंतजाम किया था, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न जाए। आपने लंगर का इंचार्ज हजरत बुरहानुद्दीन गरीब को नियुक्त किया था, जो आपके मुरीद और खलीफा थे। हजरत ने एक बड़ा गोदाम भी तैयार किया, जिसमें राशन और अनाज रखा जाता था, और उसे नीमच खाने का नाम दिया था। आपके खानकाह में हर हफ्ते जितना भी अनाज आता, उसे इस गोदाम में जमा किया जाता था। इसी से रोजाना हजरत की खानकाह में रोजाना लंगर चलता था, और हजरत निजामुद्दीन खुद नमाज से पहले लंगर में जाते, जहां पर जो भी जरूरतमंद होता, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, वह सबके साथ एक जैसे सुलूक करते थे। आप कभी भी धर्म, जात या मजहब नहीं देखते थे, सिर्फ उस व्यक्ति की जरूरत देखी जाती थी। हर व्यक्ति को पेट भर खाना मिलता था और गरीबों और यतीमों का ख्याल रखना आपका मुख्य उद्देश्य था। हजरत के लंगर के खाने में रोजाना 70 शेर नमक का इस्तेमाल होता था। एक शेर में उतनी मात्रा होती थी कि वह बड़े पैमाने पर खाना तैयार करने के लिए पर्याप्त होता। आपके समय के शेर आजकल के मुकाबले बहुत बड़े होते थे। किताबों में लिखा है कि यह लंगर हजारों को खाना खिलाने के लिए तैयार किया जाता था। हर रोज हजारों लोग इस लंगर का हिस्सा बनते थे और हजरत निजामुद्दीन कभी भी किसी को भूखा वापस नहीं भेजते थे। कई बार बादशाहों ने यह कोशिश की कि हजरत के खानकाह में इतना अनाज कैसे आता है, लेकिन वे कभी भी इसका सही जवाब नहीं समझ पाए। उनका यह सवाल हमेशा बेहुदा रहा, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन की खिदमत का राज तो अल्लाह की मदद और अल्लाह की तालीम में था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चे पीर हमेशा इंसानियत के साथ चलते हैं, और उनकी खानकाह में जो भी आता, उसे कभी भी भूखा नहीं लौटाया जाता था। उनकी खानकाह ने यह सिखाया कि इंसानियत सबसे पहले है, और इसी आधार पर हजरत निजामुद्दीन औलिया का जीवन हमारे लिए एक मसीहा की तरह है। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीद का उर्स हर साल अपनी खानकाह में मनाते थे।
इस समय लाखों लोग जमा हो जाते थे। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि बादशाह मोहम्मद तुगलक ने

0: हजरत निजामुद्दीन औलिया से सख्त दुश्मनी रखने का फैसला किया। उसने दिल्ली और आसपास के सभी दुकानदारों से यह आदेश दिया कि कोई भी हजरत निजामुद्दीन के लिए राशन और खाना नहीं बेचेगा। जब उर्स का वक्त आया और लाखों लोग जमा होने लगे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद आए और कहा कि खाने का कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि सभी दुकानदारों को आदेश दिया गया था कि वे किसी को भी खाना न बेचें। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि फिक्र मत करो, खाना देने वाला अल्लाह है और यह बादशाह क्या कर सकता है। फिर उन्होंने अपनी मुरीदों को आदेश दिया कि वे जमुना नदी के किनारे जाएं और वहां कश्तियों में रखा खाना ले आएं। जब मुरीदों ने नदी के किनारे जाकर देखा तो वहां सचमुच कश्तियों में खाना रखा हुआ था, जो बाद में खानकाह में बांटा गया। यह एक करामत थी और अल्लाह की मदद का एक नजारा था। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने देखा कि पानी की जरूरत भी होगी, तो उन्होंने अपनी खानकाह के पास बड़ी पानी की बावली बनवाई ताकि वहां आने वाले लोग पानी पी सकें। यह भी हजरत का दूरदर्शी काम था जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया के समय में खानकाह के पास एक बावली कुआं बनी थी जिसमें सीढ़ियां होती थीं ताकि लोग नीचे उतरकर पानी निकाल सकें। इस बावली में मीठा पानी लाने की एक करामत हुई। जब लोगों ने शिकायत की कि बावली का पानी खारा है और पीने में तकलीफ हो रही है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक आलिम को एक चिट्ठी दी जिसमें कुछ लिखा था। आलिम ने वह चिट्ठी बावली के पानी में डाल दी और जैसे ही चिट्ठी पानी में डाली गई, पानी मीठा हो गया। यह एक अल्लाह की मदद थी जो हजरत की करामत के रूप में सामने आई। आज भी वह पानी मीठा मिलता है और यह एक अल्लाह की रहमत और हजरत निजामुद्दीन औलिया की मुकद्दस करामत का गवाह है। एक बार रियाजपुर मोहल्ले में एक भयंकर आग लगी जिसमें कई घर जल गए और लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने तुरंत अपनी खानकाह से मदद भेजी और जलते हुए घरों की मरम्मत करवाई। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, जो उनकी इंसानियत और उनके खुदा के रास्ते पर चलने की एक और मिसाल थी। जैसे जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया का आखिरी वक्त करीब आया, उनकी जिंदगी में हर कदम पर अल्लाह का नाम और इंसानियत की सेवा साफ नजर आती है। उनकी करामतें, उनकी सादगी और उनकी दीन धर्म के प्रति निष्ठा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने आखिरी दिनों में खाना छोड़ दिया था और बहुत कमजोर हो गए थे। इसके बावजूद उनका ईमान और उनका लक्ष्य स्पष्ट था, इंसानियत की सेवा और अल्लाह की राह पर चलना। 18 रबी अल आखिर 725 हिजरी 1225 ईस्वी 3 अप्रैल को उनका विसाल इंतकाल हुआ। उनकी नमाज जनाजा हजरत रुकनुद्दीन मुल्तानी ने पढ़ाई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की उम्र उस वक्त 87 साल थी। उनकी विसाल की तारीख 17 और 18 रबी अल आखिर को बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। यह दिन हजरत के नाम और कर्मों को याद करने का, अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक दे और हमें हजरत सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिरी नसीब करे।
1: आज हम खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं एक वली कामिल हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वैसे तो बहुत मुरीदीन और चाहने वाले थे, यूं तो सभी आपको अजीज थे, लेकिन इनमें कुछ असहाब आपके बहुत खास थे। इनमें एक हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश है। हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बीच जो मोहब्बत थी, आज ये मोहब्बत पीर मुर्शिद का हवाला है।

हज़रत महबूब इलाही का नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था कि विसाल से कुछ दिनों पहले ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि निज़ाम तुमसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है। इस ख्वाब के बाद सफ़र आखिरत के लिए बेचैन रहे। वफात से 40 रोज़ पहले हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खाना पीना तर्क फरमा दिया और बराबर आंखों से आंसू जारी रहते। कभी खाने के लिए इसरार किया जाता तो फरमाते कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्ताक हूँ, मुझे दुनिया के खाने से क्या गरज। और जब आखिरी वक्त में

बीमार हुए तो जब आपको दवा दी गई तो आपने इरशाद फरमाया, दर्दे मंदे इश्क करा दवा बजुज दीदार नेस्त, यानी इश्क के दर्दमंद के लिए सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के और कोई दवा नहीं।

ఇదో నా బంగారు పాప.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुनते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनान और क्लूनी के रहने वालों को विशेषकर ओब्लू ओब्लू पोल्ट्री CWA ओब्लू टोस्टे MTS बनान CWA क्लूनी रुथ्रोयल क्लूनी और बनान के रहने वालों को सूचित करता है कि रविवार 4 अक्टूबर 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ CB तमारे के रहने वालों को विशेषकर मुसलम कॉलोस के रहने वालों को सूचित करता है कि सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम

0: बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना की बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थे कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग। दुपारचे ठीक एक वाजले आहेत, ते श्रोते रसिकांनो नमस्कार। स्वागत आहे या दुपारी AM2 रेडिओ मॉरिशस वरून आपल्या दैनिक स्वर तरंग कार्यक्रमात। तुमची आमची प्रेमळ साथ असणार आहे 2:15 पर्यंत। तेव्हा रसिक हो, प्रस्तावनेत विलंब न लावता त्वरित आरंभ करीत आहोत आपला संगीतमय कार्यक्रम। या पुढील अभंगाने मन करारे प्रसन्न कर सिद्धीचे कारण संत तुकाराम महाराजांचा हा गोर अभंग आपल्या सुरेल आवाजात व्यक्त केला आहे सुप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपूर यांनी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद।

2 बजे हैं। आज इस तिथि का दिन यानी कि शनिवार है 3 अक्टूबर ऑलरेडी 2026। नमस्कार आप सभी को, आदाब आप कहेंगे आपको, और दिल से एक प्यारा सा हेलो और गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस, और अब वक्त है उस प्रोग्राम का जिसका नाम है अपने आप में एक प्यारी सी फरमाइशी, गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद। मैं हूँ देवीना, और अभी से लेकर 4 बजे तक हम बात करेंगे, सुनेंगे, मुस्कुराएंगे और यादों के खूबसूरत पन्ने पलटेंगे, और साथ में आपके डेडिकेशंस और आपके रिक्वेस्ट के लिए 4028085 पर आप फ़ोन करेंगे, साथ ही मैसेजेस के लिए 5251705501705। भाई आज है सतिथि और दोपहर का ये समय है, मौसम चाहे थोड़ा ठंडा हो, कहीं कहीं बारिश हो रही है, या हवा में हो हल्का सा नशा, आपकी पसंद के साथ हर पल बनेगा और भी सुहाना। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, अगर चाय की प्याली हो हाथ में, और दिल को कह दीजिए आज बस म्यूजिक के नाम और चाय के नाम ये प्यारा सा प्रोग्राम। सो MBC रेडियो मॉरिशस के साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी पसंद में गाने भी आपके, एहसास भी आपके और महफिल भी आपकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, ऐसे गीत से जो मूड को करेगा एब्सोल्युटली फ्रेश। गाना पसंद आए तो याद रखिए, ये है आपका प्रोग्राम, आपकी चॉइस, आपकी महफिल, आपकी पसंद, देवीना के संग।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, जब समझ में ना आए कि क्या करे, अभी जब प्यार में दिल पड़ता है ना, या फिर किसी की याद आती है, तो बस रेडियो सुनते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। कोई ना कोई गाना आपको किसी की याद दिला ही देगा, आपको चैन मिल ही जाएगा। तो यह है आपकी पसंद प्रोग्राम ऑन रेडियो मॉरिशस। अभी से लेकर 4 बजे तक हमारा और आपका प्यारा साथ है। सो आप क्या कर रहे हैं आज? कुछ लोग बाजार की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग घर पर हैं, और अगर सफ़र में होंगे, रास्ते में होंगे, तो बता देते हैं कि आप धीरे धीरे चलिएगा, ज़रा हौले हौले चलो मोरे मेरे दोस्तों, क्योंकि मौसम कुछ ख़राब है कुछ इलाकों में और बारिश भी हो रही है। तो हाँ, बाकी आप लोग धीरे धीरे जाइएगा, कहीं भी जाएंगे, मगर बी सिक्योर और रीच सेफली। तो अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं यह है आपकी पसंद प्रोग्राम, और यहाँ पर आपकी फरमाइशों पर ही यह है प्रोग्राम। और ये जो अगला गाना है लता जी की आवाज़ में है, और साथ में है कोरस, जिसे ये दुनिया क्या दुनिया कहती है, फिल्म है दर्पण, और इस फिल्म की के गाने की मांग की है विश्वानी डुमन जी। नमस्कार जी, वाकवा से है, हमेशा पटापट मैसेज भेज देती हैं कहीं भी हो, तो थैंक यू सो मच। और गीत जो है ये अपनी बहन इंदिरा के लिए मांग रही है, शारदा है, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता के लिए।

0: 18 kilowatts. This is Radio Marxus.
1: जहाँ जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं आज और आप लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, इतने प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच दिल से। और बस हम यही कहेंगे, पंछी सुर में गाते हैं, आप भी सुर में गाइए और हमारा साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस पर। और आपके ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के लिए हम आपको कहेंगे लव यू ऑल। और जितने लोग निकल पड़े हैं सफ़र में, सो बस ये गाना आपके लिए स्पेशली गोज़ टू मीरा है, अमित, आहाना, खुशद और तमाम लोगों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए ये गाना आप सुनते जाइए उदित नारायण साहब की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, फिर से वेलकम बैक आपको करते हैं यहाँ पर आपकी पसंद प्रोग्राम देवीना के संग, और आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस और प्रोग्राम है आपकी पसंद। दोपहर का ये वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, आराम करने का, थोड़ा मुस्कुराने का और म्यूजिक के साथ दिल को रिफ्रेश करने का। आज हम उन सभी लिसनर्स को एक स्पेशल सलाम कहना चाहेंगे जो घर पर हैं, काम पर हैं, सफ़र में हैं, या बस रेडियो के साथ अपना वक्त एंजॉय कर रहे हैं। आप जहां भी हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और म्यूज़िक के साथ जुड़े रहिए।

जी हाँ, तो कितना कितना जो हमारे जो लिसनर्स हैं फरमाइश करते जा रहे हैं और हम बजाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगला गाना जो है मुकेश साहब की आवाज़ में, उन सभी लिसनर्स के लिए जो मुकेश साहब के फ़ान हैं, साथ में ये गाना जाएगा ख़ास तौर पर गीता जी की मांग पर। पोंफे से हैं और जा रही हैं अभी बाजार वो शॉपिंग करने के लिए, तो बस गीता जी और आप एंजॉय कीजिए अपना शॉपिंग वॉपिंग और सभी को कह रही हैं हैप्पी सैटरडे। और प्रोग्राम सुनकर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई हैं, वाह जी गीता जी ये हुई ना बात। तो बस धर्म करम मूवी का गाना है, पति रोहित के लिए, तीन बेटों के लिए बहुएं हैं, तीन बहुएं साथ में हैं, उनके जो प्यारे प्यारे नाती हैं आदित्य ऑलरेडी 11 ईयर्स ओल्ड, आरव हैं तनिष 6 मंथ्स के हो गए हैं, साथ में जो प्यारी सी परी है ना जानवी, उनके लिए और सभी लिसनर्स के लिए मुकेश साहब की आवाज़ में ये गाना आप एंजॉय कीजिए।

जी बस शुक्रिया, हाँ जी शुक्रिया, आप हमारा साथ दे रहे हैं और साथ में ये जो गाना आपने सुना ना, सारी सारी रात तेरी याद सताए, लता जी की आवाज़ में फिल्म थी। अजी शुक्रिया, अजी बस शुक्रिया। और ये गाना जाएगा स्पेशली हमेशा की तरह, हमेशा प्यारे प्यारे से जो गाने हैं ना, जो हम भूल चुके हैं, हमें पता ही नहीं है वो गाने हैं, ऐसे गाने लेकर आते हैं विद्यानंद जी मेबर्ग से। तो विद्यानंद जी, ये था आपके लिए गाना, साथ में नाम जोड़ेंगे एज ऑलवेज सुहंती जी का, और ऑल्सो राजीव है, अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, स्वीति, हरवेश, विश्व गजाधर आपके परम दोस्त, और साथ में बिंदु कालीचंद।

अब 90s में कदम रखते हैं और 90s में क्या गाने थे भाई कि जितना सुने उतना कम होता है। और ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी जो गाने हैं वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, सभी गाने खूबसूरत हैं, मगर 90s का नशा कुछ अलग ही था, आप मानेंगे ना। तो बस लीला जी हैं बुआ शेरी से, लीला जी मांगना चाहती हैं, ये सुनना चाहती हैं एक्चुअली ये गाना, और कह रही है बुआ शेरी में तो मौसम हमेशा भीगा भीगा रहता है, बरसाती मौसम है और हम जैसे हमने कहा कुछ इलाकों में बरसात हो रही है, तो बस बी केयरफुल मेरे दोस्त। और ये जो गाना है टाइटल सॉन्ग पूरे परिवार के लिए, स्पेशली फॉर कासी फैमिली, लोचन फैमिली, उनके जो बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारी पूरी टीम के लिए, बस ये गाना कुमार सानू साहब साथ में अनुराधा पौडवाल।

जादू बजकर 58 मिनट हुए हैं और दो मिनट में आप सुन पाएंगे समाचार 3 बजे और इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी आपकी पसंद प्रोग्राम में। हमारा साथ देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और हम आशा करते हैं कि आपका जो सैटरडे है ना, आपका जो शनिवार है, अच्छी तरह से गुजर रहा होगा। बस आपको देते हैं ढेर सारा प्यार, पॉजिटिव वाइब्स और खुश रहिए। चाय की प्याले हो तो बस चाय की खुशबू और साथ में इन गानों का मजा लीजिए।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। आज प्रेस को संबोधित करते हुए मिलिटेंट प्रोग्रेसिस FMP के लीडर पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात की, खासतौर पर जिंदगी की महंगाई को लेकर, रुपए मुद्रा का घटता भाव और पेट्रोली पैदावारों की कीमतों पर। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर भी बात की, जिनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नेशनल क्राइम एजेंसी का क्याम शामिल रहा। समुदाय में नौजवानों को कटिबद्ध नागरिक और

0: राजदूत बनाना ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के मकसदों में से एक है। प्रधानमंत्री दफ्तर की पहल पर ग्रेड 8 के 200 छात्र 2 हफ्तों के दौरान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे। एक पहला सत्र आज सुबह रुपनाथ रामफल कालबास यानी जोन 1 में लगाया गया, जिसमें माता पिता ने भी भाग लिया। जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया है। 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वे डीजल के निर्यात को रुकवाएंगे और इस फैसले के चलते G7 के नेताओं ने ऐलान किया है कि वे 100 मिलियन बैरल यानी डीजल के बैरल को जारी करेंगे, वो भी 20 दिनों के अंदर अंदर। इस कदम के ज़रिए निर्यात को ज़्यादा आसानी मिलेगी और विभिन्न आयातक देशों को भी राहत पहुंचेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। सिबोरत लेन रोड नंबर 1 वाकवा में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देविका सिबोरत जो सुदेवी यानी एक्स मोशन जासो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं और थी कल दिन के 11 बजे इनके घर सिबोरत लेन उलेहुद नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। परमिशन टुमारो एट 11 AM। लिम्बियातू वाकवा में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री महादेव बापू जो बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं और थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर लिम्बियातू वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement. La MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: Radio Mauritius.

जी हाँ, वेलकम बैक। हो चुका है 3:04 और सत्यदे का दिन है 3 अक्टूबर, और प्रोग्राम आपकी पसंद को जारी रखने से पहले चलिए सीबी की ओर से कम्युनिकेट सुनिएगा। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि जरूरी मरम्मत कार्य के चलते इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल संडे है 4 अक्टूबर 2026 सवेरे के 8:30 से लेकर सपहर के 5 बजे तक बनान और क्लिनिक इन इलाकों में ओब्ले ओब्ले पुल्ट्री CWA ओब्ले टोस्ते MTS बनान CWA क्लिनी रूट रॉयल क्लिनी और बनान। जहां एक और सूचना सुनिएगा, बोशों के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल सवेरे के 8:15 से लेकर सपहर के 4 बजे तक, कल हैं 4 अक्टूबर 2026 को, बोशों के इन इलाकों में मंडीरम के आसपास एसिनेटर

TWA Beauchamp, ANS Florent, यानी कि जो टेरेन डे फुट है वहाँ के आसपास, CWA Beauchamp, La Nourrice, MCML, CWA 3 Hot, 3 Hilo, और स्वात में है 3 Hilo Poultry और इलाकों में, और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे बिजली की सप्लाई फिर से जारी की जाएगी। CWA यानी कि CEB अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। यह रेडियो मॉरिशस और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम।

जहाँ आपके पसंद प्रोग्राम में वेलकम बैक आप सभी का। दिव्या है आपके संग चार बजे तक। यहाँ पर जो है मैसेज है, नमस्ते आपको बी ए ब्यूटीफुल लेडी। ये जो गाना है प्यारी सी विमला जी के लिए शमी गए के हैं और वे ये गाना मांग रही हैं भावना के लिए। आवी करिश्मा अक्षय लीला जीजू किशोर जो बहुत शहर के रहने वाले हैं और देवना, हाँ मेरे लिए भी थैंक यू सो मच और पूरे हमारी जो टीम है उनके लिए थैंक यू विमला जी। हैव ए नाइस टुडे।

जी हाँ, दुआ देते हैं आप सभी को जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, या कल मनाया, या कल मनाने वाले हैं, या पता नहीं कब मनाने वाले हैं, मगर फिर भी दुआ करते हैं दिल से कि आप हेल्दी रहें, खुश रहें, बस आपकी सभी मन्नत जो है पूरी हो। हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे हम कहेंगे थ्रियोले के नीतीश को। अनसुया राम खिलावन की ओर से वे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं अपने बेटे नीतीश को और सभी जो उनके परिवार हैं, उनके जो दोस्त हैं और उनकी जो बेटी हैं याना। तो बस हैप्पी बर्थडे टू नीतीश। साथ में घाव गोप की सुनीता जी कह रही हैं कि उनके जो भतीजे हैं नवीन, यानी कि 30 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और उन्होंने मना लिया और आज खुशी की बात है कि हम उनको विश कर रहे हैं रेडियो द्वारा। तो बस नवीन जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके पूरे परिवार की ओर से। खास तौर पर है मौसी सुनीता और अमृता भी है, बहन है रेशमा, जीजा विक्रम और सभी जो दोस्त हैं, परिवार हैं, सभी लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारी पूरी एमबीसी टीम की ओर से ये गाना आपके लिए था। मेरी दुआ है फूलों से तू खिले। अब चलते हैं, फरमाइश है शीला जी का, दीपिने से है, और ये गाना आप सुनना चाहती हैं। तो बस ये गाना आपके लिए, शीला जी।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: जब प्यार की मोहब्बत की बातें करते हैं और हो चुका है यहाँ पर 3:18, सैटरडे का दिन है और आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आप लोग बिजी होते हैं शनिवार को कामकाज में और निकलते हैं घर से, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, बाज़ार, शॉपिंग, किसी न किसी से मिलते हैं। बस कुछ लोग जो हैं घर पर रहते हैं, गाड़ी में हमें सुनते हैं। तो आप जहाँ भी हो, हाँ, आपको हमारा ढेर सारा प्यार है। और बस ये गाना है, मोहब्बत इनायत करम देखता है, कब हम बस हम दिल देखते हैं। और ये गाना स्पेशली रोमांटिक मूड में होते हैं हमेशा हमारे बुबा से के हरीश बाबू, आपके लिए, आपके खास के लिए। अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास साहब, फिल्म है बहार आने तक।

0: is Radio Mauritius.
1: जहाँ जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं मनीता जी, फ्रांस से मनीता जी, हेलो, प्रणाम जी, हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक होंगी, मैं भी आशा करती हूँ बिल्कुल, और प्यारे प्रोग्राम को आप पसंद कर रही हैं, सुन रही हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। अगर और ये है अक्षय, आपके निफ्यू है अक्षय, वाकवा से है, उनका जन्मदिन है कल है, ओके, तो इन एडवांस अक्षय हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, और उसके लिए गाना बजा रहे हैं। फ्रांस की दोनों मौसी हैं सचित्रा मनीता और कजिन्स है यादव के शाह की तरफ से, उनको बहुत सारा प्यार भेजते हैं, ओके, और आपको भी धन्यवाद, शुभ संध्या आपको भी मनीता जी। एक और शुभकामना है, ये है अनिता फी कॉन्फ्लैक्स से, और सभी को जुतिया की व्रत के लिए शुभकामनाएं भेज रही है, साथ में उनकी जो उनके जो बेटे हैं अंकुश, उनका बर्थडे है आज, बेस्ट विशेज उनको भेजते हैं। और ये है पत्नी आशिमा, बेटी आधिया, पापा राज, मामा अनिता, भाई अंतिश, भाभी मनीषा, भतीजे हिमेशा, भतीजे अंश, मदर इन लॉ इंद्राणी की ओर से हम कहते हैं आपको हैप्पी बर्थडे अंकुश।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marxist.
1: उदय जी रवेजु पुस्ते हैं, अनसुना गाना सुनना पसंद करते हैं। वैसे एक और अनसुना गाना आपके लिए, और ये है रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिर आने लगा याद। और ये गाना जाएगा आप ख़ास तौर पर उनकी पत्नी के लिए। कीर्ति है इनकी बेटी, दामाद है संधन है ज्योति, सुनील है दामाद, और नागेश के लिए, सभी सुनने वालों के लिए। बस एंजॉय ये गाना।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marches.
1: जी हाँ, ये गाना खास तौर पर हमारी जो प्यारी सी सखी हैं उनको कहेंगे बेस्ट विशेज फॉर हैप्पी बर्थडे, हमारी जो प्यारी सी रत्ना है। और ख़ास मैसेज आ रहे हैं सभी लिसनर्स की ओर से जो लोग उनको पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर गाँव गोप की श्यामा रघुनंदन जी ढेर सारा प्यार भेज रही हैं रत्ना को, और कह रही हैं श्यामा जी मृगनयनी है वो, मधुर भाषिनी है वो, मनमोहिनी है रत्ना। और बस रत्ना आप सभी को कह रही है थैंक यू सो मच दिल से, हमने आपको आपका मैसेज भेज दिया है उनको। सो बस रत्ना विश यू गुड हेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस। और एक्चुअली वो अपने फैमिली के साथ अभी टाइम स्पेंड कर रही हैं, तो बस हैव ए नाइस डे। एंड श्यामा जी की ओर से है, साथ में है उनकी जो भाई साहब हैं जयप्रकाश नन, हाँ उनकी भाभी हैं नन, और साथ में उनके जो केशव युधिश हैं, और साथ में उनकी जो सहेलियां हैं बीना रामफल विश्वानी रुकी और नंदिनी उकलू, और जितने लोग रत्ना जो लिसनर्स हैं रत्ना को सुनते रहते हैं। रत्ना आपको कह रही हैं दिल से शुक्रिया, आप सभी को ढेर सारा प्यार भेज रही हैं रत्ना। तो रत्ना इफ़ यू आर लिसनिंग बेस्ट विशेज आपको जन्मदिन का, हैव ए नाइस टाइम एंड गॉड ब्लेस।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marxist.
1: जी हाँ, सभी लोग तो पागल हो ही जाते हैं, कभी कभी खुशी में, कभी गम में, और दुनिया पागल है। बस ये गाना किसके नाम जाता है?

यह नुवेल फ्रांस के कुलेन जी के लिए शागिर मूवी का गाना है सभी दोस्तों के लिए, और खास तौर पर जो दोस्त नाइट शिफ्ट करते हैं उनके साथ, उनके सभी परिवार के लिए कुलेन जी, ये रहा आपके लिए।

0: कसाया पढ़ने न पाए उसने कसाया देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द,
0: थैंक यू।

0: 819 kilowatts. This is Radio Marches.
1: रफी जी साहब की आवाज में आफेज जी के लिए सैंपिया की है शोहर की याद में, ये गाना फिल्म है उड़न खटोला।
2: जिंदगी पराई,
1: ये गाना ऑल्सो गोज टू विद्या जी ऑफ यूनियन पार्क। अफसोस समय की कमी के कारण हम सभी गाने नहीं चला पाएंगे, तो एक एक गाने में आपका नाम जोड़ देंगे। हम देख रहे हैं किसी को साथ वाला गाना पसंद है, किसी को खुशी वाला गाना पसंद है, सो उनमें आपका नाम जोड़ रहे हैं विद्या जी। सिस्टर सती के लिए सुरेखा है, बबीता, वेदना, विमला, प्रीति, चाची कुमारी साथ में है, लक्ष्मी बोंबू से, और वे कह रही है सब के लिए जिन्होंने किसी न किसी अपने को खोया है। ये गाना आपकी

जाइए प्यारा सा गाना रफी साहब की आवाज में, ये गाना जाएगा कोंगो माँ के दिलीप जी के लिए, फिल्म है आया सावन झुमके, और गाना है संगीता के लिए योगेश, कविता किशनवी, मनीषा, निशान, आरव, लक्ष्य और दामाद जी के लिए जो है दानंद जी के लिए, सॉरी, और ऑल्सो गोज टू गायत्री जी ऑफ नुवेल फ्रांस।

0: 819 kilohertz. This is Radio Marches.
1: जहाँ अभी तक बेस्ट विशेस आ रहे हैं रत्ना जी के बर्थडे के लिए, रत्ना आपके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बेस्ट विशेस आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं प्यारे रत्ना को मेरी भी शुभकामनाएं, वो हमेशा ऐसे ही खिलती और मुस्कुराती रहे, उनको बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। ये हैं मनीता जी ऑफ फ्रांस।

जहाँ खुशी का जाम, गीतों का जाम आपने पी लिया है हमारे साथ, बस हर खूबसूरत मुलाकात की तरह आपकी पसंद का ये सफ़र भी अब अपने आखिरी मोड़ पर रहा। तो 2:15 बजे से लेकर अब तक कभी हमने मुस्कुराया, कभी यादों को महसूस किया और कभी म्यूज़िक के साथ दिल को झूमने दिया। आप सभी लिसनर्स का दिल से शुक्रिया आपके प्यार, आपकी फरमाइशों और आपकी कंपनी के लिए। याद रखिए, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बिजी हो जाए, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, एक अच्छा गाना सुनिए और दिल से मुस्कुराइए। मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, दीवना की मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। RM Free रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम होगा सुहाना सफ़र, आप हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। सो MBC रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और अपने आसपास प्यार बांटते रहिए। और हम आपको भेजते हैं ढेर सारा प्यार, फिर मिलेंगे। और हमारे बाद आ रही हैं हमारी प्यारी सी डॉक्टर अलका धनपत जी लेकर साहित्य दर्पण, उनका साथ दीजिएगा।

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्पण कार्यक्रम में। अभी आप देवीना के साथ बहुत प्यारे प्यारे गीत सुन रहे थे और संगीत का आपने खूब आनंद उठाया। सचमुच श्रोताओं, संगीत के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन संगीत के साथ जो शब्द होते हैं वे हमारे भीतर विचार पैदा करते हैं, और श्रोताओं, इन विचारों को लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी कल हमने गांधी जयंती मनाई है, तो आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि यह जो गांधी जयंती थी और महात्मा गांधी का नाम, आप जीवन में महात्मा गांधी को किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे विश्व ने विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया। मतलब अब गांधी जी केवल भारत के नहीं रह गए, अब गांधी जी तो आप समझिए पूरी दुनिया के हो गए हैं, और गांधी जी को अब पूरी दुनिया याद करती है। और ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण दुनिया गांधी जी पर रिसर्च करना चाहती है, विद्यार्थी उनका जीवन दर्शन पढ़ना चाहते हैं, और जो दर्शन शास्त्र के लोग हैं वे जानना चाहते हैं कि गांधी जी ने अपना जीवन कैसे जिया, और जो अर्थशास्त्र के लोग हैं वे जानना चाहते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों की जो आर्थिक दौड़ थी, जो भारत को लूटने की दौड़ थी, उस पर कैसे चोट की। तो बहुत सारी बातें दुनिया में गांधी जी को लेकर चलती रहती हैं, और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं 4028085 पर। तो श्रोताओं, गांधी जी के जीवन को लेकर बहुत सारे पक्ष हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रयोग किए, और मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि गांधी जी ने अपने जीवन को सत्य के प्रयोग कहा। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि गांधी जी का ये ठीक नहीं था, गांधी जी का वह ठीक नहीं था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें बड़े प्यार से उनकी आत्मकथा को ज़रूर पढ़ना चाहिए। श्रोताओं, अपनी आत्मकथा में वे यही लिखते हैं कि मैं सत्य का अन्वेषी हूँ। जैसे कोई राह चल रहा है तो हम ये नहीं कहते कि वो मंजिल तक पहुँच गया है। अब कोई पहाड़ पर अगर चढ़ रहा है और अपने जीवन के प्रयोग बताता है, तो इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मैं अब चोटी पर पहुंच गया हूँ। वह बता रहा है कि रास्ते में कितनी दिक्कतें आईं, तूफान आए, कि रास्ते में परेशानियाँ आईं, वह इन सब को बताता है। तो जब वह इन सब को बताता है तो वह अपने रास्ते के प्रयोग बताता है। जब दूसरे लोग उस रास्ते पर चलेंगे तो वह उन एक्सपेरिमेंट्स को देख कर सोचेंगे, जानेंगे, चिंतन करेंगे। तो सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा का शीर्षक ही यही है, सत्य के प्रयोग। मतलब वे अपना पूरा जीवन सच के प्रयोग करते रहे, क्योंकि श्रोताओं, परमात्मा सत्य है और सत्य परमात्मा है। उस तक पहुंचने की यात्रा इतनी आसान नहीं है। गांधी जी जहाँ एक और राजनीतिक नेता थे, वहीं वे अध्यात्म के मार्ग में भी नए नए प्रयोग कर रहे थे, और अध्यात्म ही नहीं, भोजन में भी नए प्रयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि जीवन की रूढ़ियों में, जीवन के विचारों में, जीवन जीने के ढंग में भी प्रयोग कर रहे थे। उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, आप यदि दिल्ली जाएं राजघाट के पास, तो सन्निधि या संग्रहालय है, वहाँ पर आप देखिए, घुसते ही आपको 50-60 तरह के टॉयलेट दिखाई देंगे, जो टॉयलेट शीट्स होती हैं वे दिखाई देंगी। तो वहाँ जब हम बात पूछते हैं उन लोगों से, तो वे बताते हैं कि क्योंकि भारत जिस समय गुलाम था, उस समय अभी ये टॉयलेट शीट्स नहीं थे। तो आप सभी जानते हैं, पुराने समय में लोग 2 ऐसे ईंटों का जगह बनाते थे और एक बकेट रखते थे, और उसमें लोग अपना विष्ठा या गंध करते थे, और फिर जो छोटी जाति के लोग थे वे इसे उठा के दूर फेंक कर आते थे। तो श्रोताओं, गांधी जी ने कहा था कि ये बहुत ही अमानवीय प्रथा है, हर व्यक्ति को अपनी सफाई का जिम्मा लेना चाहिए, क्योंकि उसका गंध उसी का ही है, दूसरा व्यक्ति क्यों इसे उठाएगा। तो श्रोताओं, गांधी जी इसके लिए काफ़ी प्रयोग कर रहे थे। शुरू में उन्होंने आश्रम में जैसे

से गहरे गड्ढे को खोदा, तब वो सब खाद वगैरह में इस्तेमाल हुआ, जैसे आजकल सेप्टिक टैंक वगैरह बनते हैं। तो बहुत प्रयोग आश्रम में उनके जो समझदार लोग थे या जो इंजीनियर लोग थे वे लोग कर रहे थे कि इस प्रथा को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसे देख के लगता है कि गांधी जी ने जीवन में कितने प्रयोग किए होंगे। इसी तरह से गांधी जी का विवाह तो बचपन में ही हो गया था, और जब बचपन में हुआ तो ये बाल विवाह था, लेकिन बचपन में बच्चे बड़े खुश थे, उनके और उनके कज़िन की शादी एक साथ हुई थी, तो ये दोनों बस उन्होंने लिखा कि हमें तो बस इतना ही पता था कि हम दूल्हा बन रहे हैं। अब भाई जब दूल्हा बन रहे हैं तो दूल्हे के नए कपड़े, दूल्हे राजा होते हैं, सब उनसे बात करते हैं, तो इस तरह की बातें उनको अच्छी लग रही थी। और उन्होंने लिखा कि शुरू शुरू में मैं अपनी पत्नी पर रौब भी छांटता था, मतलब मैंने उसको पढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं मोहासक्त भी बड़ा था उसके प्रति। तो श्रोताओं, गांधी जी ने न केवल भोजन में, भजन में, जीवन शैली में, विचारों में, राजनीति में, अध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वे हर पल अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे थे। हर पल जो कुछ वे कर रहे थे उसे लेकर वे बार बार विचार कर रहे थे कि क्या ये ठीक है, क्या ये उचित है। हम यदि राजघाट पर जाएं तो वहाँ में लिखा हुआ एक उनका स्लोगन मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप कोई भी कार्य करें, इस बात पर ध्यान दें कि आपके उस कार्य का समाज के अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतिम व्यक्ति मीन्स कि जिसके पास जीवन के साधन सबसे कम है। आप कुछ भी करें, जैसे उदाहरण के लिए हम बहुत गहना पहन के निकलते हैं, हम तो अमीर हैं, हमारे पास पैसे हैं और हम अपने गहनों से दिखावा कर रहे हैं, लेकिन यदि सामने वाले व्यक्ति के भीतर चोरी की इच्छा पैदा होती है, छीना झपटी की इच्छा पैदा होती है, तो इसमें दोष हमारे दिखावे का भी है। तो यही गांधी जी कहते थे कि आप कुछ भी कार्य करें, एक बार विचार करें कि आपके कार्य का उस अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो श्रोताओं, विचारों को इतनी गहराई से वे अपने जीवन में उतार रहे थे और लगातार अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे थे। उदाहरण देखिए ना, जिस समय लोग बाल गंगाधर तिलक ने उनसे कहा कि आप पहले भारत का भ्रमण कीजिए, उसके बाद भारत की राजनीति में घुसिए, पहले जाकर देखिए तो सही, भारत के लोगों की दुख भरी कथा तो सुनिए। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए थे तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और वे एक द्वार पर पहुंचे, संध्या हो रही थी, तो उन्होंने द्वार का दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने कहा, अंदर से एक महिला की आवाज़ आई, उसने कहा कौन है, तो गांधी जी ने कहा कि एक अतिथि है, एक राही है, कुछ खाने को मिल जाए और कुछ थोड़ी देर के लिए आराम। तो उस महिला ने उनसे कहा कि देखो भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे पुत्र और पति दोनों काम पर गए हैं, मेरे पास एक ही वस्त्र है और मैंने उसे दोपहर को सब काम करके धोया है, शाम तक जब वो सूख जाएगा उसे जब मैं पहन लूँगी तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी, और तब तक मेरे पति और पुत्र भी आ जाते हैं। गांधी जी सुनकर हैरान रह गए कि केवल एक वस्त्र से एक स्त्री गुजारा कर रही है। इस बात ने उनको इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसी दिन निर्णय ले लिया कि मैं केवल एक धोती में ही रहूँगा, और पूरा जीवन उन्होंने कहा कि जब तक मेरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को वस्त्र नहीं सुलभ हो जाता, मैं केवल एक धोती ही पहनूंगा। सर्दी हो या गर्मी या बारिश, गांधी जी ने एक धोती और केवल ऊपर एक सूती चद्दर में ही अपना जीवन बिताया। यहाँ तक कि जब वे चर्चिल या इंग्लैंड में गए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने, तब भी उनसे लोगों ने कहा कि अब तो, उन्होंने कहा नहीं, उनको स्वीकार है तो बुलाएं, नहीं स्वीकार तो नहीं बुलाएं। चर्चिल उनके लिए कहा करते थे, इस नंगे फकीर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। तो श्रोताओं, इतना तेज और अपने कामों को समझने की इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें गांधी जी के साथ थी, जिसके कारण पूरा विश्व आज उनकी पुस्तकों को, उनकी कही बातों को, उनकी छपी मैगजीन्स को पढ़ता है, उन पर शोध कार्य करता है और जानना चाहता है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा था। और श्रोताओं, आइंस्टाइन ने तो कहा भी था कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि धरती पर हाड़ मांस का पुतला ऐसे विचारों को लेके कभी किसी ने जन्म लिया होगा या चला फिरा होगा। मतलब इतने आदर्श तक गांधी जी पहुंच गए थे कि बाद में कुछ लोगों ने उनकी आलोचनाएं भी की, पर उससे क्या फर्क पड़ता है श्रोताओं, जो महान व्यक्ति हैं वे तो अपनी महानता के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं।

श्रोताओं, गांधी का व्यक्तित्व समाज को हिला गया। बहुत लोग कहते हैं इस बात को लेकर कि भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने देश के लिए गोली खाई, फांसी पर चढ़े, गांधी ने क्या किया। आश्चर्य होता है गांधी ने क्या किया। ये सवाल सुनकर लगता है कि आपने पढ़ा ही नहीं कुछ, भारत के स्वतंत्रता इतिहास को देखा, समझने की कोशिश ही नहीं की। रास्ते अलग होते हैं, कोई जोश में काम करता है, कोई होश में काम करता है। भगत सिंह वगैरह तो चाहते थे कि यदि हमको फांसी भी दी जा रही है तो दो दिन देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी दो ताकि हम फिर से नया जन्म लेकर तुम्हारे विरोध में खड़े हो सकें और अपने देश की आज़ादी को ला सकें। श्रोता, उनका त्याग कम नहीं था। भरी जवानी में फांसी के तख्ते पर झूल जाना, ये अपने आप में एक अनोखा इतिहास है और भारत के वीर बहादुर तो इससे भरे पड़े हैं। लेकिन गांधी जी देख रहे थे कि अंग्रेज़ों के पास साधन ज़्यादा हैं और वे इन लड़कों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद फांसी या गोली मार देते हैं या काले पाने की सज़ा। वीर सावरकर, उनको अंडमान निकोबार में डाल दिया गया था और वे तड़पते थे वहाँ से निकलने के लिए। उन्होंने कोशिश भी की समुद्र से तैर कर देश तक आने के लिए, लेकिन फिर से पकड़े गए। उनको जितनी यातनाएँ दी गई, जो लोग अंडमान निकोबार टूरिज्म के लिए आजकल जाते हैं वे जानते हैं वहाँ पर जो अंडमान की जो जेल है, उस जेल को, सेलुलर जेल जो है उसको जब देखते हैं तो बिल्कुल उसमें एक आदमी जैसे खड़ा हो सके बस इतनी सी जगह है। और एक डब्बा दे दिया जाता था कि उसी में आप अपना गंद करेंगे और सुबह जब सफाई वाला आएगा तो वो उसको उठा के लेके जाएगा। और एक छोटी सी खिड़की से थाली में खाना दिया जाता था। और उनसे जैसे बैल चलाते हैं रहट जैसे गन्ने का जूस निकालने के लिए या तेल निकालने के लिए, उनसे बैलों की जगह पर उनको लगाया जाता था। तो वीर सावरकर वहाँ

0: उन्होंने सहा। तो श्रोताओं, गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज इस समय जिस चालबाजी से चल रहे हैं उसमें ये हमारे युवाओं को फांसी देकर गोली मारकर खत्म करेंगे। तो गांधी जी ने लंबी, जैसे हम कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा, वह गांधी जी थे। तो गांधी जी ने पूरी जनता, मतलब जनता को सेंसिटाइज करना शुरू किया, जनता के भीतर आज़ादी की लहर को जगाना शुरू किया। वो जो जनमत उन्होंने तैयार किया, आप जानते हैं गांधी जी से पहले आंदोलनों में महिलाएं नहीं जाती थी, बच्चे नहीं होते थे, लेकिन गांधी जी ने जब आंदोलनों में हाथ डाला तो महिलाएं भी जुलूसों में आईं, महिलाएं भी जेलों में गईं। यहाँ तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी भी लिखते हैं कि हम जब छोटे छोटे थे तो हमने एक वानर सेना तैयार कर रखी थी, और जब पुलिस पकड़ने आती थी तो हम भी कहते थे कि देखो हम भी जाएंगे जेल, हमको भी लेकर जाओ। तो श्रोताओं, वक्त को, समय को, व्यक्तियों को गांधी जी ने बदला, ये उनकी सबसे बड़ी देन थी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028085 पर, और आप गांधी जी के कौन सी बात से प्रभावित हैं या आप किस बात पर ध्यान देते हैं, आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं।
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण। प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
0: तो हमारे साथ एक श्रोता जुड़ ही गए हैं, हम देखते हैं श्रोता हमें क्या कहना चाहते हैं वे गांधी जी के बारे में। तो हेलो।
2: हाँ बेटी।
0: हाँ नमस्ते नानी जी, आपके पास तो पुराने जमाने का बहुत खजाना होगा।
2: बड़ी खुशी के बाद अच्छा प्रश्न रख ले
0: जी जी,
2: गांधी महात्मा के बात।
0: हाँ, गांधी जी ने तो मॉरिशस का भी बड़ा भला किया,
2: लाखों में एक रलन, बहुत चीज के उजाड़ कर ले हवन, बहुत संभर ले हवन सब कुछ। वो लड़की, एगो लड़की के अथी नहीं रहल, जगह नहीं रहल पढ़े के, अपन यहाँ ले जाके पढ़ेलन,
0: बहुत सुंदर।
2: और अंग्रेज से बड़ी मीठा से बतिया के अमृत डाला, मान ला अमृत डाला डाल के जब बेचारा हाथ मिला के बच गई लन।
0: हाँ।
2: तब भारत के राज सही करा ले लन।
0: जी।
2: जब सही करा ले लन तब मोरी सगरो आंदोलन हो गए, जहाँ महात्मा गांधी ऐसा ऐसा काम कर देलन, हाँ वो अंग्रेज बेचारा खुशी खुशी सही कर देलक।
0: अभी इस पर बात तो करेंगे
2: जी। कितना निमन काम कैलन
0: जी,
2: बहुत अच्छा काम कैलन बेटी, तो अच्छा के अच्छा ही बोलबा ना
0: जी जी।
2: अभी एगो पूजा चलता, हाँ पितरी के, यज के, तर्पण के, सब के पूजा चलता
0: जी।
2: तो एगो पिटिशन दो लाइन गा देला है,
0: सुनाइए सुनाइए।
2: दादा जे चलले बनारस गया दिंदा पार बहु, आहो साथ लागल चलले बहुआरो देई, हम दिंदा सान बहु, हम सान बौरा पार बदेव लोग आनंद है, आहो काशी में विप्रस भयानंद है, देव लोग आनंद है, बाबा जे चल ले बनारस गया तिंदा पार बहु, आहो संगे साथ चल ले बहुवारो दे, हम पिंडा सान बहु, हम सान बौरा पार देव लोग आनंद है,
0: बहुत धन्यवाद नानी जी।
2: काशी में देव सब आनंद है,
0: बहुत धन्यवाद नानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक पुराना गाना सुनाया और पितृपक्ष को लेकर सुनाया, तो अपने बुजुर्गों का सम्मान। चलिए हम एक और श्रोता को लेते हैं जो हमारे साथ।

0: लाइन में जुड़े हैं और उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो डॉक्टर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं भाई साहब?
1: मैं धनी हूँ
0: हाँ
1: जी, मैं
0: बिल्कुल
1: ठीक हूँ, मैं
0: जी
1: अच्छा हूँ
0: जी सुनाइए।
1: जी। मैं कहूँगा इतना ही कि
0: हाँ
1: डॉक्टर जी,
0: हाँ
1: महात्मा गांधी जी,
0: हाँ
1: जब उन्होंने ऐसे धरती पर जन्म लिया जहाँ हमारे भगवान ने अवतार लिया है
0: हाँ
1: उस
0: बिल्कुल,
1: धरती पर
0: पवित्र धरती है।
1: जी, वो हिम्मत वाले थे, हिम्मत
0: सही।
1: वाले थे और उनके दिल में दया थी जी, वो बहुत दयालु थे तो
0: और सबसे बड़ी बात, हर पल अपने आप को बदलते थे, हर पल नए नए प्रयोग करते थे।
1: जी वो हिम्मत वाले थे और भगवान उनके साथ थे।
0: सही बात है।
1: आज अगर देखेंगे आज की दुनिया में, ये देखिए क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या हो रहा है इस दुनिया में। आज के इंसान देखिए, वो अमेरिका, वो कितने
0: रूस, बिल्कुल
1: बड़े बड़े देशों में
0: हाँ,
1: देखिए ये क्या कर रहे हैं
0: सिर्फ सिर्फ अपनी सुविधाओं को जुटाना चाहते हैं।
1: जी, कितना अंतर है
0: अंतर है बिल्कुल,
1: उस समय के
0: वो
1: इंसान
0: सोच और आज
1: और
0: की सोच में।
1: जी, ये देखिए ना क्या हो रहा
0: बिल्कुल
1: है।
0: ठीक कह रहे हैं आप। तो लालच ना, मनुष्य का लालच उसके
1: लालच
0: यहाँ तक ले आता
1: लालच
0: है।
1: लालच
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद
1: लालच
0: धन्य।
1: है,
0: हाँ
1: ये प्राप्त है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है,
0: हाँ सब कुछ
1: मुझे
0: बटोरना।
1: हासिल करना है, ये ऐसी बात चल रही है आजकल। क्या
0: इस
1: कहें, ऐसे ऐसा इंसान, ऐसे महात्मा फिर से नहीं आएंगे, अब
0: मुश्किल
1: वो
0: होगी,
1: चले गए
0: आएंगे
1: वो
0: लेकिन
1: समय
0: वक्त आएगा, मिलेगा फिर
1: जी
0: से। चलिए बहुत
1: जी बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: आप हमारे साथ जुड़े। और
1: जी
0: मैं सिर्फ यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहती हूँ धनी जी से कि भाई आप जो बात कह रहे हैं, सचमुच ये जो मनुष्य का लालच है ना, क्योंकि गांधी जी ने एक जगह पर कहा है कि प्रकृति ने आपको सब कुछ दे रखा है और कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लालच के कारण कुछ लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो श्रोताओं चलिए एक और श्रोता से जुड़ते हैं। हेलो,
1: जय श्री कृष्णा माता जी, मैं
0: जय
1: रमीला
0: श्री
1: जी हूँ।
0: जी, कैसी हैं?
1: हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है?
0: फर्स्ट क्लास, सुनाइए
1: हाँ
0: कुछ,
1: मैं छोटी सी भजन बोलूंगी,
0: सुनाइए जरूर।
1: भूल

0: जाओ, एक तेरा सहारा है।
1: बहुत सुंदर रोमिला जी,
0: धन्यवाद
1: बहुत
0: माता जी।
1: सुंदर, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए श्रोताओ, हमारे साथ एक श्रोता और जुड़े हैं, उनको भी लेते हैं हम। हेलो इंदिरा जी,
2: नमस्ते जी।
1: नमस्ते, कैसी हैं आप?
2: ठीक हुआ आपने मेरे नाम पहचान लिया।
1: क्या बात है, आपकी आवाज से हमको पता चल गया कि आप ही
2: तो
1: हैं।
2: ठीक है, मैं ही हूँ।
1: हाँ
2: और क्या कहते हैं, मैं तो सोच रही थी कि गांधी जी जिसे पहचान लेते हैं अपने
1: हाँ
2: भक्तों के, अपने लोगों के, सभी के लिए, गांधी के तीनों बंदर का
1: जी
2: जान जाते हैं,
1: हाँ
2: उसी तरह से आपने मुझे जान लिया। आप
1: जी,
2: कितनी कितनी ज्ञानी है,
1: अरे
2: मैं आपको आप ज्ञानी कहती हूँ।
1: अच्छा,
2: ओके बस ठीक
1: बहुत
2: है। और क्या
1: धन्यवाद।
2: कहते हैं,
1: हाँ
2: बहुत धन्यवाद आपको भी,
1: हाँ
2: आपको लोगों को मौका देंगे।
1: जी, बहुत
2: बाय
1: बहुत
2: बाय।
1: धन्यवाद इंदिरा जी, बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इंदिरा जी हमारे साथ मिल जुड़ी माधलब्या से, और उन्होंने अपना प्यार हमारे साथ बांटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: सफर है। हे!
1: सचमुच जिंदगानी के सफर में आप अकेले कैसे हैं? और भाई मुड़ के तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जिनको देखने से जीवन में प्रेरणा मिलती है। गांधी जी की एक बड़ी विशेषता हम जानते हैं, एक साधारण बालक था जो स्कूल में किसी से रुककर बात भी नहीं करना पसंद करता था और घर की तरफ बस्ता उठा के भागता था। उसे बोलने में शर्म आती थी, उसे लगता था कि कोई कोई सवाल पूछ बैठेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा। वह बालक एक दिन जाके लॉयर बनता है। वह बालक एक दिन पूरे विश्व को के सामने भाषण देता है। मतलब आपकी कमजोरी आपकी ताकत भी बन सकती है। हिम्मत मत हारिए, यदि आप हिम्मत से बढ़ते रहेंगे तो एक दिन विजय आपको ज़रूर प्राप्त होगी। गांधी जी ने भी अपनी आत्मकथा को कहा है सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। कोई ये ना सोचे कि मैं सत्य के अंतिम बिंदु पर पहुंच गया हूं। हर रोज़ मैं मान लो ट्रूथ के सत्य के प्रयोग कर रहा हूं। क्योंकि श्रोताओं, हमारा जीवन कोई मोनोटोनस नहीं है, हम कोई मशीन का पुर्जा नहीं है ना कि भाई रोज़ एक ही टाइम पर उठेंगे, एक ही टाइम पर खाएंगे और एक ही सब्जी खाएंगे। हम रोबोट नहीं हैं, हर वक्त हर चीज़ बदलती है। और गांधी जी अपने जीवन में सत्य के अनेक प्रयोग कर रहे थे, भोजन में प्रयोग, बोलने में प्रयोग, अध्यात्म में प्रयोग, राजनीति में प्रयोग, हर चीज़ को सत्य के तराजू से तोल रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। अरे भाई, गांधी जी को पता चला कि ग्वाले लोग बछड़े के हिस्से का दूध भी बेचते हैं।

जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।

श्रोताओं, कुछ लोग ये कहते थे कि गांधी जी बकरी का दूध पीते हैं। जब उन्हें पता चला कि ग्वाले बछड़े का हिस्सा भी बेच रहे हैं, बस उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं गाय का दूध पीऊंगा ही नहीं। श्रोताओं, किसी के दुख को देख के जिस व्यक्ति ने केवल एक धोती पहननी शुरू कर दी, बछड़े का दुख सुन के उन्होंने गाय का दूध पीना छोड़ दिया, ऐसे में उनको बकरी का दूध जानते हैं क्यों पीना पड़ा। वे एक बार बहुत बीमार हो गए थे तो डॉक्टर ने बा से कहा, बा मतलब कस्तूरबा उनकी पत्नी, कि बा इनको दूध बहुत आवश्यक है, अन्यथा इनका पेट ठीक नहीं होगा। तो बा ने कहा कि ये तो दूध पीते ही नहीं है, कब से इन्होंने त्याग रखा है। तब इस समस्या का समाधान खोजा गया कि चलिए वे बछड़े गाय का दूध नहीं पीते ना, ताकि बछड़े का हिस्सा जो है वो ना उनके पास हो, बकरी का दूध तो पी सकते हैं। तब श्रोताओं, उनके इलाज के कारण बकरी का दूध मंगाया गया था, लेकिन लोगों ने इसको भी एक अलग ढंग दे दिया कि भाई वे तो बकरी का दूध पीते थे, रॉयल दूध पीते थे। तो श्रोताओं, बिना पढ़े बिना रिसर्च किए हम किसी महान व्यक्ति के बारे में जब कुछ भी बोलते हैं तो हम ही छोटे हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है गांधी जी को समझना। आश्रम में वे कितनी बार नीम के पत्तों की चटनी से रोटी खाया करते थे, वे ये प्रयोग करके देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे 36 व्यंजन नहीं चाहिए, जिह्वा पर संयम बहुत ज़रूरी है। यदि जिह्वा पर संयम नहीं तो आप बोलने में भी संयम नहीं रख सकते। सबसे पहले व्यक्ति को खाने पर संयम करना होता है। तो श्रोताओं, जो व्यक्ति लगातार प्रयोग कर रहा था, जिस पत्नी पर उन्होंने हाथ उठाया और पत्नी ने कहा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इस वाक्य ने उनका जीवन बदल दिया। उसके बाद कभी उन्होंने

0: संवेदनापूर्ण था कि छोटी छोटी बातों को लेके अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उनके पास एक पेंसिल थी जो बहुत छोटी हो गई थी, तो जो उनके साथ जो वे बोलते थे उनकी चिट्ठियाँ, उनके साथ एक भाई लिखा करते थे। तो गांधी जी जब अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि टेबल पर वो कुर्सी पेंसिल नहीं है, तो उन्होंने पूछा पेंसिल कहाँ है। तो उन्होंने कहा बापू मैं ये नहीं ले आया, ये बहुत छोटी हो गई थी, फेंक दिया मैंने। उन्होंने कहा फेंक कैसे दी तुमने, अभी वह उससे काम कर सकता था, जब तक वो इस्तेमाल में आएगी मैं उसे फेंकूंगा नहीं, हमें बचत से चलना है, अपने देश में एक एक चीज़ की बचत करनी है। तो श्रोताओं, इतने गहरे दर्शन वाला व्यक्ति, उसको समझने के लिए लोग देखिए कितने रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर PhDs की जा रही हैं और बाहर की 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में गांधी जी पढ़ाए जाते हैं।
1: सीख का सदा स्वागत होता है, साहित्य में छुपा गुण रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण, ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही है अलका धनपत।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ एक श्रोता भी जुड़ गए हैं, हम उनको लेते हैं, देखें वे क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: जी, मैं हूँ बसंती
0: जी।
2: जी, तो मैं दो शब्द सुनाने जा रही हूँ।
0: जरूर, आपका स्वागत है, सुनाइए
2: जी। भारत की पुण्य भूमि पर जब भी संकट के बादल उमड़े, इसके उद्धार के लिए अनेक महापुरुष जन्म लेते रहे हैं, जिन्होंने समाज की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया और मानव जाति के संकट को दूर किया। ऐसे ही महापुरुषों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी महात्मा गांधी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है।
0: बहुत सुंदर।
2: गांधी जी का जन्म पुरंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता करमचंद्र गांधी पहले
0: पोरबंदर
2: में और फिर अन्य रियासतों के दीवान रहे
0: जी।
2: माता पुतलीबाई बड़ी दयालु, उधार एवं
0: धार्मिक विचारों वाली थी,
2: धर्मात्मा महिला थी
0: जी।
2: उनके संस्कार विशेष रूप से गांधी जी पर पड़े। गांधी जी के प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही हुई। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरीबाई से अपना विवाह हो गया था। गांधी जी ये दो शब्द कहा था, मैं मरने के बाद सब में एक रूप हो जाऊंगा, शरीर का बंधन टूट जाएगा, आत्मा मुक्त हो जाएगी, सब में मिल जाऊंगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद बहन जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी प्यारी प्यारी चीजें आपने हमें सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या आपको। तो श्रोताओं, बहुत ही प्यारी चीज़ें उन्होंने सुनाई हमें, और गांधी जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: श्रोताओं, गांधी जी के बारे में अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना जीरो से हीरो बनना, यह गांधी जी का व्यक्तित्व था। माँ से जो प्रतिज्ञाएं की, कुछ भी हो गया इंग्लैंड में उन्होंने उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ा नहीं। कठिन प्रतिज्ञाएं थी और उस समय तो जो भी वहाँ जाता ये सब तोड़ बैठता था। आज भी कहाँ लोग निभा पाते हैं, शराब नहीं पियेंगे, परस्त्री गमन नहीं करेंगे, कभी मांस नहीं खाएंगे। ये तीन प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने की, मित्रों ने कितनी कोशिश कर ली, उनसे कहा कि यहाँ ठंड बहुत होती है, यहाँ मांस के बिना काम नहीं चलेगा, हर शोरबा में मांस है, लेकिन गांधी जी ने उस प्रतिज्ञाओं को तोड़ा नहीं। और जहाँ चाह वहाँ राह भी मिल जाती है। गांधी जी को एक ऐसा ग्रुप मिल गया जो शाकाहारी भोजन करता और उस पर प्रयोग करता था, बातचीत करता था। धीरे धीरे कितने दिन गांधी जी भूखे भी रहे, ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन अंततः रास्ता मिला। और श्रोताओं, पर स्त्री गमन का तो उन्होंने बताया कि उनके मित्र उन्हें किसी के घर लेकर गए थे, उनको पता नहीं था, लेकिन वहाँ जो वो लड़की की माता जी थी, उन्होंने एकदम देखते ही कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। तो गांधी जी उल्टे पैर लौटे, तब उनको समझ आया। उन्होंने घर पहुँच के भगवान से कहा कि आप ही ने आज मेरा व्रत निभाया, मेरी रक्षा की है। तो श्रोताओं, जो अपने व्रत की रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और जीवन भर प्रयोग किए, बचपन में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की वो छोटे बच्चों की फिल्म देखी, श्रवण कुमार की देखी, इस दोनों ने उनके ऊपर इतना प्रभाव डाला कि जीवन भर वे सत्य के उपासक बने रहे। यहाँ तक कि आत्मकथा भी उनकी सत्य के प्रयोग ही कहलाई। और श्रवण कुमार को पढ़कर तो वे वैसे ही अपने माता पिता के वे भक्त थे, और भी ज़्यादा उनके भीतर अपने माँ बाप के लिए भक्ति पैदा हुई। उन्होंने कुछ पैसे चुराए, बीड़ी भी पी, मांस भी थोड़ा खाया, क्योंकि उनके कज़िन ने कहा कि जब तक मांस नहीं खाएंगे ना, इन अंग्रेज़ों को हम भगा नहीं सकते। तो बाल बुद्धि यही लगा कि मैं ताकतवर हो जाऊँगा, लेकिन दूसरे दिन लगा कि नहीं, मैंने गलत किया है। चिट्ठी लिखी, पिताजी के पास छोड़ दी और पाँव के पास बैठ गए। उन्होंने देखा कि पिताजी की आंखों से बस आंसू झर रहे थे, इतनी ही सज़ा उनके लिए बहुत थी। तो श्रोताओं, गांधी जी का व्यक्तित्व तो अपने आप में अनोखा है। जब वे लॉ की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और मुंबई में पहुंचे केस के लिए, तो पहले केस की पैरवी में वे बोल नहीं पाए थे। आप सोचो, ऐसा व्यक्ति जो इतना घबराता था बोलने में, एक दिन वह साउथ अफ्रीका का हीरो बना, भारत का हीरो बना और पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बना।
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण। प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपति।

0: कहना।
1: सचमुच श्रोताओं, अपना मन ही दर्पण होता और सब जानता है। चलिए, हमारे साथ एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे सचमुच। हेलो नवीन भाई।
2: शुभ नमस्कार अलका बहन।
1: आपको भी शुभ संध्या, कुछ सुनाइए।
2: बहन जी, मैं भारतीय वंशज हूँ।
1: ये तो सही बात है, डीएनए टेस्ट किया जाएगा।
2: मैं भारत जी, और इसीलिए मैं भारत की प्रशंसा करना थकता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भारत की संस्कृति को मानता हूँ हिंदी के जरिए, और हिंदी भाषा भी तो मेरी प्रिय भाषा है।
1: बिल्कुल, और आप सेवा भी कर रहे हैं सचमुच। जीवन भर आपने बच्चों को निशुल्क पढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है।
2: धन्यवाद बहन जी। और ये जो महात्मा की बात आप बोल रहे हैं, महात्मा गांधी को,
1: जी,
2: तो मैं कहूँगा कि ये भारतवर्ष के लोग ईश्वर के नाम को लेकर अपनी शक्ति को जगाती हैं।
1: हाँ, उस मिट्टी में कुछ है।
2: हाँ, उस मिट्टी, जैसे किसी ने भी कहा, पवित्र धरती पर। हाँ। महात्मा, मेरे ख्याल से वो नाम भूल गया जी,
1: धनी जी ने, धनी जी।
2: हाँ, पवित्र धरती पर। हाँ। जन्म हुआ
1: जी।
2: और कहूंगा आपसे कि देखिए, महात्मा गांधी के, यानी कि उनके जो ये राम नाम,
1: हाँ,
2: उसी में उनकी आत्मबल का स्रोत था।
1: तभी तो मरते समय मुख से हाय नहीं निकला, हे राम निकला।
2: अंतिम समय तक हे राम उन्होंने कह कर चरितार्थ किया। तो बहन जी, और एक घटना आपको सुनाऊं, एक दो दिन से दो देख रहा हूँ।
1: हाँ।
2: कि वो हनुमान चालीसा,
1: हाँ,
2: का पाठ करते हुए, हाँ, उन्होंने 170 जान बचाई।
1: अच्छा,
2: ये अच्छी, ये हवाई जहाज की बात में,
1: जो अभी
2: मछार की बात।
1: हाँ, मछार, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कमाल कर दी,
2: मुश्किल की घड़ी में।
1: हाँ।
2: हनुमान जी का नाम लेते थे।
1: सचमुच सचमुच।
2: और ऐसे कितने मैंने उदाहरण पढ़े हैं, ये भारत के लोग सचमुच उनकी मन, अभी आपने जो गाना चलाया,
1: हाँ,
2: वो सुन रहा था मैं अभी बहुत ध्यान से। तो बहन जी, आपने आज गांधी की बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक छोटा सा जीव, गांधी जी, उन्होंने कितने लोगों को हिला करके,
1: हाँ,
2: अपना स्वतंत्र लेकर भारत,
1: बिल्कुल,
2: भारत,
1: मतलब जनमत तैयार करना आसान नहीं है ना जी।
2: हाँ जी। और जैसे आपने कहा, जब गांधी जी चले तो महिलाओं को भी चलना,
1: हाँ,
2: शुरू कर
1: बच्चे,
2: दिया।
1: महिला,
2: मैंने फोटो में देखा है और पढ़ा भी है।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: बहुत धन्यवाद बहन जी,
1: बहुत धन्यवाद भाई साहब जुड़ने के लिए और प्यारी प्यारी बात सुनाने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो

हमारे साथ नवीन भाई जुड़े और उन्होंने बहुत मच्छार जी को भी याद किया। सचमुच पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया उनके जज्बे को सलाम कर रही है। और उस समय सोच कर निर्णय लेना, यही सबसे बड़ी बात है। आपको चाकू लगा हुआ है, उस समय आपने कॉकपिट खोल दिया ताकि बाहर से लोग अंदर आ सकें, तो उस समय बुद्धि और चेतना ऐसा काम करे वो तब करती है जब संस्कार रूप में परोपकार होता है। तो वे संस्कार उसके अंदर होंगे। गांधी जी को गोली लगी, उनके मुंह से हाय राम नहीं निकला। हमें सुई चुभ जाए तो हाय माँ, हुई माँ, ये होता है। गांधी जी ने कहा हे राम। जीवन में राम को उन्होंने उतारा था, तो जब राम उतर गए तो मरने से पहले मुख से उनके राम ही निकला। तो श्रोताओं, जीवन की साधना की, उन्होंने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए। जो किसी ने बताया कि ये ठीक नहीं, उसको सोचा समझा, जहाँ बदल सकते थे बदला। 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए उन्होंने आमरण अनशन किए देश के लिए, पानी अन्न ग्रहण नहीं किया ताकि अंग्रेज़ों को पता चले कि हिंदुस्तान उनका नहीं है, उनको यहाँ से जाना ही होगा।

0: हिंदुस्तानी।
1: सचमुच श्रोताओं, ये दिल हिंदुस्तानी अर्थात उसकी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और उस देश के बड़े बड़े संत महात्मा, उन लोगों ने जो कुछ दिया है उसके हम ऋणी हैं। उसी ऋषि ऋण को हम चुकाते हैं, पितृ ऋण को चुकाते हैं हम और देव ऋण को चुकाते हैं। तो श्रोताओं, ये गर्व की बात है कि हमारे देश में या हमारी संस्कृति में ऐसे महान महान संत हुए। कृष्ण देखिए, संत भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, तो हमारे यहाँ पर तो राजा जनक की तरह से राजर्षि भी हैं और महर्षि भी हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ अलका धनपत को अनुमति दीजिए। नमस्कार और शुभ संध्या।

0: 819 kilowatts. This is Radio Marxist.
1: सचमुच प्यार के नाम पे ही तो धड़कता है दिल, 5 बजे हैं शाम के।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी

प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। एक और मुलाकात के लिए तो हम कब से थे बेताब, और मुलाकात की घड़ी तो आ ही गई है। शनिवार की है ये मन भावन शाम, ऊपर से खेल खिलाड़ी प्रोग्राम, बस बड़े

प्यार से करना है आप ही लोगों के नाम। और खेल खिलाड़ी में दो भाग हैं, 6:30-5:30 तक आप सुनेंगे सिनेमा दिल से, जहां पर फिल्मों पर तो गाने होंगे ही और प्रश्नों की होगी बौछार। और 5:30 से लेकर 6 बजे तक आप सुनेंगे मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर सामान्य ज्ञान, स्पोर्ट्स और फुटबॉल पर प्रश्न होंगे और बेशक गानों के साथ। चलिए, जो आज का जो पहला विषय हम लाए हैं आपके लिए, यानी पहला सेगमेंट जो है सिनेमा दिल से, उसका विषय है 1, 2, 3, 4 फिल्म और कलाकार। जी हाँ, 1, 2, 3, 4 फिल्म और कलाकार आज आपको हम मौका देंगे ऑन एयर भाग लेने के लिए। हमारे प्रश्नों का जवाब आप ऑन एयर देंगे ताकि पूरे मॉरिशस भर आपकी आवाज सुने। और बड़ा ही आसान सा प्रश्न होगा, जो जो सवाल हम करेंगे उन सितारों पर करेंगे जिनका जन्मदिवस या जिनकी बरसी अक्टूबर महीने में है, और अभी तो हम अक्टूबर महीने की शुरुआत में हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा प्रश्न, और पहला गाना हम चलाएंगे फिल्म संजोग का। तो फिल्म संजोग के अलावा अमिताभ बच्चन जी का की और 4 फिल्में बताइए। 1, 2, 3, 4 यानी अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में आपको बताना पड़ेगा संजोग फिल्म को छोड़कर। और ये गाना हम चलाएंगे क्योंकि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का जन्मदिवस है, और ये जो गाना है किशोर दा ने गाया था, और ये गाना जो है और किशोर दा की बरसी है 13 अक्टूबर को। तो चलिए, पहला गाना हम एक मोटिवेशनल सॉन्ग आपके लिए चलाएंगे, ये हौसला फिल्म दौर से लिया गया। तब तक हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। 4028085 पर फ़ोन करके हमें बताइए कि अमिताभ बच्चन जी के 4 फिल्मों के नाम। 4028085।

0: चलिए हम सुनते हैं कि कौन से श्रोता है लाइन पर, लेकिन उनको सुनने से पहले हम आपको बता दें कि आत्मा जी ने फ़ोन किया ट्रूडोडू से, अली साहब ने लिस्कालिया से फ़ोन किया, शोभा जी ने बकवा से फ़ोन किया, बॉम्बू से ज्योति जी ने फ़ोन किया और सभी ने सही जवाब दिए, चार फिल्मों के नाम बताए अमिताभ बच्चन जी के। चलिए हम पाँचवा श्रोता से बात करेंगे ऑन ए। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते श्यामा जी, आपका पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: आप ठीक हैं?
0: जी हाँ ठीक हूँ, और आप भी तो ठीक होंगी।
1: हाँ।
0: चलिए आप फटाफट बता दीजिए हमारे श्रोताओं की को कि कौन सी चार फिल्में हैं जो अमिताभ बच्चन जी के, जो चार फिल्में हैं जो आपके दिमाग में हैं अभी, बताइए हमें।
1: कभी कभी।
0: कभी कभी बिल्कुल।
1: जंजीर।
0: अच्छा।
1: सत्य पे सत्ता।
0: अच्छा।
1: और जमीर।
0: अरे वाह, जमीर, जंजीर, सत्य पे सत्ता, और आपने और एक फिल्म कहा ना,
1: कभी कभी।
0: कभी कभी। क्या बात है शमा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और ऐसे आप भाग लेती रहें। ओके
1: ओके, ओके
0: धन्यवाद।
1: ओके।
0: तो ये थी शमा जी फ्रॉम अ विल में, और उन्होंने सही सही जवाब दिया। और अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिवस अगस्त महीने में नहीं बल्कि अक्टूबर महीने के 11 तारीख को है, और किशोर दा की बरसी 13 तारीख को। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके लिए हम चलाते हैं। रेखा जी का जन्मदिवस 10 अक्टूबर को है, आप हमें रेखा जी के चार फिल्मों के नाम बताइए। चार फिल्मों के नाम रेखा जी को के लिए आपको हमें बताना पड़ेगा 402-8085 पर। और अभी के लिए रूप ये तेरा जिसने बनाया वो अमिताभ बच्चन जी का गाना फिल्म संजोग से लिया गया किशोर दा की आवाज में।
2: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: जी हाँ, संजोग फिल्म से ले लिया गया रोमांटिक सॉन्ग किशोर दा की आवाज में। और हमने आपसे अभी पूछा था कि रेखा जी का जन्मदिन दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को है, आपको चार फिल्मों के नाम बताने थे और जवाब दिया ज्योति जी बॉम्बू से, हाइलैंड्स जी देवी जी हाइलैंड्स से, अनीता जी मौदाबेया से और आशा जी जो अभी ऑन एयर है उन्होंने कॉटेज से जवाब दिया। चलिए हम उनको सुनते हैं। हेलो आशा जी।
1: हेलो, नमस्ते दर्शन जी।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: बस जो आज सब का सबकी परेशानी है, मेरी भी परेशानी हुई है, खांसी है।
0: हाँ, थोड़ी खांसी आ गई है आपको
1: जी।
0: तो आप सावधानी बरतिएगा।
1: हाँ,
0: और गर्म जगहों में रहिएगा, गर्म पानी भी पिएगा। आशा जी, सभी लोग जानना चाहते हैं कि चार फिल्में जो आप बेहद पसंद करती हैं रेखा जी के, प्लीज आप बताइए उन्हें।
1: वैसे तो अनेकों फिल्में हैं पर जो मेरी पसंद की है वो ये है, सिलसिला में किया कमाल, नटवरलाल में किया धमाल, खून भरी मांग में अदा निराली, गीतांजलि में लगी थी प्यारी।
0: अरे वाह, क्या कविता आपने झाड़ी है, वाह। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आपके जो जवाब है वो आप एक कविता में ढाल देंगी। वाह, बहुत बढ़िया आशा जी, और आपकी जो क्रिएटिविटी है बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद आपको, ऐसे ही आप जवाब देती रहें। ओके,
1: थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद, बाय।
1: सभी को
0: शुभ संध्या, बाय। तो आशा जी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया एक कविता के रूप में। और चलिए हम आपके लिए रेखा जी का जो गाना है अगर तुम न होते फिल्म से लिया गया वो गाना चलाएंगे जो खास है, और वो गाना उन्होंने अपनी आवाज़ में गाया था और शैलेंद्र सिंह जी के साथ उन्होंने गाया था। ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि विनोद खन्ना जो है, जो स्वर्गीय विनोद खन्ना जी हैं, उनका जन्मदिवस भी अक्टूबर महीने में ही है। और एक आवाज़ है कुमार सानू जी, उनका भी जन्मदिवस अक्टूबर महीने में है। और जब कुमार सानू जी विनोद खन्ना जी के लिए गाते हैं तो ये गाना चल पड़ा आपके लिए, और आपको बताना पड़ेगा हमें चार फिल्मों के नाम जिसमें विनोद खन्ना जी ने काम किया था। चार फिल्मों के नाम जिसमें विनोद खन्ना जी ने काम किया था। अभी के लिए रेखा जी का ये गाना।

0: रेखा जी और शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ों में फिल्म अगर तुम न होते से लिया गया ये बहुत ही सुंदर सा गाना। और कल सचमुच संडे की छुट्टी है क्योंकि आज शनिवार है। और हमने सवाल किया था कि विनोद खन्ना जी के चार फिल्मों के नाम आपको बताने पड़ेंगे 4028085 पर। और यहाँ पर कौन उपस्थित है, चलिए हम उनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, आदाब अली भाई।
1: आदाब, कैसे आप?
0: मैं ठीक हूँ अली भाई, और आप भी ठीक होंगे, है ना?
1: मैं तो बिल्कुल। वहाँ का माहौल कैसे चल रहा है?
0: यहाँ का माहौल अभी बारिश का मौसम है एमबीसी में।
1: कभी धूप कभी छांव।
0: हाँ, कभी धूप कभी छांव, चाहे वो शहर हो या गांव। चलिए अली साहब, सब लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि अली साहब के चार फिल्म जो हैं जो उनको बेहद प्रिय है विनोद खन्ना जी की।
1: बेताब है?
0: हाँ जी, मैं भी बेताब हूँ बिल्कुल।
1: सुनो, मैं कुर्बानी,
0: कुर्बानी बहुत ही सुंदर फिल्म। हाँ,
1: मेम साहब,
0: मेम साहब, हाँ,
1: धमकी,
0: धमकी, क्या बात,
1: दो यार,
0: दो यार, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी थे और विनोद खन्ना जी, क्या बात है। और आपका जवाब भी एकदम सही, एकदम एकदम सही आपका जवाब भी। और फिर मुलाकात होगी हमारी। ओके, बाय बाय बाय। तो अली साहब ने सही जवाब दिया। और चलिए हम विनोद खन्ना जी का गाना चलाएंगे जो कुमार सानू जी ने गाया था, और दोनों के जन्मदिवस अक्टूबर महीने में ही है। जुर्म फिल्म का गाना। और आपको हमें बताने पड़ेंगे कि सनी देओल, जी हाँ, सनी देओल साहब और रविनाथ टंडन जी दोनों के जो जन्मदिवस है अक्टूबर महीने में ही है, तो आप हमें सनी देओल जी के चार फिल्मों के नाम बताइए प्लीज। 4028085 पर जरा ध्यान से सुने, सनी देओल साहब के चार फिल्मों के नाम बताइए। 1, 2, 3, 4 फिल्म और कलाकार।

0: जाए। बिल्कुल, जब कोई बात बिगड़ जाए तो हम आपका साथ यहाँ पर रेडियो पर अवश्य देंगे। और हमने सवाल किया था कि वो कौन से चार फिल्में हैं जिनमें सनी देओल जी नजर आए थे, और सही जवाब दिया, चार चार फिल्मों के नाम बताए, अली साहब, ज्योति जी बॉम्बू से, देवी जी हाईलैंड से, शोभा जी बाकवा से, हरीश भाई बोबासे से, श्यामा जी विलमे से, अनीता जी मौदालबेयर से और इंदिरा जी मौदालबेयर से ही। और उनको हम ऑन एयर सुनते हैं अभी। हेलो,
1: नमस्ते रूपन
0: नमस्ते इंदिरा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।
1: जी। थैंक यू वेरी मच।
0: चलिए चलिए,
1: थैंक
0: बताइए चार फिल्मों के नाम जिसमें सनी देओल ने काम किया था, बताइए उन फिल्मों के
1: यू।
0: नाम।
1: वो है बेटा
0: बेताब,
1: बेटा,
0: बेताब, हाँ
1: यतीम
0: हाँ यतीम,
1: नागेंगे,
0: हाँ
1: दामिनी।
0: बिल्कुल, निगाहें, दामिनी, यतीम और बेताब।
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: आपका आपके जो जवाब है एकदम सही।

0: बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, धन्यवाद आपको, ओके
1: ओके बाय बाय।
0: तो चलिए सनी देओल साहब और रविनाथ टंडन जी दोनों के जन्म दिवस है अक्टूबर महीने में, और उनका गाना हम चलाएंगे अभी, जिद्द फिल्म से लिया गया। और एक अंतिम सवाल आपके लिए, हेमा मालिनी जी का जन्म दिवस भी अक्टूबर महीने में ही है, तो आपको क्या करना है, केवल 5 फिल्मों के नाम बताने पड़ेंगे आपको, जिन फिल्मों में हेमा मालिनी जी नजर आई थी। 4028085, तब तक जिद्द फिल्म का ये गाना।

सचमुच हम आपसे कुछ क्या कह पाएंगे जब आप इतने सही सही जवाब देंगे तो। और हमने आपसे सवाल किया था कि सनी देओल साहब के चार चार फिल्में, सनी देओल नहीं बल्कि हेमा मालिनी जी के चार फिल्मों के नाम आपको बताने थे, और सही जवाब दिया आशा जी कॉटेज से, नालिनी जी कट्रोबोन से, माला जी सेंचुबेयर से, माला जी मापू से, और तीसरी माला जी वाकवा से। इतनी मालाएं। चलिए हम तीसरी माला जी को सुनते हैं।

0: है वाकवा से वो सही जवाब आप सभी लोगों को बताएंगी। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते माला जी फ्रॉम वाकवा, कैसी हैं आप?
1: अच्छे हो? और आप कैसे
0: हम
1: हैं?
0: भी ठीक हैं जी, बहुत धन्यवाद, आप हाल पूछ रहे हैं हमारा।
1: जी, पूछना चाहिए।
0: हाँ जी बिल्कुल, आप तो इस प्रोग्राम को बेहद पसंद करती हैं ना।
1: जी हाँ, बहुत पसंद,
0: ओके,
1: इंतजार करते हैं
0: इंतज़ार करती
1: हर
0: हैं।
1: शनिवार को।
0: हाँ जी बिल्कुल, हर शनिवार। चलिए
1: जी
0: महाराज जी, आपकी मधुर आवाज़ में बताइए उन चार फिल्मों के नाम हेमा मालिनी जी के।
1: सपनों का सौदागर,
0: हाँ जी, पहली फिल्म थी उनकी।
1: जी हाँ,
0: अच्छा, और
1: और आसपास,
0: आसपास, धर्मेंद्र साहब के साथ।
1: जी
0: हाँ
1: हाँ, सीता और गीता,
0: हाँ सीता और गीता जी, और
1: बागबान,
0: बागबान। क्या बात है,
1: और
0: बहुत ही बढ़िया,
1: देश प्रेमी।
0: देश प्रेमी, हम जानते हैं कि आप
1: और
0: देश प्रेमी
1: बागबान
0: हैं।
1: मुझे बहुत अच्छी लगी
0: हाँ जी, अमिताभ
1: फिल्म।
0: बच्चन जी के
1: जी
0: साथ।
1: हाँ,
0: हाँ जी, बहुत धन्यवाद
1: बहुत
0: माला
1: अच्छी फिल्म है।
0: जी। ओके
1: नमस्ते।
0: बाय। हाउ डू यू डू, जी हाँ, हेमा मालिनी जी पर फिल्म सत्ते पे सत्ता, फिल्म का गाना भी चल रहा है आप लोगों के लिए। थोड़ी देर में हम खेल खिलाड़ी प्रोग्राम का दूसरा भाग आपके लिए लाएंगे, जो है मेरा सवाल तेरा कमाल।
2: How do you do?
3: How do you do?
2: I love you.
3: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।
0: आई लव यू क्यों, अभी आई लाइक यू कहना चाहिए था सुधीर भाई को। पांच बजकर 33 मिनट हो गए हैं और आपके लिए प्रोग्राम खेल खिलाड़ी।
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
5: खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी खिलाड़ी

जी हाँ, खेल खिलाड़ी, जहाँ पर एक निराला खेल हो रहा है और आप लोग जवाब देकर बन रहे हैं खिलाड़ी। और इस खेल खिलाड़ी प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट मेरा सवाल तेरा कमाल, जहाँ पर हम एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, आपको चार जवाब देने पड़ेंगे इस सेगमेंट में भी। इस बार 1 2 3 4 आर या पार, यानी आपको या तो सही जवाब मालूम होगा या फिर गलत जवाब। इसे कहते हैं आर या पार। और हम शुरुआत करेंगे फुटबॉल के साथ, और इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो आपको पता है मैनचेस्टर सिटी इज इन द फर्स्ट प्लेस, दूसरे स्थान पर आर्सेनल, छठे स्थान पर लिवरपूल, 12वें स्थान पर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और नेशंस लीग, यहां पर तो जोर शोर से मैच हो रहा है, जहां पर नॉर्वे की हार हुई पोर्टुगल के खिलाफ, इटली की जीत हो गई, फ्रांस ने बेल्जियम को हरा दिया, और माइकल ओलिसे का गोल और जिदान का जो प्रदर्शन रहा, अभी तक वो खेलने के लायक है जिनेडिन जिदान। तो चलिए, अगर हमने फुटबॉल की बात की है तो आपको ऑन एयर जवाब देना पड़ेगा अभी 4028085 पर, कि आपको हमें बताने पड़ेंगे चार टीम्स के नाम, इंग्लिश टीम्स के नाम, जिनके हक में सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग ट्रॉफीज़ है, यानी इंग्लिश चैंपियनशिप्स, जो इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा बार उन्होंने चैंपियनशिप जीता है, यानी चैंपियंस बने हैं, जो चार टीम हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज जीते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में। 4028085 4028845 4085 पर प्लीज़ आप लोग जवाब दें।

0: जी हाँ, अखियाँ मिलाए कभी अखियाँ छुड़ाए, माधुरी दीक्षित का डांस, डांसिंग स्टाइल, वाह क्या बात। और हमने सवाल किया था कि वो कौन सी चार टीम्स हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ जीते हैं इंग्लिश चैंपियनशिप्स में, और सही जवाब दिया आत्मा जी टूरेदू से, इंदिरा जी मोदालबिया से, ईश्वर लाल भाई यगव्य चौपा से, और दिला भाई मौलाशो से। अभी दिला भाई ऑन एयर है, चलिए हम उनको सुनते हैं। दिला भाई नमस्ते।
1: जी नमस्ते, सब सुटालो के नमस्ते।
0: नमस्ते दिला भाई, कैसे हैं आप?
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया बा।
0: बहुत बढ़िया है, अच्छा
1: झकास बा।
0: झकास, एकदम झकास, क्या बात है। आप भी
1: और बहुत गरम है
0: और आप भी बहुत है खास, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: सब छोटा लोग।
0: हाँ जी बोलिए, हाँ। आप कहिए हमें, आपका जवाब दीजिए प्लीज दिया भाई, कौन से वो चार टीम्स हैं बताइए।
1: जो लिवरपूल है, मैं एक फैन हूँ।
0: ओह
1: 55 years।
0: ओह
1: 55 से जस्ती है, पर हमारा मिलाज साउथ नेवा में जाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, लेकिन इतनी तो दिखते नहीं आवाज से क्या बात है।
1: लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी।
0: क्या बात है
1: जी, जी।
0: आपके लिए तालियों की गूंज
1: मैं एक बड़ा फैन हूँ
0: लिवरपूल के,
1: मैं सब मैच देखता हूँ, नहीं लिवरपूल खाली नहीं, सब मैच देखता हूँ।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही आप भाग लेते रहें और फुटबॉल देखते रहें और बहुत सारे व्यायाम भी करें। ओके भाई, नमस्ते भाई।
1: ये जो फुटबॉल है ना,
0: हाँ
1: ये जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल इज म्यूजिक ऑफ द लव।
0: ओह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि म्यूजिक इज फूड ऑफ लव, वैसे आपने कहा फुटबॉल इज द फूड ऑफ म्यूजिक एंड लव, क्या बात है।
1: जाने लगे गुजाफे, हम रिसर्च करीला और स्वीव करीला, ले मोन के फुटबॉल स्वीव करीला, तो जब एगो मैच फुटबॉल देख बात है, तेनी स्ट्रेस डिमिनिया हो जाला ना।
0: हाँ सच्चे के, परंतु अगर
1: जितना आदमी जब हंसेला, हल्ला करेला, तो स्ट्रेस वा जिमिनिया होता।
0: परंतु जब लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलते हैं तो बहुत लोगों के स्ट्रेस भर जाते हैं
1: ले मोन के अति लोग वातान करेला मचवा।
0: हाँ बहुत अच्छा,
1: समझ लो।
0: ओके भाई,
1: जन एगो है अंग्रेज जन बने ले बागो, बहुत बढ़िया चीज बना दे ले बा,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: बहुत बढ़िया चीज बना दे ले बा, चाहे ना सापो करे के।
0: बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही फरमाया, धन्यवाद आपको दिला भाई।
1: सब छोटा लोग के नमस्ते, सब छोटा लोग के नमस्ते। तोरो एगो जने जन प्रोग्राम करता चाहला सापो निकाले के, अरे बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद आपको, धन्यवाद। टन टन टन टन टन टारा

चलिए, चार टीमों के नाम आप तो बता दिए आपने, तो अब हमें बताइए चार सीजन्स के नाम। मॉरिशस में केवल दो सीजन्स हैं, दो मौसम हैं, लेकिन आप हमें बताइए चार मौसम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खासकर होते हैं, बताइए हमें उन चार सीजन्स के नाम। 4028085402 9085 पर जल्दी जल्दी हमें बताइए, नेम द फोर सीजन्स।

0: चलिए, हमने आपसे सवाल किया था कि चार मौसम के नाम, द फोर सीजन्स, और हमारे साथ अभी अनीता जी है मालेगा सैपिया से। हेलो अनीता जी।
1: हेलो,
0: नमस्ते अनीता जी।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं जी। और पहली बार इस प्रोग्राम में आप भाग ले रही हैं ना?
1: जी, पहली बार लाइन मिली, पहली बार ट्राई किया।
0: और आपको कैसे लगता है ये प्रोग्राम?
1: प्रोग्राम बहुत नाइस है, अच्छा है।
0: धन्यवाद आपको। चलिए, आप हमें जवाब फटाफट दीजिए प्लीज।
1: फर्स्ट सीजन है विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग।
0: जी बिल्कुल, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, है ना?
1: बहार जी,
0: बिल्कुल, और आपने सही सही जवाब दिया। धन्यवाद आपको, फिर से मुलाकात होगी। बाय
1: बाय
0: बाय।

खेल खिलाड़ी 1 2 3 4 आर या पार। चलिए मौसम से निकलकर हम सीधे मैथमेटिक्स की ओर बढ़ेंगे, गणित विज्ञान। और आप हमें बताइए उन 4 फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जो हम बचपन से सीखते हैं और रोजमर्रा जीवन में उसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ खरीदते हैं तो उसका हम उपयोग करते हैं, कितने पैसे हमें चुकाना है, कितने पैसे बचे हैं, तो उन 4 मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस के नाम हमें बताइए जो हमें सिखाता है कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे विभाजित किया जाता है। 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 4 0 2 8 0 8 5। कहीं ये प्रश्न आपकी नींद न चुरा लें।

0: जी हाँ, नींद चुराने ले ये प्रश्न आपकी। हेलो हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार हरीश भाई,
1: नमस्कार भाई
0: बुबासे
1: रोशन,
0: कैसे हैं आप?
1: हरीश बुबासे से।
0: जी हाँ हरीश भाई, ठीक है आप? चले आते हैं जब मैथमेटिक्स पर हम प्रश्न पूछते हैं तो।
1: आई एम एंजॉयिंग द गेम।
0: ओके, वेरी गुड। चलिए हरीश भाई, बताइए क्या जवाब है आपकी ओर से?
1: एडिशन,
0: एडिशन या
1: सब्ट्रैक्शन,
0: सब्ट्रैक्शन,
1: डिवीजन
0: डिवीजन
1: एंड मल्टीप्लीकेशन।
0: मल्टीप्लीकेशन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आप भाग लेते रहें, धन्यवाद आपको। ओके, बाय बाय,
1: थैंक यू, बाय
0: बाय। चलिए, मैथमेटिक्स पर सवाल हो गया तो क्यों ना हम एक बार भूगोल की ओर नजर डालें, ज्योग्राफी। और हमें आप जल्दी जल्दी बताइए 4028085 पर कि वो कौन से चार देश हैं जो सबसे बड़े हैं। गिव मी द फोर लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो चार सबसे बड़े देश हैं एरिया वाइज, जब आप एरिया की बात कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन की नहीं एरिया की बात कर रहे हैं, इन साइज। 4028085 व्हाट आर द फोर लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, और अगर आप जवाब जान जाएंगे तो जस्ट इट्स मैजिक।

0: सब खेल हैं और यहाँ पर है खेल खिलाड़ी, जहाँ पर एक बहुत ही निराला सा खेल और आप जवाब देकर बनते हैं खिलाड़ी। जैसे कि अगला खिलाड़ी आया है, चलिए हम उनसे मिलते हैं। हेलो,
1: नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते शोभा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। इस प्रोग्राम का बहुत आनंद उठा रही हैं ना आप?
1: जी हाँ, एकदम बढ़िया,
0: एकदम बढ़िया, क्योंकि आज विषय ही कुछ और है।
1: हाँ
0: चलिए, 1 2 3 4 आर या पार, देखते हैं कि आप इस आपका बेरा पार होगा या नहीं। द फोर लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बताइए हमें।
1: रशिया,
0: रशिया या
1: कनाडा,
0: यस,
1: चाइना,
0: चाइना, ओके,
1: यूएसए,
0: यूएसए, हाँ,
1: और ब्राजील।
0: मैंने तो केवल 4 कहा था, आपने तो 5 बता दिया। 4 से भले 5, क्या बात है शोभा जी, आपका जवाब एकदम सही, एकदम सही। धन्यवाद आपको, बाय।
1: धन्यवाद आपको और शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि जी। हाँ, शोभा जी ने बहुत ही सही जवाब दिया। जो सबसे बड़े देश हैं, पहले तो यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जब उनका विभाजन हुआ 1991 में, तब रशिया सबसे बड़ा देश बना और रशिया भी यूएसएसआर का एक भाग था। अब रशिया सबसे बड़ा देश है, उसके उपरांत आता है कनाडा और तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देन चाइना एंड फिफ्थ प्लेस इज ब्राज़ील। इट्स मैजिक, यस। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का बहुत ही मज़ेदार खेल 1 2 3 4 आर या पार, और आपका हुआ बेरा पार और ईश्वर का की है लीला अपरंपार। और हम आपके लिए यहाँ पर आएंगे बार बार और प्रश्नों के साथ, आपका हम करेंगे सुखी संसार। लेकिन भूलिएगा मत कि आपको हमेशा क्या करना है, व्यायाम करते रहना है, खान पान पर नजर डालें, खुश रहें, लोगों को बेखुश रखें, तनाव से दूर, और संगीत और पढ़ाई और स्पोर्ट्स के प्रति झुकाव और लगाव। इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। जिन लोगों ने भाग लिया बहुत ही धन्यवाद, जिन लोगों ने भाग नहीं लिया उन्होंने आनंद उठाया इस प्रोग्राम का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जुड़े रहें, चाहे वो रेडियो मस्ती हो, रेडियो मनोरंजन हो या फिर रेडियो मॉरिशस हो, रेडियो MBC रेडियो के साथ आप ऐसे ही वफादारी निभाते रहें। मिलते रहेंगे हम, हमारा साथ आप अवश्य दीजिए, क्योंकि यू आर द बेस्ट, क्यों नहीं। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आपको, बाय।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार रादान, 3 अक्टूबर 2026 की शाम है, 6 बजे है। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने मोहवाको में जल स्तर पर चेतावनी जारी की है। कल सिर्फ 36.6% पानी भरा था। आमतौर पर मोहवाको लामारी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ रोजाना 110 क्यूबिक मीटर पानी की सप्लाई करता है, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर नई पाबंदी। कंसेंट्रिक्स और उसके पूर्व कर्मचारियों के बीच आखिरकार एक समझौते पर रजामंदी। एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है। बैंक ऑफ मॉरीशस देश में जाली नोटों के इस्तेमाल के सिलसिले में चेतावनी जारी कर रहा है। बैंक ने पैसों के नोटों की ऑथेंटिसिटी का निरीक्षण करने और जनता से किसी भी तरह के शक की मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करने की मांग की। और विदेश में G7 नेताओं ने 100 मिलियन पेट्रोल और डीजल के बैरल्स जारी करने का किया ऐलान। नमस्कार और आदाब। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने मोहवाको में जल स्तर पर चेतावनी जारी की। कल सिर्फ 36.6% पानी भरा था। आमतौर पर मोहवाको लामारी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ रोजाना 110 क्यूबिक मीटर पानी की सप्लाई करता है। आज जलाशय 71,000 क्यूबिक मीटर की आपूर्ति करता है। CWA पानी का जिम्मेदाराना संचालन और इस्तेमाल करने की मांग करता है। जरूरत पड़ने पर नई पाबंदियां जारी की जाएंगी। एक इमरजेंसी प्लान पर काम किया जा रहा है। जूना तेरेविजे में CWA से शाम तानू स्टूडियो में आज लाइव होंगे। कई हफ्तों के बातचीत सत्रों के बाद कंसेंट्रिक्स ने 300 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए एक समझौते पर सहमति जताई। कंसेंट्रिक्स के बंद होने से BPO सेक्टर के भविष्य पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी फिलहाल नई चुनौतियों के मद्देनजर सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बैंक ऑफ मॉरीशस देश में जाली नोटों के इस्तेमाल के सिलसिले में चेतावनी जारी कर रहा है। कागज के नोटों का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने पैसे के

0: नोटों की ऑथेंटिसिटी का निरीक्षण करने और अवाम से किसी भी तरह के शक की मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करने की मांग की है। समुदाय में नौजवानों को कटिबद्ध नागरिक और राजदूत बनाना ये और दूत बनाना ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के मकसदों में से एक है। प्रधानमंत्री दफ्तर की पहल पर ग्रेड 8 के 200 छात्र 2 हफ्तों के दौरान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे और आज जोन 1 में कैलबास स्थित रूपनाथ रामफल कॉलेज में माता पिता के लिए एक पहला सत्र लगाया गया।
1: कुछ अभिभावक पहले से ही अपने बच्चों के लिए प्रस्तावित इस अनुभव को लेकर आश्वस्त हैं। करीब 50 अभिभावक कैलबास स्थित रूपनाथ रामफल कॉलेज में एकत्र हुए। ये बैठक नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम के बारे में आयोजित पहले सूचना सत्र के लिए थी। ये उनके लिए ये जानने का अवसर था कि अगले नवंबर महीने में उनके बच्चों के लिए क्या क्या गतिविधियां और अनुभव निर्धारित किए गए हैं। 16 से 20 नवंबर तक प्रतिभागी 4 प्रशिक्षण केंद्रों में सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वे देश के दक्षिण हिस्से में कार्यक्रम के रेजिडेंशियल चरण की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में खेल गतिविधियां, शारीरिक व्यायाम, जल संबंधी गतिविधियां साथ ही व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित अभ्यास भी शामिल होंगे। ओहोला क्रश कहती है, ये एक मानसिक तैयारी है जिसे अभी से शुरू करना जरूरी होगा। बच्चे आत्मनिर्भर बनना सीखेंगे। अच्छी बात यह है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाएगा। उनके साथ टीम लीडर भी होंगे। इस दौरान बच्चे अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगे और अपने व्यक्तित्व में सुधार लाएंगे। नरसिंह जयदेव कहते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उनका मार्गदर्शन अच्छे से हो रहा है। मुझे याद है मैं जब 6 कक्षा में थी तब औसलागे में कैंपिंग पर गया था। अभी तक वो पल मुझे याद है। मेरी बेटी भी खुश होगी। फिदुली लोधारी कहती है, मेरा बेटा इसमें भाग ले सका है। ये मात्र 2 या 3 सप्ताह की एक शिक्षा नहीं, जीवन भर ये बच्चों के हित के लिए है। इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे का व्यक्तिगत विकास होगा। कुल मिलाकर ग्रेड 8 के 200 युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य उनमें जिम्मेदारी की भावना, सामुदायिक भावना और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करना है। निरंजन बीगन कहते हैं, इन नौजवानों में स्कूली एम्बेसडर स्कूल के चैंपियन की झलक है। दूसरों को ये प्रेरित कर सकते हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसके द्वारा कल भविष्य में ये बच्चे सही कदम उठाने में सक्षम होंगे, अच्छे निर्णय ले सकेंगे, समाज की ओर एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे। कैलबास के बाद अगले कुछ हफ्तों में 3 अन्य जोन के अभिभावकों के लिए 3 और सूचना सत्र आयोजित किए जाएंगे। नवंबर महीने में शुरू होने वाले कार्यक्रम की ये तैयारी की एक प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम में 200 युवाओं को सीखने, अपनी क्षमताओं को चुनौती देने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वे अपने समुदाय में अपनी जगह बनाने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे।
0: आज प्रेस को संबोधित करते हुए फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट FMP के लीडर पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद की, खासतौर पर जिंदगी की महंगाई, रुपए मुद्रा का घटता भाव और पिछोली पैदावारों की कीमतों पर। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर भी बात की, जिनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नेशनल क्राइम एजेंसी का क्याम शामिल रहा। किशन सिंह की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: प्रेस के समक्ष पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति और जीवन लागत पर बात की। फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के लीडर ने जनवरी से अगस्त 2026 के बीच रुपए के भाव में 4% की गिरावट का उल्लेख किया। ईंधन के हालिया वृद्धि के संबंध में उनका मानना है कि जनता के बेहतर रक्षा के वास्ते हालिया बजट में कुछ फैसलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था।
3: L'essence et diesel. Toute qualité taxe que tu es capable diminuer ou même retirer. Tellement, nous bien guette les choses en face. Si diminuer ou retirer sa manne taxe-là, l'y affecter déficit budgétaire du gouvernement et la dette publique aussi. Mais un garde ça en tête. C'est pourquoi sa question-là n'est-il considéré dans cadre budget.
2: चर्चा के अन्य मुद्दों में भावी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का तरीका और नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना शामिल हैं। पॉल बेरांजे ने जिसके खिलाफ अपनी

0: स्थिति दोहराई। इसकी जगह पर वे एक नेशनल पुलिस सर्विस की स्थापना का प्रस्ताव रख रहे हैं जो पुलिस कमिश्नर की भूमिका को मजबूत कर सके।
1: जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया। 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने 2025-2026 की रिपोर्ट आम की। करीब 200 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में कई ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों के हक और शिशुओं के अधिकारों के सिलसिले में हैं। ओम्बुड्स पर्सन अनिता गुरा की इच्छा है कि सभी सिफारिशों को अमल में लाया जाए। सिंसिया मुटू करुणा लालू।
0: जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के दफ्तर में कुल 363 मामले दर्ज किए गए जिनमें से 6 रोड्रिक से हैं। 167 मामले स्कूल से जुड़ी समस्याओं के हैं जिनमें बुलिंग भी शामिल हैं। 63 मामले पारिवारिक समस्याओं से संबंधित हैं जबकि 11 दिव्यांग बच्चों से जुड़े। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने व्यवहार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे युवाओं का भी जिक्र किया। अनिता घोरा ने कहा, वे बच्चे जिन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, खासकर शेल्टर में और जिन्हें ब्राउन सिक्वाड में भी डाला गया है, उनके लिए उचित ढांचा चाहिए। सड़कों पर अभावग्रस्त बच्चों के साथ काम करने वालों ने आगे आकर बताया कि वे किस तरह के ढांचे चाहते हैं। ओम्बुड्स पर्सन के मुताबिक विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए उचित देख रेख की व्यवस्था आवश्यक है। खास ज़रूरत वाले 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए कानून में खामी है। उन्हें पता नहीं किधर जाएंगे। 3 साल से कम उम्र के लिए CCA हैं, 5 से अधिक साल के लिए सेना, लेकिन 3 से 5 साल के लिए पता नहीं कहाँ जाएंगे। अगले वर्ष के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। साइबर हरासमेंट है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं जहाँ युवा इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। ओम्बुड्स पर्सन दफ्तर चाहता है कि मंत्रालयों और अन्य संस्थानों द्वारा उसकी सिफारिशों को अमल में लाया जाए।
1: सन 2019 से होल्डम सेंस स्कूल खास शिक्षा की ज़रूरत पड़ने वाले बच्चों का समर्थन करता है। कैथोबोन में 2 ऐसी संस्थाएं करीब 100 बच्चों का स्वागत करती हैं और पेसाक से वोकेशनल ट्रेनिंग तक बच्चों का साथ देती हैं। और अब विदेश की खबरें। कीव यूक्रेन में रूस ने एक बड़े पुल पर हमला किया। ये सबसे गंभीर मूलढांचा हमलों में से एक है। आज सुबह सवेरे इस घटना के कारण पुल पर बहुत ट्रैफिक पैदा हो गया। शहर के मेयर ने कहा कि इन हमलों से कीव नष्ट होता जा रहा है। और इसी के साथ पेश हैं कुछ दूसरी खबरें विधि मासीबुरन की रिपोर्ट में।
2: आसमान छूती गैस की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उठाए गए हालिया कदम के तहत G7 के सदस्य देशों ने शुक्रवार को करोड़ों बैरल डीजल ईंधन और कच्चे तेल को जारी करने पर सहमति जताई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों द्वारा आयोजित G7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप ने अभी भी अपनी भारी मात्रा में स्टॉक किए गए डीजल तेल को जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ये प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। G7 के रणनीतिक भंडारों से 100 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल और डीजल की आपूर्ति जारी करने की घोषणा के बाद कच्चे तेल और गैसोलीन की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कमजोर अमरीकी डॉलर और अमरीका तथा ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही वार्ताओं के गतिरोध में फंसे रहने के कारण कच्चे तेल के नुकसान सीमित रहे, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से फिर से नहीं खुल पाया है और वैश्विक तेल आपूर्ति तंग बनी हुई है। एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रतीत होते प्रयास में अपने को पायलट द्वारा चाकुओं से हमला किए गए भारतीय फ्लाई दुबई पायलट ने पहली बार अपनी इस विभत्स आपबीती के बारे में बात की है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छर किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। इसकी वजह से अन्य यात्री कॉकपिट में प्रवेश कर पाए और सह पायलट को काबू में कर सके, जबकि एक अन्य यात्रा कर रहे पायलट ने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अबूधाबी के अपने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो कॉल के जरिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए स्मिथ मच्छर ने कहा,

0: हाँ, मुझे कई घाव हो चुके थे, मैं गिर गया था, मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं नहीं उठा तो यात्रियों की जान चली जाएगी।
1: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं और मस्केरेंस के दक्षिण से दूर एक आंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात बादल घिराएंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो तथा ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। आज देर रात मौसम में सुधार होगा। कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान दक्षिण पूर्व में बादल घिराएंगे और रह रहकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची नहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 5:49 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:08 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। सुजी स्ट्रीट वाले पीटो में 75 साल के 75 years old जनाब बशीर अहमद रजब अली, जनाब बशीर अहमद रजब अली जुबाई बशीर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 7:30 बजे इनके बेटे नदीम रजब अली के घर BK A01 सुजी स्ट्रीट वाले पीटो से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे At 7:30 PM Ali Jacques Road, Nouvelle France, में 78 साल के 78 years old श्री लक्ष्मी प्रसाद अलहुदा, श्री लक्ष्मी प्रसाद अलहुदा जो दानीलाल गुरुजी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके बेटे अमृत सिंह प्रसाद अलहुदा के घर अलीशाक रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोजबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM रामकिशुन लेन जेबिया रोड गोजबल में 77 साल की 77 years old श्रीमती सांता कुमारी जिलोल जो तारा के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनकी बेटी सुबाहा रोशनी के घर रामकिशुन लेन जेबिया रोड गोजबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM एवेन्यू डालिया बुआपिनो डी टेरूज में 84 साल की 84 years old श्रीमती सरोजिनी रंगासामी जो मैडम पायासावो के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके घर एवेन्यू डालिया बुआपिनो डी टेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दी प्रेत्र की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM ओलेगुद नंबर एक वाकुआ में 71 साल की 71 years old श्रीमती देविका सिबुरत पैदाशी नाम सुचित जो सुदेवी के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर ओलेगुद नंबर एक वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM ऋषि दयानंद रोड रिविया दे क्रेओल में 72 साल की 72 years old श्रीमती कमला देवी मोंगरा पैदाइशी नाम बंधन जो शिवरानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके पोते मोंगरा कृतिश कुमार के घर ऋषि दयानंद रोड रिविया दे क्रेओल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोवालों की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM लिबिया टू वाकुआ में 75 साल के 75 years old

श्री महादेव बापू जो बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थे कल साढ़े बारह बजे इनके घर लीबियातो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेहिनों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। रॉयल रुद पिटी गाफ्रे में 84 साल की 84 years old श्रीमती सत्यावती बंधु पैदाइशी नाम बारन, जो सत्यावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल एक बजे इनके घर रॉयल रुद पिटी गाफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिटी गाफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शिमलागा नोत्रदाम में 38 साल के 38 years old श्री बिनेश कुमार बसावन जो बेंजोले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल साढ़े नौ बजे इनकी माँ बिदेसी माला के घर शिमलागा नोत्रदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 PM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी हैं।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: रेडियो मार्शल्स पर लाइव प्रसारण जारी है. आइए अभी के लिए सुनते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से. हाईलैंड्स के रहने वालों को खासकर रेलवे रोड, फ्लामिंगो रोड के कुछ हिस्से, मोसलमा ब्लूप्रिंट हाईलैंड्स, मोसलमा ओमनिकेन, मोसलमा हाईलैंड रोज के कुछ हिस्से, मोसलमा कोयराची और वहां आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 4 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी. अब सुनते हैं दूसरी विज्ञप्ति. बोबासा के रहने वालों को खासकर गाओ लेजन, ऑटोमास्टर, एवेन्यू कोसी, एवेन्यू सर वाल्टर बिसंत, लुई लुशेल, एवेन्यू पॉव, ले टैबेनाकल, बीओ सेंटे, विल्सर बोबासिन, कैप्रिस जेवे, गोल स्क्वायर, रिकॉर्डो फास्ट फूड, क्विकन फास्ट फूड और वहां आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल ही रविवार 4 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी. और बोबासिन के रहने वालों को भी खासकर एवेन्यू वेंकटस्वामी के रहने वालों को और साथ में है एवेन्यू दे रोजने, एवेन्यू मोनरो, एवेन्यू मोंसेयलिन, एवेन्यू मेलड्रम, एली एंड सन्स बोबासिन, अपार्टमेंट क्वीन रेजिडेंस, शॉटरेल और वहां के आसपास के रहने वालों को ये सूचित किया जा रहा है कि बिजली में कटौती लाई जाएगी कल रविवार 4 अक्टूबर के लिए सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 10 उन सभी जगहों पर कल ही रविवार 4 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी. और फिर से

0: बिजली में कटौती होगी दिन के 2 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच में। और एक विज्ञप्ति सुन लीजिए, हाईलैंड्स और कस्टेल के रहने वालों को, खासकर मौसमा सुबराती हाईलैंड्स, सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक कल रविवार 4 अक्टूबर के लिए वहाँ पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। और हाईलैंड्स और कस्टेल के मौसमा बसाल्ट जो जाएगा कस्टेल की ओर, उन सभी इलाकों में वहाँ पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। दिन के 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। और अंतिम विज्ञप्ति सुन लीजिए, पोर्टो कानोनी के रहने वालों को, खासकर एवेन्यू लॉरिये, कास्कोन रोड, रोटवायर, पोर्टो कानोनी के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल रविवार 4 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। तो जैसे हमने कहा, उन सारे जगहों पर मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली में कटौती लाई जाएगी। और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सीबी क्षमा प्रार्थी है। ये थी कुछ विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। पूजनीय श्री तल्ला पाका अनमाचार्य के सम्मान में तेलुगु यूनियन रविवार 4 अक्टूबर को 1 से 4 बजे तक श्री विष्णु कल्याण मंडपम AJSS सेकोंस्टोंस में एक गीत

आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। पूजनीय श्री तल्लापाका अन्नमाचार्य के सम्मान में तेलुगु यूनियन रविवार 4 अक्टूबर को 1 से 4 बजे तक श्री विष्णु कल्याण मंडपम AJSS सेकोंस्टोंस में एक गीत उत्सव का आयोजन कर रहा है।

819频道毛里求斯广播电台，我们继续陪伴大家。

0: 谢。
1: 如果你也喜欢这首歌，不妨跟着哼一哼，音乐就是要一起享受才有趣。

सादर प्रणाम श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भज ले प्रभु का नाम MBC रेडियो मॉरिशस पर। यह वही पावन समय है श्रोताओं, जब दिन भर की थकान के बाद हम आराम करते हैं। जिंदगी के भागदौर को थोड़ा विराम देकर हम अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। तो आइए कुछ पल सांसों को शांत करते हैं, मन को निर्मल करें तथा प्रेम से कहें गणपति बप्पा मोरिया। वैसे श्रोताओं, किसी भी शुभ कार्य से पहले हम स्मरण करते हैं विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश। गणेश जी केवल विघ्नों को दूर करने वाले देवता नहीं, बल्कि बुद्धि विवेक तथा शुभ आरंभ के प्रतीक भी हैं। आइए मन ही मन प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से अज्ञान तथा अहंकार को दूर कीजिएगा। हमारे विचारों में शुद्धता, वाणी में मधुरता तथा कर्मों में सच्चाई दीजिएगा। चलते हैं पहले भजन की ओर।

श्रोताओं, प्रेम तथा श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं साई बाबा का। ईश्वर का नाम चाहे किसी भी रूप में लिया जाए, सच्ची भक्ति का आधार होता है प्रेम, विश्वास तथा समर्पण। साई बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए हम कहते हैं, हे बाबा, हमारे मन को शांति दीजिएगा, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेगा, दुखी मन को सहारा दीजिएगा तथा हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिएगा, क्योंकि जब मन में विश्वास होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भज्जी प्रभु का नाम कार्यक्रम, और आइए कुछ क्षण प्रेम तथा श्रद्धा से जाप करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि नाम में अद्भुत शक्ति है श्रोताओं। जब मन परेशान हो हरि का नाम लीजिए, जब मन उदास हो हरि का नाम लीजिए, जब जीवन में कोई निर्णय कठिन लगे हरि का स्मरण कीजिए, तथा जब जीवन में प्रसन्नता आए सबसे पहले हरि को धन्यवाद दीजिए।

जहाँ श्रोताओं, जब जब संसार में अधर्म बढ़ा, भगवान ने विभिन्न अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना का संदेश दिया। श्री राम, श्री कृष्ण तथा भगवान विष्णु के अनेक दिव्य अवतार हमें यही शिक्षा देते हैं। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। श्री कृष्ण ने हमें कर्म का संदेश दिया, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कितना सुंदर संदेश है। हम अपना कर्म ईमानदारी से करें तथा परिणाम श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। तो आज की रात श्रोताओं, श्री हरि का नाम अपने मन में लेकर सोइएगा। हरि नाम से मन को शांति मिले, हरि कृपा हो जीवन में प्रकाश मिले, हरि भक्ति से हर कदम पर विश्वास मिले। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया। भजे प्रभु का नाम, मनवा भजते प्रभु का नाम। हरि के चरणों में ही सच्चा सुख तथा सच्चा विश्वास। आपकी रात्रि मंगलमय हो। सादर नमन।

0: بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस मुख्तसर बज़्म में हमदोनात का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं। जो शख्स 10 आयतों की तिलावत के साथ क़ियामुल लैल यानी रात की नमाज में तिलावत करेगा वो गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा, और जो 100 आयतों के साथ क़याम करेगा वो आबिदों में लिखा जाएगा, और जो 1000 आयतों के साथ क़याम करेगा वो बे इंतहा सवाब जमा करने वालों में लिखा जाएगा। बहवाला अबू दाऊद शरीफ।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब और सबसे करीब वो हाकिम होगा जो इंसाफ करने वाला होगा। सही अल-बुखारी की रिवायत है, खर्च किया कर, गुनाह न कर ताकि तुम्हें भी गिन के न मिले, और जोर के न रखो ताकि तुम से कभी भी अल्लाह ताला अपने

अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। सही अल-बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तक किसी शख्स ने इससे बेहतर दुआ नहीं मांगी। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत का सवाल करता हूँ। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम नहायत शुक्रगुजार है। अपना ख्याल रखें। शब बखैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
4: धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी,
2: भोजपुरी तड़का,
3: तड़का।
5: रात के 9:00 बाते और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के बहुत प्यार से स्वागत करत है। आप सब कोई के साथ देवत हवन रत्ना। बस आशा करब जा कि आप जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हो आप सब कोई अच्छा हो और इस शाम दिखे रात के बिल्कुल भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे बहुत प्यार से जुड़ गल हवा तो जरूर हमनी के टेलीफोने करे सकबा 4028085 पर अपन पसंदीदा गीत खातिर और 5251700 पर अपन मैसेज तू विदा करे सकबा। तो चला शाम दिखे रात के बहुत मजेदार भोजपुरी गीत संगे सजाओ अब झा और एक गम्मट के डोज जारी रही। तो चला आज के कार्यक्रम के बहुत मजेदार गीत के संगे शुरुआत करब जा और आज के पहला गीत मीरा दीनू के आवाज में रखल बहुत मजेदार गीत है और है गीत काहे दिलवा लगैल है एल्बम से लेवल गईल। तो चला शुरुआत करब जाए एगो बढ़िया गीत संगे।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:06 हो गल बा। और ये आज के कार्यक्रम संगे हमनी के बहुत प्यार से सब कोई श्रोता लोगन जुड़ गल होन। आइजा पर गोप से सुनीता जी साथ देवत हवन और उनकर प्यारी बहिन विमला जी हमेशा हमनी के साथ देवलन कुंगुमा बगल से, और गोप से हवन अमृता जी और गुडलैंड से हवन वीना जी। काल घूमे अयन सुनीता जी हिया और चार को बहिन करियन सब बहुते धमार, तो चला धमार करते रहिए। और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आज के है अगला गीत तुम अगले हवन राजा बंधु और हमर आवाज में बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत धन्यवाद। और मजेदार चुटकुला संगे चाचा के का बोला कौन दिन भेटा गल त हमनी के बोले जाने ला एगो बात हमनी के बहुत समझ में आ गल हुआ। तो हम बोलनी अच्छा कौन बात चाचा? बोले हाँ जे हाली हाली बिया करे लन स ओकर जीवन बिगड़ जाला। बोली सच्चे सच्चे बोला था ना चाचा? तो तू तो बहुत सोच समझ के कल रलन तो कौन ची होल? बोले हाँ हये बोला था ही। और जोन बहुत सोच समझ के शादी करेलन सा वो कौन तीर मार देवेला बोलता? देखा तीर नहीं मरिया पर आंख जरूर मरिया चाची के।

भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और रात के 9:11 हो गल बात है चला। आज के कार्यक्रम मजेदार बनावे खातिन जितना लोग हमनी के साथ देवत हवन, जितना लोगों के फरमाइश हमनी के आवत मिला था, सब कोई के गीत चलाओ अब जा, सब कोई के दिल खुश कर अब जा। और ये अगला गीत जोन है गायत्री जी हमनी के साथ देवत हवन नोएल फॉन्स देने से, और अजय संगे हवन उनकर बेटा मामी हवन कल्याणी मोहन मेबक देने से, और उनकर भौजी हवन शकुंतला जी मोताइलोंग से, और खास की गीता बाई जी हमने के हमेशा साथ देते रहे लन नोएल फॉन्स से ही। तो चला तलत महमूद और लता जी के आवाज़ के रखल गीत लागी नहीं छूटे राम है गीत, बहुत एक खुशी रहेलन और हमेशा है गीत के वो मांग करते रहेलन। और जैसे कि जानत हव काल त रहल गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन, और हमर पप्पू भैया जब गल लेकोल त अध्यापक जी हाँ गुरु जी पूछे चला बच्चा लोग तनी हमनी के गांधी जयंती के बारे में बतावा। तब पप्पू भैया फट से अपन हाथ ठड़ा करके बोले गुरुजी हम जानी ला गांधी बापू के विषय में। तो बोले शाबाश पप्पू बतावो हमनी के कौन चीज जाने ला। बोले गांधी बापू रहल बिना बाल के एगो गंजा आदमी, और जयंती के रहल है त नहीं जानत है। बोले अरे बुड़बक जयंती बोले त ओकर जन्मदिन

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:20 हो गल बा रात के 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन वाकवा देने से बाय आबू आफे संगे हवन असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर खास संगतिया हवन आपी और उनकर पत्नी और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन चला सुनब जा आतिश बागी गति के आवाज में रखल है अगला गीत जे चचा बहुत भाई आबू बहुत खुश रहेला सुने के छोड़ के मुरीस्वा तो चला मजेदार गीत संगे बढ़िया बढ़िया चुटकुला हमर जोन चचा है ना कबो कबो अच्छा रहेला कबो कबो का जनी कहाँ से ओकर मन में ऐसन ऐसन शायरी चलावेला नहीं जानेला तनको गोमोची शायरी नहीं बोले जानेला ऐसन ऐसन बात कबो कबो पीके कर देवेला चाची के हाँ हो कौन दिन चाची के एगो शायरी शुरू करके बोले बहुत दिल करता तोहरा अपन पलकों पे बिठावे के तो चाची तो शर्मा के ऐसे लड्डू ऐसे का बोला टमाटर जैसे लाल लाल हो गल बोले सच्चे के हो बोले हाँ हमर दिन बहुत चाहता तोहरा अपन पलकों के बिठाई के पर हम अपन दिल के कैसे समझावब तू तो 52 किलो के हवा कैसे बिठावब तोरा अपन पलक पे मोटकी हो गल हवा तू

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
2: ऐसन गीत बजेला त कहां तोरा मन करी मोरिस छोड़ के जाए के हो। ढेर कोई मोरिस से बाहर भी जब चल जाए तो हमेशा हमनी के साथ देते रहे लंस दूसर देश से। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद सब कोई के तो चला है। जा पर अगला गीत जोन है बहुत मजेदार गीत और है गीत एगो बहुत खास गीत है और सूरज शर्मा सजादा हमनी के साथ देवत हवन फ्री ले देने से और उनका दूगो बेटा हवन निशाल और सूरज और सब सजादा परिवार खातिर नहा अगला गीत के मांग कर ले हवन और दीपशिका बलोगाम के आवाज़ में रखल है गीत तो जरूर चलाओ अब जा है गीत तो हर खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: प्यार से साथ देवत हवन और संगे हवन धूली परिवार और उनकर एगो बहुत ही प्यारा मित्र जे हिंदी पाठशाला के गुरुजी हवन और संगे संगे हवन उनकर खास दोस्त मोताबा से शास्त्री बनोमाली और वो खुशी हवन सुने के बाप दादा के बोली। विनोद सिवदत्त के आवाज में रखल है गीत वा चलाओ अब जा उनकर खातिन और उनकर सब परिवार लोग खातिन। और ये हमर चाची चमेली कौन दिन ओकर निमेगोवा जोन रहल वो बिलागल आहो दूसर के एगो पोताप लेके कल्लन चचा के टेलीफोन त चचा त नया निमेगोवा अपन पोताप पे देख के हाली से फटाक से टेलीफोनवा उठा लेलक और फोनवा उठा के बोले हालो त चाची भी अपन आवाज बदल के तनी बोले हाँ हो शादी तोहर हो गल बाका कि कंवारा हो। तो चचा तो अपन आवाज में जितना जवानी के संगे बोले नहीं नहीं अभी तो हमार शादी नहीं होल बा, हम जवान है, हमार एगो बड़का मकान बा, दू गो लोटो बा और हमार महीना के हम 500 मील से जस्ती हम कमाईला, मैनेजर है काम में, तू के हवा हमनी के बोला था तनी हम करब तोहर संगे शादी। बोले हम हाँ तोहर बुढ़िया बोलत रही तोरा से बाजार से तनी आलू लेके आइय और नमक के पुड़िया लेके आइय, घर में नमक फिनी हो गल बा, घरे आइय तब दिखावब तोरा चार गो लोटो बा कोठी बा 400,000 से भी जस्ती पैसा कमावत हव, तोहर धोती ढीला करब अभी रुक।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:42 और हाईजा पर हमनी के साथ देवधवन रिहाना फीनिक्स देने से और राधा के सोभेला हाई गीत के उमांग कर ले हवन। जितना कोई सुना थवन, जितना कोई साथ देवत हवन, उन सब कोई खातिन और बहुत प्यार से बस हंसते हंसते मुस्कुराते सब कोई साथ ऐसे देते रहिए जा। हमनी के बहुत खुशी लगेला जब कोई हमनी के इतना प्यार से साथ देवेला। तो चला हंसते मुस्कुराते सब कोई के दिल खुश कर अब जा अपन पसंदीदा गीत संगे और चला है जा पर मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा। और ये हमर चाचा कौन दिन बाजार जब गल तो हाउजा पर एगो प्रतियोगिता, एगो आदमी धौगले आल ओकर हिया एगो मिखो लेके और ये चाचा के बोले चाचा तोरा मिली एगो कादो जे तू सही उत्तर देबत। बोले तोहरा परी एगो सवाल के सही उत्तर देवे के जे तू जीत जाइब तोहरा मिली एगो बड़का कादो। तो चाचा बोले हाँ हाँ हाँ पूछा पूछा हम देवब जवाब हमनी के कादो चाहिला। तो बोले चाचा जी तोहर दूगो ऑप्शन मिली, दूगो ऑप्शन में तोरा चाहिला एगो ऑप्शन स्वाजिगे करे के जे तोरा मिली दूगो ऑप्शन लावी में त तू पहला चीज कौन चीज छोड़ब। पहला ऑप्शन है तोहार पत्नी और दूसर ऑप्शन है त चाचा हाल ही से बोले पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। बोले अरे चाचा पहला दूसर ऑप्शन तो सुन ल। बोले नहीं ऐसा ऑप्शन बार बार नहीं मिलेला, हम अपन पत्नी के छोड़ देव।
2: कृष्णा के शोभेला

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जहाँ पर हमनी के साथ देवत हवन मानती जी जुड़ गल हवन अल्फोंस देने से और जन्मदिन रहल भव्य के तो चला अनंती जी आरती जी उर्वशी अनुषा गिरिशा मितिशा भव्य पुष्कल और हितांशु खातिन चलाओ अब जा मांग के सिंदूरवा है गीत हंसते मुस्कुराते सब कोई हमनी के साथ देवत हवन और ही चला आगे बढ़ब स और ही हमर चचा चाची के किस्सा त सुनते चला कौन दिन चाची लगल चचा के तनी बात सुनावे बोले का हो पूरा दिन जब ले देखा तब ले पूरा दिन बैठल रहेलन स है पोताप में है आँखवा खराब हो जाए तोहर तो चाचा बोली हाँ तो कौन चीज करब तो चाची बोले हमनी के भी तनी देख ल हो तो बोले हाँ हमार आँख खराब हो जाए है चली अब तोरा देखब हमार दिमाग खराब हो जाए

सारा हाइये गीत वा करब जा फुलवंती जी खातिन वाकवा से साथ देवत हवन संगे हवन उनकर पति देवानंद बेटी हवन भावना बेटा उषन और पूनम खातिन जे भी थोड़ा घड़ी पहला रेडियो मनोरंजन पर हमनी के संगे रहा।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला। आज जन्मदिन मनावत हवन के ईशा और ही बहुत बहुत प्यार से बधाई देवत हवन। पापा हवन विदेश और मामा हवन आशा साथ देवत हवन सब कोई। भाई हवन विषय सब राम रतन परिवार की ओर से ईशा को बहुत बहुत प्यार और खास कर चाची ललिता जेत्रियोले से हमने के साथ देवत हवन और आज मलाइका गल हवन और सब कुशल परिवार की ओर से और खास कर दीदी सुदेवी साथ हवन दीदी छोटी दादी प्रभावती भाई हरीश भाई आत्माराम और सुखलाल मौसी खातिन और जितना परिवार साथ देवत हवन उन सब कोई खातिन और खास कर रमेश सीपोल जी भी हमने के साथ देवत हवन। अभी फों जुसाक से पत्नी कविता संगे आज बेटा आकाश के जन्मदिन बाटे और पत्नी पल्लवी बहुत बहुत प्यार से ओकरा बधाई देवत हवन संगे हवन प्रयान दृष्टि अक्षय कविश और सब सिपोल परिवार की ओर से। तो चला हमार टीम देने से भी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई बोलब जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: 10:06 हो गल बा और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा और चला है जहाँ पर हमने के प्यार से बहुत प्यार से साथ दे हुआ था वन छेदवीर जे क्यों पीप के रहे होला हवन और उनकर पिताजी के बहुत याद करत हवन। उनकर पिताजी के नाम रहल भूमेश और संगे हवन उनकर माताजी कविता, संगे हवन इंदिरा और बोहिया। और चला उनकर पिताजी के याद में वो एगो गीत के नाम मांग कर ले हवन। तो कोनो भी लड़का रही तो माता पिता के आशीर्वाद हमेशा लड़कवन पर बनल रहेला। तो चला छेदवीर तोहर खातिन है गीतवा चलावत है और है गीत है निर्मल ताकू पसंद के आवाज में रखल।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखत है और हईजा पर हमनी के रमेश जी जुड़ल हवन सिपुल रमेश सिपुल फोजू साग से जे एगो गीत के मांग कर ले रहन अविनाश लक्षण के आवाज में रखल है गीत जरूर चलावब जा उनकर खातिर उनकर सब सिपुल परिवार खातिर। और चचा कोन दिन बैठल बैठल ऐसे ओकरा लग गल एगो टूटल तारा तो चाची से बोले हाय देख तारा टूटा था मांग मांग तोहर कोनो इच्छा बात मांग ले तोहर इच्छा पूर्ण हो जाए। तो चाची तो हाली से हाथ जोड़ के आँख बंद करके भगवान से बोले भगवान हमर पति के जोन भी परेशानी रही ओकरा तू गायब कर दिया। और जानत हव कौन ची होल चाची अचानक से गायब हो गए।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ावत है और है जहाँ पर हमने के साथ देवत हवन पूर्णिमा फुकीरा जी गिव्या जुगों पर से उनका चार गो बेटी पिंकी प्राविनी पूजा और पूनम और साथ देवत हवन उनका बेटा लोंगलेतिया से 40 बरिस के हो जाए 9 तारीख के उनका एडवांस में जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देवत हवन माता जी और साथ ही साथ उनकर पत्नी हवन कुष्मा और सब फोकीगा परिवार जी गिव्या जुगों पर में रहलन और चलाए कर संगे पूर्णिमा जी अपन आवाज़ में गा के है गीत के मांग करत हवन तो चला खुशहाली के साथ है ये प्रार्थना करब जा कि वो जहाँ भी रही अपन सब परिवार अपन सब माता पिता और संगे संगे जितना बड़ा बुजुर्ग हवन घर के सब कोई के आशीर्वाद उनका मिलते रही और जितना बहिन लोग हवन जे अपन भाई के बहुत बहुत प्यार से है ये प्रार्थना करत हवन कि जहाँ भी रही हमेशा खुशहाली के साथ प्रगति करी जीवन में आगे बढ़ते चली और पलना में झूले श्री राम है गीत पूर्णिमा फुकीरा जी की आवाज़ में चलाओ अब जा उनकर खातिन खासकर जिनकर जन्मदिन बा 9 तारीख के

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम और चला है जहाँ पर चाची शांता सुकागी भी बहुत प्यार से साथ देवत हवन से जमील फॉरेस्ट साइड से और उनकर पतो के जन्मदिन रहल 30 तारीख के तो जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई तोहरा और साथ देवत हवन उनकर 4 गो बेटा सुदेश सुजीत अशोक और गाविन नाती हवन पावेश और नातीन संजना और सुना नोयन के आवाज में रखल बाजा बोल के है गीत तू मांग करत हो तो जरूर चलाओ अब जा तोहरो खातीन और हमर चाची का बोलब चाची बिचारी कबो कबो इतना परेशान हो जाला तक केकर से पूछी तो चचा से पूछ लेलक बोले देख ना इतना बड़ी से तोहर खातिन हम व्रत करीला करवा चौथ के हम तो खुशी रहीला जितना भी व्रत रही हम सब करे खुशी हैं जेकर से तोहर जीवन तोहर हमेशा उम्र बढ़ते जाए नहीं जानत है करवा चौथ के अलावा और कौन ऐसा व्रत है जेकर से तोहर उम्र बढ़ी तो चचा घूम के मुँह चढ़ा के बोले मौन व्रत तनी मौन व्रत रखब तो हमर जीवन बहुत नीमन से बीती

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बारात के बस 10:30 हुआ था। आधा घंटा रह गल बा और ई चला हाईजा पर हमनी के साथ जुड़ गल हवन नेमन परिवार जे साथ देवत हवन खुशनुआ देने से और साथ हवन नीला नेमन उनकर बेटी हवन सुनीता राम जी और बहुत ही प्यार से साथ देवत हवन धर्म जाए। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावा जा रहा राजा बंधु के आवाज में रखल है अगला गीत संगे जे बहुत ही खुशी हवन सुने के और है ये

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला अगला गीत जो है चलाओ अब जा गोदान फिल्म से लेबल गायल हाई गीत है श्यामा रघुनंदन खातिन जी हमने के साथ देवा तवन गांव गोप दिनी से उनकर भाई हवन जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधीश साथ हवन उनकर खास दोस्त है विश्वानी जी और वीना रामफल खातिन मुकेश साहब की आवाज में रखल गोदान के हाई फिल्म जी भोजपुरी भाषा में

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला आगे बढ़ब सर। अगला गीत जोन है चलाव अब जा अनिता जी खातिन। अनिता लाल जी हमनी के साथ देवत हवन मोडाल ब्याह देने से लाल जी परिवार, इतु परिवार, नागेश्वर परिवार और गोगा परिवार खातिन चलाव अब जा। जय हलाल के आवाज में रखल अगला गीत मच्छी मरवा, मजेदार गीत है। तो चला हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सर और ही चचा चाची के किस्सा तो सुनते चलो। चाची कौन दिन चचा के पूछ लेलक एगो सवाल। हाँ चाची चचा से पूछे, बोले तोहर जीवन के सबसे बड़ा समस्या कौन है। तो चुपचाप चचा बड़का आंख करके चाची के देखे के शुरू कर देला। तो चाची बोले, बोला हो हम पूछा था तोहर जीवन के सबसे बड़का समस्या कौन है, जब देखत तब हमनी के टुकुर टुकुर देखत हवन, नहीं बोलत हवन कौन समस्या बा।

0: भोजपुरी तड़का
1: बिजमावती संपत की आवाज में रखल भोजपुरी तड़का के अगला गीत और हई गीत मीराबाई दमिया खातिन जमनी के साथ देवत हवन मदालबे देने से और हई ये गीत चलाओ अब जा उनकर पादिया परिवार खातिन बेटी और दमाद खातिन।

0: बिछिया मांगे।
1: हरिपाल के आवाज में रखल है गीत अनिता जी खातिन चलावत है फ्लिक ऑफ फ्लैग से उस साथ देवत हवन उनकर सब परिवार खातिन सब दोस्त खातिन और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के सब टीम खातिन।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आज समाप्त कर अब जा आखिरी गीत के संगे ललिता गजादर के आवाज में रखल हाई गीत चलाओ अब जा भाई महेन खातिन और उनकर दीदी मान खातिन और जितना भोजपुरी संगीत प्रेमी हवन जितना कोई सुनत हवन जितना कोई रात के काम करत हवन उन सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा साथ देते रहिए जा इसने।

0: है आज के गमट है गीत ललिता गजाधर के आवाज में, और है ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त हो जाए। आप सबको ये याद दिला देवत है कि आज बिल्कुल 11 बजे से लेके 12 बजे ले तो सुने सकब सुनहरे पल कार्यक्रम पूनम की प्रस्तुति में, तो बस साथ दे दे रहिए जाओ और एकर संगे रत्ना के बस अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे अगले शनिवार के रात 9 बजे से लेके 11 बजे ले, तब ले सुनते रह भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, और अपन पूरा ख्याल रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत सुंदर है।
1: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे MB

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। श्रोताओं, रात के 11 बजे है रेडियो मॉरिशस पर सुनहरी पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं पुराने गीतों के साथ, कुछ यादें बांटेंगे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आइए इस पहले गाने को सुनते हैं।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: इस गीत की शुरुआत सुनते ही आपने पहचान लिया होगा और शायद साथ गुनगुनाए भी होंगे। कितनी बातें भूल जाते हैं हम, लेकिन पसंद के गीतों के बोल याद रहते हैं। अच्छा लगता है जब अचानक रेडियो पर अपना गीत सुनाई दे।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ गीत सुनकर मन कहता है ये तो उनकी पसंद का था, फिर याद आती है उनकी आवाज़, जरा रेडियो तेज कर दो, कोई अपना साथ हो या उसकी याद, उसका पसंद का गीत आज भी हमें उसके करीब ले जाता है। यही तो यादें हैं जो हमारे साथ सारी जिंदगी चलती हैं, और जब रात आती है तो कुछ खास ही लगती हैं।

0: कभी तो हंसाए।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: आप अपने घर में सुन रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ा सा सुकून है, रेडियो के साथ में आप सबका स्वागत है। शायद आज थोड़ा दिन लंबा लगा हो, अब आराम से सुनिए। एक परिचित धुन लेकर हम आपके पास आए हैं AM2 रेडियो मॉरिशस पर।

पुरानी फिल्मों की कोई जोड़ी आपकी भी पसंद रही होगी। गीत सुनते ही दोनों के चेहरे पे सामने आ जाते हैं और वह दृश्य भी रेडियो पर आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मन में पूरी तस्वीर बन जाती है। अगला गीत सुनते ही वह तस्वीर आपके सामने होगी।

0: 800 and 19 kilowatts. This is Radio Marches.
1: दिन भर आपकी पसंद का ध्यान रखा होगा आपने। अब थोड़ी देर अपनी पसंद के गीत सुनिए। बोल याद है तो धीरे से गुनगुना भी लीजिए। यहाँ कोई आपकी आवाज़ नहीं परख रहा, बस सुनने और गाने का आनंद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
2: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
1: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

रेडियो सुनने का अपना ही सुख होता है। आंखें बंद होती हैं तब भी गीत साथ रहता है, परिचित की आवाज सुनने की पहचान हो जाती है। बरसों पहले भी इस गाने को सुना था और बहुत बरसों पहले किसी ऐसे को देखा था जिसकी आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। तो कोई जाना पहचाना चेहरा सामने आए, या कोई साथ में बैठा हो, या साथ में कोई लेटा हो और उसके वो दिन याद आए जब वो कभी जवान हुआ करते थे, तो उन दिनों को याद कीजिए और खुश रहिए।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस.
2: रेडियो मॉरिशस.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: 819 kilohertz. This is Radio Marches.

एक तरीका ये है कि इंसान खाने को जाया ना करे, इतना खाना प्लेट में निकाले, बिरयानी हो या कोई और हो, जितना वो खा सके, और उस दौरान जो दाने गिर जाएं तो उसे चुन चुन कर उठा उठा के खा ले, उसका अदब कर। छोटा सा अमल है लेकिन अल्लाह पाक इसकी बरकत से रिस्क के दरवाजे खोल देता। चुनाचे समरात और औराक में सैयदना हुदबा बिन खालिद अलैहि रहमतुल माजिद वनवर अल्लाह मकदर काना मिन किबार मुहद्दिसीन, जो अजीम मुहद्दिसीन में से, उलूम हदीस के माहिरीन में से, अजीम उलमा में से, उनको उस वक्त के खलीफा हारून और रशीद ने खाने पर बुलाया। जब वो खाने से फारिग हुए तो दस्तखान पे जो खाना उसके जर्रात गिर गए थे उसे चुन चुन के खाने लगे, तनावल फरमाने लगे, तो खलीफा हारून रशीद ने उनसे पूछा कि क्या आपने शिकम शेर होके नहीं खाया? तो आपने फरमाया नहीं, मैंने खूब खाया लेकिन ये जो दस्तखान पे गिरे हुए जर्रात खाने के मैं उठा के खा रहा हूं, इसका रीजन ये नहीं है कि अभी भूख बाकी है, भूख की वजह से नहीं, इसका रीजन एक हदीस है जिसको सैयदना हम्माद बिन सलमा रजी अल्लाह तआला उन्होंने रिवायत की। आपने फरमाया कि हदीस पाक में है कि जो शख्स दस्तखान पर गिरा हुआ खाना चुन चुन कर उठा उठा के खाएगा तो उसको कभी तंगदस्ती, गुर्बत, कि खाना पीना ना हो, इसका डर नहीं, वो इससे बेखौफ हो जाए। अल्लाह पाक इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि कभी वो तंगदस्ती का शिकार नहीं, कभी उसके हाथ तंग नहीं होंगे। जब ये हदीस खलीफा ने सुनी तो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और अपने गुलाम को इशारा किया। वो गुलाम आए और 1000 दीनार रुमाल में बांध कर लाए। खलीफा ने उस मुहद्दिस को, उस आलिम को वो नजर

राना पेश की। जब नजराना पेश किया तो उस अजीम मुहद्दिस ने इस पे बड़े उम्दा कमेंट्स किए और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पे अमल की बरकत हाथों हाथ मिलती। यानी ये बरकत हुई उन जर्रात को उठाने की और उठा के खाने की जो वो मुहद्दिस दस्तखान पे चुन चुन के उठा के खा रहे थे, क्योंकि उनका रीजन हदीस थी। अब यहां दो चीजें, एक हदीस पे अमल है, हदीस को देखना, और एक लोगों को देखना। लोग इसको अच्छा नहीं समझते, लोग इसको अच्छा नहीं समझते कि कोई गिरी हुई चीज दस्तखान पे गिरा हुआ खाना उठा के खा ले, और वो भी किसी आम इंसान के मेहमान नहीं थे, वो उस वक्त के अजीम खलीफा के मेहमान थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, ये नहीं देखा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को। आज हम और आप बहुत सारी अहादीस पर और सुन्नतों पर अमल से इसलिए महरूम है कि हम ये समझते हैं लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों को देखने की वजह से हम बहुत सारे बरकात से महरूम हो जाते हैं। जाहिर है कि उस मुहद्दिस के आसपास कोई आम लोग नहीं थे, वो भी वक्त के उलमा, उमरा, वुजरा, साहिबान दौलत, बड़े बड़े लोग थे। उन लोगों में इस हदीस पे अमल करना कोई आसान न था, लेकिन मोमिन वो है जो खुलाफा, उमरा, साहिबान दौलत व इख्तदार, अवाम किसी को न देखे। जब रसूलुल्लाह का फरमान आ गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर अपनी अक्ल और लॉजिक को कुर्बान कर दे। आज अगर आप किसी को मसला बताते हैं, कुरान और हदीस सुनाते हैं, तो कहते हैं सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, पालाब होगा, गीबत होगी कि एक नई चीज आ गई। नहीं, वो नई नहीं है, हमने अमल न करके उसको नया बनाया। विलायत के तस्करे तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि मकसद विलायत क्या है? मकसद विलायत है इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए सुन्नत। द पर्पस ऑफ विलाया to follow the sunnah of Rasulullah and his sharia, it is the purpose of wilayat. Wilayat ka maqsad yahi hai ki insaan shariat o sunnat ko follow kare. Ye maqsad hai wilayat. Kitne azim muhaddis hue, kitne azim ulama hue, fuqaha hue, auliya, ahlullah, ulama hue, जिन्होंने हर हाल में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हदीस को, तालीमात को और अफकार को देखा और उसे फॉलो किया, और अल्लाह पाक ने

उसी वक्त उन पे रिस्क के दरवाजे खोल दिए, उसी वक्त, और दुनिया को बताया कि रिस्क के दरवाजे उस वक्त खुलेंगे जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। अल्लाह पाक इतनी बरकत देगा थोड़े से पैसों में कि जो आपके वहमो गुमान में भी वो बरकत ना हो, न किसी और के वहमो गुमान में। हम महरूम इसलिए हो गए कि हमने सुन्नतों पे अमल छोड़ दिया, हम महरूम इसलिए हो गए कि हमने शरीयत को फॉलो करना छोड़ दिया, हम अपने मिजाज पे चलने लगे, अपनी ट्रेडिशंस, वो जो शरीयत और सुन्नत की अगेंस्ट से उसे फॉलो करने लगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ। محبوب پلیز سے پلیز ڈکلیئر اف یو لو اللہ دین فالو رسول اللہ فالو ہز سنہ الشریعہ اف یو فالو رسول اللہ اینڈ ہز سنہ اللہ ول لو یو اینڈ اللہ ول فار گیو یو فورس اینڈ سنس Allah is the most forgiving and merciful. Mahboob in se keh do ki agar tum Allah se muhabbat ke muddai ki nahnu nuhibbullah we love Allah, agar tumhara dawa yahi hai to phir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki shariat ko follow karo। Is muhaddis ko Allah se इस मोहब्बत, इस मुहद्दिस के दिल में हुजूर सलाम की मोहब्बत थी, इसलिए इन्होंने दरबारे शाही में न किसी और को देखा न बादशाह को कि ये क्या करें। उनके सामने दस्तखान पे गिरे हुए टुकड़े उठाए और वो उठाकर खाने लगे। आज तो एक आम आदमी जिसकी कोई हैसियत ना हो वो भी शायद इसको गवारा ना करे, लेकिन ये वक्त के मुहद्दिस की बात। उम्मत पे जवाल आया ही इसलिए है कि उम्मत ने सुन्नत और शरीयत को फॉलो करना छोड़ दिया। जवाल उम्मत पे इसलिए आया, इसलिए उम्मत इन्हेदात का शिकार हो गई, दिन ब दिन जवाल पजीर हो गई। आज अगर मजमूई हैसियत से ये पूरी उम्र हुजूर सलाम की शरीयत और सुन्नत को फॉलो करने लगे तो वो जो पहले बहारें नसीब होती थी वो फिर से लौट आई, वो बहारें फिर से इन्हें नसीब हुई। शाहाने वक्त इनका नाम सुन के कपकपाने लगे और शाहाने वक्त भी इनका अदब, और अल्लाह पाक इन पे अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। इसलिए अपनी दुआओं में ये दुआ जरूर शामिल है कि अल्लाह हमारी जिंदगी को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक। जब आपको लगे कि इस वक्त दुआ कबूल होती है तो उस वक्त ये दुआ मांगो, जिसकी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढल गई उसकी दुनिया भी सवर गई और उसकी आखिरत भी सवर गई, उसकी आखिरत भी बनी और दुनिया भी बनी, वरना फिर खसरत दुनिया वल आखिरत। न इल्लल्लज़ी न उल्लल्लज़ी, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब इस मुहद्दिस की अजीम शान देखें, क्योंकि जितने मुहद्दिसीन हुए वो औलिया

0: सूफिया जुहदा, वो अपने वक्त के बड़े बड़े साहिबान जुहद व तकवा, और ये बहुत बड़ा एजाज है उसके लिए, उस मुहद्दिस के लिए। क्या ये एजाज कम है कि सदियों से इस रिवायत का तज़किरा हुआ और क़ियामत तक इसका बयान फकत एक अदाए मुस्तफा ने और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर आमद इस हदीस उसे वो जिंदगी अता की, उसके तस्करे को बका अता कि सुबह क़ियामत तक उसके तस्करे हुए। इसलिए इकबाल ने कहा, इकबाल उनके इश्क का फैज आम है, इकबाल उनके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दबा। ये इश्क का फैज आम ही था, ये इश्क का रंग ही था कि बड़े मजमे में उन्होंने उमरा खुलफा सलातीन के सामने दस्तखान पे गिरे हुए टुकड़ों को उठा के खा और उसको अपने लिए ऑनर समझा, अपने लिए इफ्तिखार समझा, अपने लिए इज्जत समझी। इसलिए कि इज्जत का मेयार वो नहीं है जो आवाम के नजदीक है, इज्जत का मेयार वो है जो अल्लाह रसूल ने अता किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, फलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। फरमाया, इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है और मोमिनीन की है। लेकिन फरमाया कि मुनाफिक नहीं समझते कि हकीकत इज्जत क्या है। वो जिसे चाहे इज्जत करे और इज्जत हुजूर की शरीयत और सुन्नत को फॉलो करे। अल्लाह पाक हमें शरीयत और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद व मालिना।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलो हर्ट्ज पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

0: MBC Radio, your music companion.
1: तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा हूं मैं, लगता है जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं।